निर्देश जिसे हम जरूर से अपनाएंगे ध्यान योग के लिए। तो सबसे पहला है मेरुदंड सीधा होना चाहिए, यानी कि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ध्यान के लिए सर्वप्रथम उचित आसन, यानी कि मेरुदंड सीधा होना चाहिए। उसी से एक बात याद आ गई है कि जब भक्त अपने भगवान और प्राण शक्ति को मेरुदंड में चक्रों से होते हुए ऊर्ध्व चेतना की ओर भेजने के लिए प्रयासरत होता है, तो उसे अनुचित आसन कारण मेरुदंड की नाड़ियों में होने वाली सिकुड़न व संकुचन से बचना चाहिए। स्वयं को ईश्वर के आशीर्वादों के लिए उन्मुक्त रखना चाहिए। वे लोग जिनके पैरों में दर्द होता है, उनके लिए ध्यान बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। हालांकि परमहंस योगानंद जी ने अपने ध्यान के लिए निम्न प्रकार से आसन लगाए हैं, जैसा कि एक बिना हत्थे की कुर्सी पर इस प्रकार बैठें कि आपके पांव जमीन पर सपाट रहें और मेरुदंड सीधा हो, पेट अंदर की ओर, छाती बाहर की ओर, कंधे पीछे और हुड्डी जमीन से समानांतर हो। यदि आसन सही है, स्थिर शरीर फिर भी तनाव रहित रहेगा और एक भी मांसपेशी को बिना हिलाए हुए ही आप निश्चल अवस्था में संभव कर सकते हैं। अब अपने नेत्र बंद करें और अपनी दृष्टि को धीरे से बिना तनाव ऊपर की ओर भूमध्य से स्थित करें। एकाग्रता के केंद्र बिंदु और ईश्वरीय बोध को दिव्य चक्षु पर, यानी कि हम दोनों आंखों के मध्य, जो कि हमारा ध्यान योग केंद्र मेन वहीं लगता है, वहीं पर ही आपको एकाग्र चित होकर के ध्यान लगाना है और हमें अपने ईश्वर का ध्यान करते हुए समय अनुसार, यानी कि आप प्रारंभिक अवस्था में 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट कर सकते हैं। तत्पश्चात आप ध्यान की अवधि 1/2 घंटा, 1 घंटा भी कर सकते हैं। तो ध्यान योग करने के लिए जो महत्वपूर्ण हमने निर्देश बताए, उन्हीं निर्देशानुसार हम ध्यान योग की ओर करके अपने आप को एक सफल और एक स्वस्थ इंसान बना सकते हैं। जब नया अभ्यासी कठोर जमीन पर ध्यान के लिए बैठता है, तो मांसपेशियों और रक्त नलिकाओं के दबने के कारण पैर सो जाते हैं। हमने अमूमन देखा हुआ है कि कई बार जब हम जमीन पे बैठ जाते हैं, पलथी मार के बैठ जाते हैं, तो हमारे पैरों की नसों में झुंझुनाहट सी होने लगती है और यह समस्या अब आम सी हो गई है, यानी कि छोटे से बच्चे को या बड़े बुजुर्गों को यह परेशानी होती है। परंतु यदि वह जमीन पर या सपाट पलंग पर गद्दा या उस पर कंबल बिछाकर बैठता है, तो उसके पैरों में झुंझुनाहट और दर्द नहीं होता है। इसीलिए यह कहा गया है कि यदि आप कुर्सी पर कंबल या सिल्क का कपड़ा बिछाकर या फिर आप योगा मैट पर बैठ करके योग करते हैं या आसन करते हैं, तो पैरों में जो झुंझुनाहट और झुंझुनी की समस्या है, यह कम होती है। उस पर बैठकर ध्यान करने में सुविधा का अनुभव कुछ ज्यादा होता है। योग साधक, विशेष रूप से योग युवा के लोग, जो कि आजकल बहुत सारी चीजें हम लोग करने लगे हैं, योग के माध्यम से हम कई वीडियोस बनाते हैं, कई रील्स बनाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि योग से जुड़ने के लिए हमें अपने वर्तमान में जुड़ करके ही काम करना चाहिए। यदि किसी को पद्मासन में बैठने से सुविधा नहीं होती है, तो इस भांति बैठकर ध्यान भी कर सकते हैं। तनावपूर्ण अवस्था में ध्यान करने से व्यक्ति का मन शरीर की असुविधा पर केंद्रित रहता है। साधारणतः ध्यान का अभ्यास बैठ करके ही करना चाहिए। स्पष्टता खड़े होकर ध्यान करने से जब तक कोई ऐसा करने में प्रवीण ना हो, यह नहीं हो सकता है। मन के अंतर्मुखी होने पर व्यक्ति गिर सकता है और ना ही एक साधक को लेट कर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह नींद की अवस्था में जा सकता है। उचित आसन जो शरीर और मन को स्थिर रख सके आवश्यक है, या मन को भौतिकता से हटाकर परम तत्व पर लगाने में साधक की सहायता करता है। इसी प्रकार दोस्तों, हम ओम की स्थिति करके अपने आगे वाले पड़ाव की ओर चलते हैं, यानी कि ध्यान को समाप्त करने की ओर चलते हैं। तो सीधे बैठ जाएं और एक बार ओम का उच्चारण करने के बाद में यथासंभव हम आज के ध्यान योग को यहीं समाप्त करते हैं। ओम।

दोनों हाथों की हथेलियों में घर्षण करके आंखों पे और चेहरे पे लगाते हुए ध्यान को पूर्णता समाप्त करेंगे। तो आइए हम सभी चलते हैं कुछ देर के लिए ध्यान मुद्रा में बैठने। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की उपाशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। तो आइए दोस्तों, जो कि एक नामों के साथ में सीरीज चल रही है, योग के साथ में एक नाम को जोड़ करके। जैसा कि पहली सीरीज में हमने आपको बताया था नौकासन, यानी कि अलौकिक नौकासन, उसी के साथ में एक नया नाम अब हम आज आपके सामने बताने वाले हैं, जो कि है प्रकाशमय वृक्षासन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रकाशमय वृक्षासन क्यों है। आपने देखा होगा कई बार जब हम कोई भी सीरीज देखते हैं, कोई भी पुरानी सीरियल्स को देखते हैं, कोई आध्यात्मिक सीरियल्स को देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि जब घोर तपस्या करते थे तो वो पेड़ों पे जाकर के या फिर पहाड़ों पे जाकर के एक पैर पे खड़े होकर के इस आसन को करते थे, जो कि बहुत प्रचलित है, जिसका नाम वृक्षासन। इसका मतलब ये नहीं होता है कि यह वृक्षों की तरीके से सिर्फ सीधे खड़े रहना ही है। यह वृक्ष की तरह तो लगता है, लेकिन श्वास का लेना, निरंतर रूप से श्वास को कम करना, कैसे लेना है, क्या अंतर में कुछ ऐसी उपलब्धियां जिसे हम पाना चाहते हैं, कुछ ऐसी गतियां जिन्हें हम अपने रूप में उसे जानना चाहते हैं, ये सारी गतिविधि हमारे वृक्षासन के अंतर्गत आती है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि वृक्षासन प्रकाशमय वृक्षासन क्यों है। सबसे पहले तो साधारण रूप में वृक्षासन होता है, दूसरा ध्रुव आसन जिसे भागीरथ आसन भी कहा जाता है, उसके बाद में द्वितीय प्रकार यानी कि क्रम पूर्ण एक आसन भागीरथ का दूसरा, ये सारे प्रकाशमय वृक्षासन के अंतर्गत आते हैं। वृक्षासन करने से पहले मैं बता दूं कि यह प्रकाश की तरीके से बहुत ही ज्यादा तेज और हमें रोशनी प्रदान करने वाला होता है। जिस तरीके से हम पेड़ों पे या फिर पहाड़ों पे पहुंचकर एक अलौकिक तेज को प्राप्त करते हैं, चारों तरफ एक रोशनी रोशनी, ठीक वैसे ही यह आसन को करने के बाद भी हमें अपने शरीर में कुछ इसी तरीके से अनुभूति होती है। वृक्ष के समान आकृति होने के कारण इसे वृक्षासन तो कहा ही जाता है। सर्वप्रथम समावस्था में हमें खड़े हो जाना है, फिर शरीर को संतुलित रखते हुए दाहिने पैर को घुटने से मोड़ें और पैर के पंजों को बाएं पैर की जांघ के मूल पे लगाएं। ध्यान रहे दाहिने पैर के पंजे की उंगलियां जमीन पर टिकी रहें। इस प्रकार एक पैर पर संतुलन बनाएं। अब दोनों हथेलियों को मिलाएं और सीधे आकाश की तरफ उठाएं। दोनों हाथों की कोहनियां सीधी रखें और आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं। ये है प्रकाशमय वृक्षासन का पहला, जिसमें हमें सीधे खड़े हो जाना है, वजन एक पैर पर हमें पूर्ण रूप से डाल देना है, दूसरे पैर का तलवा, जांघ और पिंडली घुटने पर नहीं रखना है, हाथ जोड़कर नमस्कार मुद्रा में ऊपर की ओर उठाना है, नजर सामने और एक बिंदु पर ही टिकी होनी चाहिए, 20 से 30 सेकंड रुकें और सामान्य सांस को लेना है और छोड़ना है, धीरे धीरे बदल कर दूसरे पैर की ओर हम आ सकते हैं। समय इसका होना चाहिए 5 से 10 सेकंड, ताकि हमें फिर दूसरे पैर को ऊपर उठा करके हम अवस्था को चेंज कर सकते हैं। वापस ताड़ासन की स्थिति में आएं, यानी दोनों पैरों को उठाना है, पंजों को उठा करके पंजे नीचे रहेंगे और एड़ियां ऊपर। अब आपको यही प्रक्रिया दाहिने पैर पर खड़े होकर दोहरानी है। इस प्रकार यह क्रिया लगभग क्रमशः 4 से 5 बार दोहरानी है। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए श्वास को लेंगे, पूर्ण स्थिति में स्वाभाविक श्वास प्रवास करें। हाथों को नीचे करते समय श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। इस तरीके से वृक्षासन के फायदे, आइए अब हम आपको बताते हैं। बैलेंस और एकाग्रता बढ़ती है, पैरों और टखनों की ताकत बढ़ाती है, पोस्चर सुधरता है, मन शांत होता है और एकाग्रता आती है, जो कि स्टूडेंट्स को ये जरूर से अपनाना चाहिए। हर एक फायदे से कहते हैं ना, हर एक योग के अलग अलग फायदे होते हैं, तो खास करके विद्यार्थियों को यह आसन जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ में पैर पिंडली पर आराम से रखें, ताकि दीवार कुर्सी का हल्का सहारा भी आप स्टार्टिंग में आप ले सकते हैं। पहले के दिनों में 10 से 15 सेकंड ही आप इसको कर सकते हैं और फिर आप इसे धीरे धीरे इसका समय बढ़ा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसकी सावधानियाँ। अगर आपको यह आसन करते समय चक्कर आते हों या घुटनों में दर्द हो, तो दीवार के पास सहारा ले सकते हैं। पैरों को सीधे घुटनों पर न टिकाएं,
संतुलन बिगड़े तो तुरंत पोज को चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक आसन और जो कि इसी का दूसरा प्रारूप है वो है भागीरथ आसन। वृक्षासन को करने के साथ साथ भागीरथ आसन जरूर करना चाहिए। भागीरथ आसन का नाम ध्रुव आसन भी है। भक्त ध्रुव एवं भागीरथ ऋषि ने इस आसन से साधना की थी जो कि वृक्षासन का दूसरा प्रारूप है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने किया प्रकाश में वृक्षासन, जिसको करने से हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश का आगमन होता है। इस तरीके से हम फिर से मिलेंगे आपसे एक नई सीरीज में एक अलग नाम और एक अलग योग के साथ में। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप पहले से अच्छे और बहुत अच्छे होंगे और नित सवेरे आकर के योगशाला में योग प्राणायाम करते होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किस रोग में कौन सा प्राणायाम उचित होता है। थोड़ी बहुत जानकारी हम देंगे उस रोग के बारे में और साथ में जानकारी देंगे प्राणायाम के बारे में, यानी कि आसनों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हार्ट अटैक। दोस्तों ये आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है। ज्यादा टेंशन करना और काम के प्रेशर को लेकर के जब काम पूरा नहीं होना या फिर फैमिली प्रॉब्लम को लेकर के लोगों को चिंताएं घेरे रहती हैं, जिसके कारण से हार्ट अटैक का खतरा जो है वो अमूमन ज्यादा सा बढ़ गया है। योग का अभ्यास करने से ऐसे खतरों में बहुत ही जल्दी से सुविधाएं मिलती हैं हमें उन्हें ठीक करने की। हृदय रोग का कारण बनने वाले उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और उक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक है, जिससे हृदय गति कम करने में मदद मिल सकती है। योग करने वाले लोगों को में अन्य लोगों की तुलना में हार्ट अटैक का खतरा कम होता है, ये सभी को पता है। तो आइए आज हम बताने वाले हैं कि हृदय रोग के जो रोगी होते हैं उन्हें कौन सा आसन प्राणायाम करना चाहिए। स्पेशली हार्ट अटैक जब किसी को आता है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं। दाहिने हाथ में दर्द होना, सीने में दर्द होना। अभी हाल में ही हमने एक डॉक्टर से सलाह करी थी, यानी कि हमारा एक प्रोग्राम था डॉक्टर्स की सलाह में, तो उन्होंने बताया कि यदि आपके चेस्ट पेन हो रहा है, यानी अगर चलते फिरते चेस्ट पेन हो रहा है, तो यह कोई भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ मसल्स की दिक्कत हो सकती है, कुछ हड्डियों की दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आपके हाथ पैर चल नहीं रहे हैं, आप कहीं हिल डुल नहीं रहे हैं, उसके बावजूद अगर आपको चेस्ट पेन है तो ये बिल्कुल आपको हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं, तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। तो आइए दोस्तों आज हम बताएंगे कि कौन से प्राणायाम अगर हमें अभी से ही शुरू कर देने हैं तो यह खतरनाक से खतरनाक बीमारी नहीं हो सकती है। जो कि मुख्य आसन है भुजंगासन, गौमुख आसन, मलासन, ताड़ासन और ब्रिज पोज। मैं आपको बता दूं कि भुजंग आसन के बारे में भुजाओं से संबंधित होता है, जिसको हम कोबरा पोज भी कहते हैं। ये इसीलिए करा जाता है क्योंकि जब भुजाओं से संबंधित हम कुछ प्राणायाम करते हैं तो हार्ट जो होता है, यानी कि हृदय की मांसपेशियां जो है वो खींचती हैं, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आराम से उस तक पहुंचता है और हमें हृदय संबंधी जो भी रोग होते हैं उससे मुक्ति मिलती है। और हमें सावधानी भी बरतनी चाहिए। सावधानी ये बरतनी चाहिए कि यदि हम कोई आसन प्राणायाम कर रहे हैं तो अगर हमें ज्यादा पसीना आ रहा है या घबराहट सी हो रही है तो हमें उस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए, रुक रुक के उस प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। जिसको करने से हमें बहुत ही शांति और खुशी प्रदान हो, वही आसन प्राणायाम को हमें आगे नित्य नियम में करने चाहिए। आइए दोस्तों हम दूसरे एक रोग की तरफ चलते हैं जो कि है गठिया। गठिया दोस्तों हाथ में हो सकती है, पैर में हो सकती है और आप तो गले में, गर्दन में, कमर में, कहीं पे भी ये गठिया का दर्द पड़ सकता है। तो आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि इसमें कौन सा आसन प्राणायाम करना चाहिए। गठिया के रोगों को जो कि रोगी होते हैं उन लोगों को अनुलोम विलोम, कपाल भाती जरूर से करना चाहिए। दिन की दिनचर्या शुरू करने से पहले अनुलोम विलोम को हमें नित्य नियम अपनी दिनचर्या में लाना चाहिए, जिससे गठिया जैसी गंभीर बीमारियां जो
के शुरू होने से पहले ही खत्म होने की संभावनाएं 100 नहीं 200% होती हैं। अगर हम अपना वेट, जो कि हमारा वेट हो जाता है बहुत ज्यादा, उससे भी हमें ये प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, गठिया जैसी, घुटनों में दर्द होने लगता है, पैर की एड़ियों में दर्द होने लगता है और हाथों की भुजाओं यानी कि जहां ज्वाइंट पेन्स होते हैं वहां पे दर्द होने लगता है। अगर आपको ये नित प्रतिदिन हो रहा है तो तुरंत से तुरंत आप आसन प्राणायाम के साथ साथ अपने अपने जो कि आसपास के डॉक्टर हैं, आप उनसे संपर्क करें और इसकी दवाएं शुरू कर दें, क्योंकि गठिया रोग जो है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यह रोग और भी बढ़ता जाता है। लेकिन मात्र एक योग प्राणायाम के माध्यम से हम किसी भी गंभीर से गंभीर बीमारी को खत्म कर सकते हैं, तो हम अभी से ही क्यों ना अपना लें ये सारे योग प्राणायाम। अनुलोम विलोम को करने के लिए आपको नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर के नित्य क्रिया करने के बाद में आपको शामिल करना है। मांसपेशियों की प्रणाली में सुधार आता है, पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है और तनाव चिंता को कम भी करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है यह सर्वोपरि और सर्वप्रथम प्राणायामों में से एक है, क्योंकि कपाल भाती और अनुलोम विलोम मुख्य 8 प्राणायामों में से एक है, जिस जो की करने से पूरे संपूर्ण शरीर की जो की गतिविधियां होती हैं उन पर वो सुचारू रूप से काम करता है। आइए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर बीमारी की, जो की है शुगर यानी की मधुमेह। इसमें हमको कौन से प्राणायाम करने चाहिए, कौन से आसन करने चाहिए, नित्य प्रतिदिन हमें अपने कौन सा जो कि डेली रूटीन अपनाना चाहिए शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए, आज हम आपसे बात करेंगे। शुगर लेवल को कम करने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम और जो कि हमें इस रोग में करना चाहिए वह है कपालभाति। कपालभाति शुगर लेवल को कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के रूप से जाना गया है। कपालभाति इसीलिए क्योंकि वह श्वास निर्मित है, श्वास को श्वास से जोड़ करके किया जाता है। श्वास की गति को बाहर छोड़ना, अंदर लेना, यह कपालभाति की प्रथम प्रक्रिया है। कपालभाति को करने से हमें मन चित्त को एकाग्र बैठ करके बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, और अपने मुख मंडल पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ में इस प्राणायाम को शुरू करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम मधुमेह रोगियों के लिए बहुत ज्यादा ही फायदेमंद होता है और वह उनके शरीर की तंत्र तंत्रिकाओं को और दिमाग की नसों को मजबूती देता है।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: नमस्कार, राधे राधे, जय जिनेंद्र। सुबह की पहली किरण के साथ आज हम बात करेंगे उस संगीत की जो शब्द नहीं जहां श्रद्धा बोलती है, जो सुर नहीं जहां समर्पण का भाव रहता है। आज पहली किरण में पचरा, देवी गीत, भजन, कीर्तन, डिवोशनल सॉन्ग्स जैसे चीजों पर मैं आपके लिए कुछ खास लेके आई हूँ और जानेंगे कि अलग अलग धर्मों में भक्ति कैसे एक ही धड़कन मन के धड़कती है। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और शो की शुरुआत हो चुकी है पहली किरण के साथ। जी हाँ, शो है आपका पहली किरण और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। आज इस भक्तिमय कार्यक्रम में बात करेंगे उस भक्ति रस पान की जो हम सभी सुबह सुबह बिल्कुल करते हैं। जी हाँ, भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, भाव वही होता है, बस नाम अलग होते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, पचरा ये सिर्फ गीत नहीं, माँ दुर्गा को पुकारने की लोक परंपरा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल या फिर अवध क्षेत्र में जब नवरात्रि आती है तो गांव की चौपाल, मंदिर की सीढ़ियां ढोलक और मंजीरों के साथ गूंज उठती है। आइए आनंद उठाते हैं इस देवी गीत का, जिसे हम क्षेत्रीय भाषा में पचरा कहते हैं। पचरा में माँ को बेटी की तरह बुलाया जाता है। माँ की महिमा भी होती है और संतान का अपनापन। बिल्कुल, आइए इसी भाव के साथ में आगे बढ़ते हैं आपके अपने शो पहली किरण में।

दोस्तों, देवी गीत शास्त्रीय और लोक दोनों रूप में मिलते हैं। इनमें शक्ति, करुणा और संरक्षण का भाव होता है। देवी गीत हमें याद दिलाते हैं कि शक्ति सिर्फ युद्ध में नहीं, ममता में भी होती है। इसके अलावा भजन, भजन मन की चुप्पी से निकलती हुई प्रार्थना है। तुलसी, मीरा, कबीर से लेकर आज के सरल भजन तक, भजन हमें ईश्वर के करीब नहीं बल्कि अपने भीतर ले जाता है, उस ईश्वर से साक्षात्कार करवाता है जो हमारे ही अंदर हमें प्राप्त होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फिर इस भजन की ओर। भजन वो दीप है जो बाहर नहीं भीतर की ऊर्जा को ऊर्जावान करता है, उजाला फैलाता है और प्रकाशित करता है।

श्रोताओं, अब बात करेंगे कीर्तन की। आखिर कीर्तन क्या है? कीर्तन संगीत का ही एक भाव है, एक स्वरूप है, एक रूप है, जिसके द्वारा हम भक्तिमय होकर अपने ईष्ट को, अपने ईश्वर को याद करते हैं। और कहा भी जाता है, जब पूजा पाठ की बात होती है, जब इबादत की बात होती है, जब प्रभु की बात होती है, तो वहाँ पे भाव ही सबसे ज्यादा काम आता है। कहते हैं ना, प्रार्थना में सबसे ज्यादा शक्ति होती है। और जब वो प्रार्थना, वो शक्ति, वो भाव सुर और ताल से बंध जाए, फिर पूछना ही क्या, फिर कौन नहीं मोहित होगा, कौन नहीं आपसे जुड़ना चाहेगा। बिल्कुल इस कीर्तन की तरह, कीर्तन सामूहिक भक्ति है। नाम का उच्चारण, ताल में डूबना और डूबा हुआ मन, और लय में झूमता हुआ विश्वास, इन सभी का मिश्रण होता है कीर्तन में। जहाँ एक स्वर नहीं, सैकड़ों दिल एक साथ हरि नाम लेते हैं, वही कीर्तन है। कीर्तन यानी उसकी रटन। आइए लेते हैं एक बार फिर से उन्हीं का नाम।

अब जानेंगे कि अलग अलग धर्मों में भक्ति संगीत का महत्व क्या है। इस्लाम धर्म में जो भक्ति संगीत होती है उसको हम हम्द या नात कहते हैं। हम्द यानी अल्लाह की प्रशंसा। जिन संगीतों में अल्लाह की प्रशंसा हो रही होती है उन्हें हम हम्द के नाम से जानते हैं। और नात यानी पैगंबर मोहम्मद की शान में गाया जाने वाला संगीत। यहाँ सुर नहीं सजदा होता है, किसके लिए? उस ऊपर वाले के लिए।

पुलिस की तरह मैंने भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन अब मैं जानता हूँ ये आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। तो फिर कौन है ये आदमी, हमारे मुल्क में क्यों घुसाया, चाहता क्या है? बजरंगी आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है जिसका पाकिस्तान में घुसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मोहब्बत। मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान पाकिस्तानी बच्ची के लिए जो अपने माँ बाप से बिछड़कर खो गई थी हिंदुस्तान में। बजरंगी पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो इस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए उसके पास सिर्फ यही रास्ता बचा था,

कहानी को हर चैनल ने दिखाने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि ये कहानी बेकार है, बकवास है, इसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो आप लोग ही बजरंगी भाईजान की मदद करें ताकि वो उस बच्ची को अपने घर पहुंचा दें और खुद सलामती के साथ लौट जाएं अपने वतन, अपने घर हिंदुस्तान।

हम बात करते हैं ईसाई धर्म की। ईसाई धर्म यानी हिम्स। यहाँ पे हम भजन को हिम्स के नाम से जानते हैं। चर्च में गाए जाने वाले गीत ईश्वर को धन्यवाद देते हुए और उनकी प्रार्थना के लिए होते हैं, और इन गीतों के माध्यम से हम प्रभु यानी यीशु से संवाद करते हैं।

अब बात करते हैं सिख धर्म की, जहाँ पे इस कीर्तन, इस भजन को शब्द नाम से जाना जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के शब्दों को रागों में गाया जाता है और इसी को हम शब्द कहते हैं। शब्द ही गुरु है और संगीत उसकी राह है, ऐसा माना जाता है।

बौद्ध धर्म में इसी को चैंटिंग कहते हैं। किसको? भजन को, कीर्तन को, ईश्वर में जुड़ जाने को, भक्ति में धुन पिरोने को चैंटिंग के नाम से जानते हैं हम बौद्ध धर्म में। मंत्रों का सामूहिक जाप मन को शांत करने के लिए इसका उच्चारण किया जाता है। उच्चारण को इंग्लिश में यानी अंग्रेजी भाषा में चैंटिंग कहते हैं और इसीलिए इसका नाम चैंटिंग पड़ा।

आइए अब बढ़ते हैं एक छोटी सी कथा की ओर। एक गांव में मंदिर, मस्जिद और चर्च पास पास थे। एक दिन बिजली चली गई, अंधेरा घिर आया। तभी मंदिर से भजन, मस्जिद से नाथ और चर्च से प्रार्थना की आवाज आई। अंधेरा वही था, वही अंधेरा, पर डर चला गया था। गांव के बुजुर्ग बोले, ईश्वर का नाम अलग हो सकता है पर आवाज एक ही होती है, वो भी श्रद्धा की। आइए चलते हैं हम भी इस श्रद्धा को और रंग देते हैं, और रूप देते हैं, और उस ईश्वर की, उस अल्लाह की, उस गुरु की इबादत में सजदा करते हैं।

श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं पचरा, देवी गीत, भजन, कीर्तन, चैंटिंग जैसे अन्य शब्दों की, जो कि एक संगीत होता है और ये संगीत होता है उस ईश्वर से जुड़ने का माध्यम, यानी भक्तिमय माध्यम, जिसमें हम अपने भावों को शब्दों से जोड़ते हुए सुर लय तान से जोड़ देते हैं। पचरा एक देवी गीत है जो कि भोजपुरी, मैथिली और बंगाल की लोकप्रिय परंपरा में गाया जाने वाला देवी दुर्गा और अन्य देवियों को समर्पित भक्ति गीत है, जिसमें भक्त सीधे माँ से संवाद करते हैं, उन्हें घर बुलाते हैं और अपनी मनोकामनाएं बताते हैं। ये गीत अक्सर नीम के पेड़ के नीचे और ढोल मंजीरे के साथ गाए जाते हैं, जो सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव दिखाते हैं। पचरा शब्द का अर्थ है देवी के लिए गाए जाने वाले पांच या अधिक पद या छंद। ये देवी दुर्गा, शीतला माता और अन्य देवियों की स्तुति, महिमा, शक्ति का वर्णन करता है, जैसे उन्हें घर पर बुलाना या रोकना। इसमें भक्त और देवी के बीच सीधा संवाद यानी बातचीत होता है, जिसमें भक्त अपनी पीड़ा और इच्छाएं बताते हुए मां को मनाता है। भक्त सीधे मैया भवानी कहकर संबोधित करता है और उनसे बातचीत करता है। ये गीत लोक परंपरा का हिस्सा है, जो बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा अन्य राज्यों का भी हिस्सा माना जाता है। ढोलक, मंजीरा, हारमोनियम जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है ऐसे गीतों में, और तालियां भी बजाई जाती हैं, जिनसे इस गीत संगीत में और भाव उत्पन्न होता है और भक्त भाव भजन से भाव विभोर होकर इस संगीत में रम जाया करते हैं।

श्रोताओं, अब मैं पचरा गीत से संबंधित कुछ और बिंदुओं पर आपसे चर्चा करती हूँ। पचरा गीत मुख्य रूप से नवरात्रि और अन्य धार्मिक अवसरों पर देवी दुर्गा की स्तुति और वंदना के लिए गाए जाते हैं, जिनमें भक्त देवी को घर बुलाते हैं और सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। ये गीत अक्सर विवाह समारोहों और लोक अनुष्ठानों में भी गाए जाते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में, जहां इन्हें सामूहिक रूप से गाया जाता है। इस गायन की विशेषताएं होती हैं, ये गीत देवी और भक्त के बीच सीधा संवाद स्थापित करता है, जहां भक्त देवी को घर आने का निमंत्रण देते हैं और उन्हें रोकने की मिन्नतें करते हैं। महिलाएं अक्सर मिलकर इन गीतों को गाती हैं, जिससे एक सामूहिक भक्ति और आनंद का वातावरण बनता है। भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी जैसी स्थानीय भाषाओं में ये गीत बहुत ही लोकप्रिय है और प्रचलित भी है, जो स्थानीय संस्कृति और आस्था को दर्शाती है। तो आइए हम भी चलते हैं एक प्यारे से देवी गीत की ओर।

तो दोस्तों, पचरा हो या कीर्तन, भजन हो या नाट, अगर मन सच्चा है तो हर सुर हर शब्द ईश्वर तक पहुंचता है। इसी विश्वास के साथ मैं हूं आपकी आरजे आकांक्षा। आप सुन रहे हैं पहली किरण, जहां हर सुबह भक्ति से शुरू होती है। और जब घर में गूंजते हैं भक्ति के स्वर, कभी ध्यान दीजिए, जिस घर में सुबह सुबह कोई भक्ति गीत बज रहा हो, वहां दीवारें भी शांत लगती हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता महसूस होता है। भक्ति संगीत सिर्फ कानों तक नहीं, सीधे घर के माहौल में उतरता है।

ऐसे संगीत जो कि भक्ति से जुड़ाव रखते हैं, घर में सहनशीलता बढ़ाते हैं, आपसी बातचीत में मिठास लाते हैं, गुस्सा अपने आप ही आपको धीमा होता महसूस होगा। भजन सिखाता है कि ईश्वर की भक्ति इंसानियत से शुरू होती है। बौद्ध धर्म में जिसे चैंटिंग कहते हैं, उसका मतलब है उच्चारण करते रहना। कोई भी मंत्र हो, कोई भी भजन हो, अगर हम उसका लगातार उच्चारण करते हैं या वो हमारे कान में गूंजता है, जिससे हमारे जहन पे एक अलग सा ही प्रभाव होता हमें महसूस होता है। उसके बाद मानसिक तनाव कम हो जाता है, घर का वातावरण स्थिर और शांत हो जाता है, नींद और एकाग्रता बेहतर होती है। जब शिव का नाम चलता है तो घर की हवा में भी ठहराव आ जाता है। कोई भी मंत्र हो, अगर उसका उच्चारण निरंतर होगा तो पॉजिटिविटी तो आनी बनती है।

0: आप नहीं आओगे, पर मुझे विश्वास था आप आए बिना रह नहीं पाओगे।
1: अब मैं आपको एक और कहानी की ओर लेके चलती हूँ। एक छोटी सी कहानी। एक परिवार था जहाँ रोज सुबह टीवी की आवाज तेज होती थी, बहस, जल्दबाजी, चिड़चिड़ापन। एक दिन किसी ने टीवी की जगह हल्का सा भजन चला दिया। कुछ नहीं बदला सिवाय माहौल के, और जब माहौल बदला तो लोग खुद ही बदल गए। चलिए हम भी बदलते हैं अपने स्वभाव को, मन को शांत करते हैं, ध्यान करते हैं और दिन की बेहतर शुरुआत करते हैं।

शांति ही साधन है एक सुखी जीवन की, और इसीलिए हम ईश्वर का निरंतर ध्यान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब हम किसी मंत्र को सामूहिक तौर पर चैंटिंग करते हैं तो हमारा मन शांत होता है। दोस्तों, भक्ति संगीत घर की दीवारों को नहीं दिलों को सजाता है। अगर घर में रोज कुछ मिनट भी ईश्वर का नाम गूंजे तो समझिए घर खुद एक दुआ बन जाता है। आप सुन रहे हैं पहली किरण, जहां हर स्वर सुकून बनकर उतरता है। अब मुझे इजाजत दें और अपने दिन को बेहतर बनाएं, एक ऊर्जावान विचार को जन्म दें और पूरे दिन सकारात्मक रहने का प्रयास करें। राधे राधे, जय जिनेंद्र, रब राखा तो सब राखा।

0: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
1: What? You don't care.
2: अरे बाहर में जाओ यार, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। I'll die alone.

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840 3395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9260 9761 9260 9817 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

वादे तो बहुत सारे होते हैं, और वो वादे जो हम करके सच में भूल जाते हैं। अरे भाई, ऐसे कई सारे वादे होते हैं जो हम करते हैं और ख़ुद ही भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आदत जो है वो थोड़ा सा भूल जाने वाली होती है। फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। आपने ट्यून किया है रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ आपका मॉर्निंग वाला शो का होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान। सो यस, आज बहुत सारी बातें होने वाली है, और साथ ही साथ आज हम आपको काफ़ी कुछ बताने वाले हैं आपके मंडे मॉर्निंग स्पेशल शो में, आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। सो आज है मंडे, और मंडे का मतलब पूरे वीक की शुरुआत। सो पूरे वीक की शुरुआत कैसी होनी चाहिए? धमाकेदार, उम्मीदों से भरी। यस, ये सब कुछ मिलने वाला आज आपको आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के ज़रिए। तो चलिए भाई, फिलहाल इस गाने को वापस से सुन लेते हैं पूरा, और आने के बाद आपको ले चलते हैं जैसा कि वादा किया है आज के मंडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे की तरफ, और जानते हैं कि भाई आज का थॉट ऑफ द डे आपके लिए क्या लेकर के आया है और आपको क्या बनाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हर रोज़ का थॉट ऑफ द डे हमारे दिन को बनाता है, और दिनों दिन से बनती है हमारी जिंदगी। सो यस, लाइफ बनाने वाले थॉट्स होते हैं। तो देखते हैं भाई आज क्या कुछ आ रहा है और आज आपके लिए क्या लेकर के आया है। फिलहाल ये खूबसूरत सा गाना आप सुनिए, वापस से आकर बताते हैं कि आखिर आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। स्टे ट्यून ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 9.6 FM।

0: कुछ बोलना।
1: हाँ जी, तो चलिए आप बोलना है तो हम आज का थॉट ऑफ द डे बोलते हैं। एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गोंडा में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन। सो भाई, वक्त हो गया है आपको ले चलने का आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ और रूबरू कराने का कि आखिर आज का थॉट आपके लिए क्या है कह रहा आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। स्टे ट्यून्ड।
2: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

एक सॉन्ग तो सुना ही होगा आपने, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, है ना। दरअसल आज कुछ ऐसे ही दिशा से संबंधित थॉट ऑफ द डे है, और इस वीक की शुरुआत है, नया वीक है, नया मंथ है, 5 तारीख है, सब कुछ बहुत बेहतरीन है, और ये थॉट एक शुरुआत के लिए परफेक्ट थॉट है। आज का थॉट कहता है कि घड़ी से पहले कंपास का आविष्कार हुआ था। जी हाँ, यानी जब घड़ी बनी जिसमें हम समय देखते हैं, उससे भी पहले, बहुत पहले कंपास का आविष्कार हुआ था। कंपास वही जो दिशा बताता है किस दिशा में आप हैं और किस दिशा में कहाँ आप जा सकते हैं। सो आज का थॉट ऑफ द डे कहता है कि घड़ी से पहले कंपास का आविष्कार हुआ था क्योंकि वक्त से ज्यादा दिशा मायने रखती है। वाओ, कितना बेहतरीन थॉट ऑफ द डे है, कितनी प्यारी बात कर रहा है कि वक्त से ज्यादा दिशा मायने रखती है। यानी वक्त कितना क्या लगेगा ये तो बाद की बात है, दिशा डायरेक्शन भाई, कई बार क्या होता है पूरी पूरी लाइफ जो है वो डायरेक्शन लेस होती है और लास्ट

लास्ट में समझ में आता है यार कुछ किया ही नहीं, मतलब लिटरली कुछ नहीं किया, या कितना सारा वक्त दे देते हैं उसके बाद लगता है अरे यार ये क्या कर रहे थे हम, हमें यहां तो नहीं होना था, हमें कहीं और होना था। क्यों? क्योंकि वक्त में तो आप समझ जाएंगे, वक्त तो आपके पास चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है, लेकिन डायरेक्शन अगर नहीं है या सही नहीं है तो सोचिए आप कहां पहुंचेंगे। आप कहीं पे भी पहुंच जाएंगे, कितनी भी दूर पहुंच जाएंगे, कितनी भी आगे पहुंच जाएंगे, लेकिन सब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि सारा वक्त आपने लगाया तो कहां, उस डायरेक्शन में जहां आपको जाना ही नहीं था, और जहां जाना था वो डायरेक्शन नहीं चूज किया। सो इसलिए आज और अभी के जस्ट बाद इस थॉट ऑफ द डे को सुन लेने के बाद आप ये बात समझ लीजिए कि जो दिशा है वो ज्यादा मायने रखती है वक्त से भी ज्यादा, यानी समय से भी ज्यादा दिशा मायने रखती है, क्योंकि अगर रास्ता ही नहीं वो होगा जहां हमको जाना है तो सारी यात्रा, सारा समय, सारा एक्साइटमेंट सब का सब धरा का धरा रह जाएगा। कितना सारा वक्त हम कहीं पे भी लगा दें पर वो उससे बेहतर नहीं होता है। डायरेक्शन क्या है हमारी, दिशा क्या है वो हमें तय करना है, हमारे लिए बेहतर क्या है वो हमें तय करना है, हमें कहाँ पहुँच करके बहुत अच्छा फील होने वाला है वो हमें खुद तय करना है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिनको हम बहुत लंबे समय तक भी बहुत खुशी खुशी लेकर के चल सकते हैं वो हमें तय करना है। और बिना डायरेक्शन के अगर हम बढ़ते जा रहे हैं तो आपको समझ में आता है बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी भी दिशा में निकल जाया जाए और फिर कहा जाए अरे इससे अच्छा था चौराहे पर पता कर लेते कि जिस जगह जाना है वो रास्ता कौन सा था। सो डायरेक्शन का होना और सही होना ये वक्त के होने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आज का थॉट जिस तरह बता रहा है मुझे लगता है ये पूरा वीक, एक पूरा हफ्ता इसको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बेहतरीन है, यानी इस बात को हम समझ गए हैं कि वक्त से भी ज़्यादा मायने अगर कोई रखता है तो वो डायरेक्शन रखती है, दिशा रखती है, और किस दिशा में जाना है ये हमको पता करना ही होगा अगर नहीं है, और अगर है तो बस उस दिशा में जाना होगा, नहीं तो सारा समय उसमें चला जाएगा। और इसीलिए घड़ी से भी पहले जो आविष्कार हुआ वो कंपास का हुआ, कंपास दिशा दिखाता है और घड़ी समय बताती है, समय चलता रहता है दिशा हम तय करते हैं, और उसी दिशा में लगाया गया समय हमको ये बाद में फील कराता है, रियलाइज कराता है कि हमने ये समय सही जगह लगाया या नहीं। सो इसलिए आज इस बात को हम जान गए हैं कि हमारी लाइफ की, हमारी ज़िंदगी की दिशा का होना और सही होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कि ये आज का थॉट ऑफ द डे आपको पूरी ज़िंदगी भर याद रहने वाला है, और जब कभी बात आएगी कि अरे ज़्यादा समय नहीं है जल्दी चलो तो आप कहेंगे नहीं वो जल्दी बिल्कुल नहीं करने वाले, क्योंकि समय अब जो बीतेगा वो सही डायरेक्शन में बीतेगा, सही रास्ते पे बीतेगा, उन चीज़ों पे बीतेगा जो सच में मेरे लिए है, उन चीज़ों पे बीतेगा जो मैं करना चाहती हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, जहाँ मैं जाना चाहती हूँ, जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, हर उस चीज़ पे बीतने वाला है। सो आज के बाद से समय से भी ज़्यादा अगर आपकी ज़िंदगी के लिए कोई इम्पॉर्टेंट है तो वो है डायरेक्शन, वो है दिशा, है ना। तो चलिए भाई फटाफट से आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको आज का मॉर्निंग वाला थॉट कैसा लगा, यानी वो लोग जो सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो को रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से, उसी एप्लीकेशन में चैट का ऑप्शन है, आप जो कुछ भी लिखेंगे इस थॉट के रिगार्डिंग वो हम तक सीधे पहुँच जाएगा। तो चलिए आपके बताए जाने का इंतज़ार है और साथ ही साथ वापस से आने के बाद आपके मैसेजेस को पढ़ने का इंतजार मुझे है।

0: सो एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। भाई इस गाने में आपको पूरा एहसास मिला होगा, क्योंकि शब्द एहसास से रिलेटेड सारी बातें इसमें कही गई है। सो मुझे लगता है जो अभी थॉट ऑफ द डे भी आपने सुना है, वो उसका भी एहसास आपको पूरा मिल गया होगा कि किस तरह से वक्त से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी डायरेक्शन, क्योंकि सारा वक्त फिर वहीं लगाना है। सो कहाँ लगा रहे हैं, डायरेक्शन क्या है, कैसी होनी है, ये सब कुछ जान लेना पहले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? सो चलिए इसी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई आप लोगों ने क्या रिएक्शन दिए हैं आज की आपकी मॉर्निंग के बारे में भी, चूँकि आप बताते हैं बहुत सारे आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं। तो आज मंडे मॉर्निंग में क्या आया है आरजे अदनान के पास पक पका कर तो ये भी देखते हैं। और साथ ही साथ हमने जैसा कि बताया था कि आज बातों की लड़ी में कई सारी बातें हैं जो कि वन बाय वन करके आप तक आती रहेंगी और ऑफ कोर्स आपको सुलाती नहीं रहेंगी बल्कि सोए हुए को जगाती रहेंगी क्योंकि सोने का टाइम रात में था, अब उठने वाला टाइम आ गया। भाई मॉर्निंग शो में हम काम ही करते हैं, उठाते हैं, यानी मम्मियों की साइड हम होते हैं और साथ ही साथ मम्मी का काम आसान कर देते हैं आपको उठा करके। मम्मी कहती हैं भाई हमें तो बड़ा स्ट्रगल होती है, तो मुझे लगता है कि हाँ यार सही बात है, हम उठ गए हैं तो फिर आप क्यों नहीं उठ पा रहे हैं, राइट? तो चलिए आपको ले चलते हैं मैसेजेस की तरफ और बताते हैं क्या क्या मैसेजेस फिलहाल आ गए हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में उन लोगों की तरफ से जो सुनते हैं चैट बॉक्स पे आते हैं, यानी रेडियो ज्ञानस्थली की एप्लीकेशन से सुन करके चैट पर लिखते हैं।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

हाँ जी, तो काफ़ी सारे मैसेजेस आ गए हैं और चलिए अब वक्त है आपके मैसेजेस को रीड करने का। यस, गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। सो शुरू से शुरू करते हैं और बताते हैं कि भाई किस किस के क्या क्या मैसेजेस आए हुए हैं। सबसे पहले जो मैसेज आज के शो में आया है वो अरविंद का आया है। आपने लिखा है, अबव ऑल चैलेंज योरसेल्फ, यू मे वेल सरप्राइज योरसेल्फ एट व्हाट स्ट्रेंथ यू हैव, व्हाट यू कैन अकम्पलिशमेंट। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड आरजे अदनान, थैंक यू सो मच टू यू अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। और आप लिखते हैं कि हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, सभी को सुप्रभात। आपको भी सुप्रभात, और ये आपकी आज की जो उम्मीद है वो सफल हो, ऐसी हम पूरी कामना करते हैं। थैंक यू सो मच अरविंद जी। आशुमिश जी हैं फ्रॉम लखनऊ से, आप लिखती हैं, सुप्रभात सर जी, सुप्रभात। आगे लिखती हैं, जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान दे, यही बड़ा धन है। वाओ, क्या बात है। और सुप्रभात, आपको भी स्वागत है आशु जी आपका गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। सविता दुबे जी है, सुप्रभात सभी को, आपको भी सुप्रभात। साथ में इतने सारे बेहतरीन इमोजीज से सराबोर कर दिया है आपने चैट बॉक्स को, मजा ही आ रहा है। इसके बाद प्रीति जी है बहराइच से, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत करते हैं प्रीति जी गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। एंड इसके बाद जो है चलते हैं आगे अगले कमेंट की तरफ, जो कि है सविता दुबे जी का, लिखती हैं, कब कौन दिशा माँ जाएगा नहीं पता, किसी के लिए पता, इसलिए मैं खुद का फैसला खुद लिए हूँ, बस आप सभी साथ हो, सुविचार अपना चाहिए। बहुत प्यारा सुविचार बोला, थैंक यू सो मच कि आपको दिशा का नहीं पता लेकिन आप पूरी कोशिश में हैं। और अच्छी बात यह है कि जो वक्त है उसको दिशा जानने में लगाया जाए, उसकी तरफ बढ़ा जाए, वो सफल होगा। उसके बाद एक कदम भी उसकी तरफ बढ़ाया सफल होगा, नहीं तो ऐसे ही रैंडम दिशा में बढ़ाई गई पूरी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। सच में प्रीति जी लिखती, ऑसम थॉट, वाकई में दिशा यदि सही मिल जाए तो जिंदगी जीने के लिए सफल बन जाती है ना, थैंक यू। एंड सविता दुबे जी लिखती हैं, सर मैंने दिशा को सही सच कही है, बिल्कुल ना, थैंक यू। रवि तक्षक अलबग जी भी हमारे साथ मौजूद है, रवि जी आपका स्वागत है, वेलकम है गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। आप लिखते हैं, समय चलता रहता है, दिशा हम तय करते हैं, समय अपने आप किसी मंजिल तक नहीं ले जाता, वो तो बस चलता रहता है, मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें अपनी दिशा तय करनी होती है, और जिस दिशा में हम अपना समय लगाते हैं वही समय एक दिन हमें महसूस कराता है, ये रियलाइज कराता है कि हमने अपना जीवन सही जगह लगाया था या नहीं। इसीलिए आज हम ये समझ पाए हैं कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत सिर्फ समय बचाना नहीं बल्कि अपनी सही दिशा करना है, क्योंकि समय की कीमत तब समझ में आती है जब पीछे मुड़ कर देखते हैं। क्या बात है, इस चीज़ को बड़ा ही अच्छा इवेल्युएट करने का तरीका आपने बताया कि भाई इसकी कीमत तो तभी समझ में आती है जब हम पीछे मुड़ कर देखते हैं, और पीछे मुड़ कर देखने पे आपको ये ना लगे कि हमारी डायरेक्शन ही जो है वो गलत है, बस ऐसे ही चूज़ कर लिया बिना समझे जाने, है ना। तो इसके बाद चलते हैं आशु मिश्र जी की तरफ, और आप लिखती हैं, कौन कब किसके लिए महत्वपूर्ण हो जाए ये वक्त और परिस्थिति पर निर्भर करता है। वेरी नाइस थॉट सर जी, थैंक यू सो मच। गीता श्रीवास्तव जी गोंडा से हैं, आपने भी लिखा है, गुड मॉर्निंग आरजे सर, गुड मॉर्निंग टू यू, और आपके मॉर्निंग का ओ जो है वो सूर्य देवता को लेकर आया है। इसके बाद आशु जी लिखती हैं, वक्त की कीमत क्या है, कोई उस अखबार से पूछो जो सुबह चाय के साथ तो कीमती होता है मगर शाम तक रद्दी हो जाता है। सुबह ही आप सब लोगों का स्वागत है, वेलकम है गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान आपका वेलकम करते हैं। और आज का सुपर्ब थॉट और उससे ज़्यादा सुपर्ब आपके रिएक्शंस, आपके जो प्रतिक्रियाएं थी उस थॉट पर, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। इस वक्त आपने ट्यून किया हुआ है अपने रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम को फ्रिक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से, और साथ ही साथ रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से, यानी वो लोग जो एंड्रॉयड यूज़र हैं वो प्ले स्टोर से, और आईफोन यूजर्स ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपना रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। फिलहाल वक्त हो गया है आपको एक बेहतरीन से सॉन्ग को सुनाने का, उसके जानिब ले चलने का,
और ऑफ कोर्स ऐसे सॉन्ग्स हमको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं भाई, जो कहीं ना कहीं बड़े एहसासों के साथ में होते हैं, है ना। तो ऐसा ही कुछ आपको सुनाने वाले हैं अब अगले म्यूज़िक में, यानी आप काफ़ी कुछ फील करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है। और इसके अलावा मैं ये बता दूं कि भाई लगातार आज कई सारी ऐसी बातें हैं जो आपसे बहुत बेहतरीन अंदाज में होती रहने वाली है, और आपको काफ़ी मज़ा भी आने वाला है, आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी करने वाले हैं। सो इसीलिए आपसे हम कह रहे हैं कि भाई बने रहना है अपने रेडियो ज्ञानस्थली 9.6 FM पर, क्योंकि यही तो है आपके गोंडा शहर की धड़कन। तो चलिए अब सीधे चलते हैं अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ, वापस से आएंगे तो आने के बाद बातों का पिटारा खोलते हैं और वन बाय वन करके सारी बातें आप तक पहुंचाते हैं। सुनते रहिए अपना रेडियो ज्ञानस्थली 9.6 FM।

0: भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
5: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
6: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
7: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
6: विजिट करें एल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
8: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: मुझे तो लगता है कई बार रूह की भी संगत बदल जाती है सोहबत में, है ना? और आप तो इसके बेहतरीन एग्जाम्पल है, यानी आपने इस बात को महसूस भी किया है। फिलहाल एक सवाल जो आ रहा है जहन में और उसका जवाब भी शायद उसी सवाल में है। तो सवाल क्या है ये जरा मैं पूछूं? चलिए।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सोचा है कभी कि हर चीज हमको बड़ा जल्दी क्यों चाहिए होती है ना? कोई भी चीज जल्दी मिल जाए, जल्दी हो जाए। चाहे वजन कम करना हो तो 30 डेज चैलेंज कर लेंगे, बॉडी फिट करना हो तो 90 डेज, और न जाने कितने कितने डेज में हम सारे चैलेंजेस कर लेंगे। और कई बार तो 90 घंटे में हम इंग्लिश भी सीख लेते हैं, वो भी दिन दहाड़े, है ना? सो ये जो जल्दबाजी का कॉन्सेप्ट है वो हम इंसानों में इधर कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है। हर चीज़ बड़ी ही इंस्टेंटली चाहिए, जल्दी चाहिए, जबकि हमने हमेशा बताया कि भाई जल्दी मिल जाने वाली चीज़ों का सफ़र का मज़ा नहीं होता है। सो ये जो जज्ब करते हैं, ये जो हम फील करते हैं, वो चीज़ों को वक्त लेकर ही कर सकते हैं। सो हर चीज़ को इतनी लेकर जल्दी क्यों है? मुझे लगता है कि अगर ये सवाल आप में भी है, और कहीं ना कहीं आप भी इस बात के शिकार हैं कि हाँ, आपसे भी कई चीज़ें जल्दबाजी में आप सोचते हैं कि हो जाए, फटाफट से हो जाए, इवन मैं खुद भी, तो शायद नेचर इसका जवाब देता है, प्रकृति के पास इसका सीधा आंसर है। सिर्फ आपको देखना है तो पेड़ को देखिए, है ना? रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, इतना थोड़ा कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पेड़ ना ही कोई अनाउंसमेंट करता है कि मैं बड़ा हो रहा हूं, ना ही किसी से कोई कंपैरिजन करता है कि कोई मुझसे बड़ा क्यों है, और कोई 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं लेता है कि 30 दिन में मुझे बदल जाना है। फिर भी इन सारी चीज़ों को छोड़ दें, उसके बाद भी ये आगे जा करके एक पेड़ बन ही जाता है। सोचने वाली बात है, एक बीज, एक पौधे से शुरू हुआ सफर बिना कुछ कहे धीरे धीरे करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करता है, ना ही कोई 30 डेज जैसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन लेता है, ना ही कोई अनाउंसमेंट करता है कि मैं बढ़ रहा हूं। उसके बावजूद एक दिन ऐसा आता है कि वो पेड़ बन जाता है बिना कुछ कहे। शायद हमें भी थोड़ा सा धीरे बढ़ना वाला जो है एक कॉन्सेप्ट वो सीखना चाहिए, है ना? बहुत तेजी से नेचर कोई चीज सपोर्ट ही नहीं करती है, धीरे धीरे धीरे धीरे। ये जो प्रलय और आपदा आती है ये भी धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे पेड़ कटते चले गए, नदियों को बंद कर दिया गया, तालाबों को पाट दिया गया, धुएं को बढ़ा दिया गया, ग्लेशियर्स धीरे धीरे खिसकते हैं, अचानक नहीं, एक दिन में नहीं, अचानक से खिसक के सब तबाही आ जाती है, बहुत धीरे से होती है, एक दिन ऐसा आता है कि तबाही के रूप में आता है। उसी तरह उम्मीदें भी होती है, एक लगाया गया बचपन का पौधा एक दिन ऐसा आता है कि वो पेड़ बन जाता है बिना कुछ कहे किसी से और बिना किसी से कंपेयर किए हुए। फिर हम इतना ज़्यादा क्यों कंपैरिजन में होते हैं, हम इतना ज़्यादा अनाउंसमेंट क्यों करते हैं? शायद सोचने वाली बात है, पर अगर ये बात समझ लिया तो शायद हमारी लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हर किसी को थोड़ा सा जल्दी चाहिए, है ना? तो ये जल्दी जो है, इस पेड़ को देखने से अंदाजा हो जाएगा कि भाई कितना जल्दी और क्या। तो मेरे ख्याल से जिंदगी का फलसफा बता देते हैं ये दरख्त, यानी ये पेड़ जो धीरे धीरे उगते हैं बिना किसी से कहे, एक पौधे से शुरू होते हैं और बन जाते हैं एक पेड़।

0: देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 901-935-5394 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज, गोंडा।
3: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
4: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: सुबह ही चलिए, इसी बीच में अब हम आपको ले चलते हैं सिटी की अपडेट्स की तरफ और बताते हैं कि आज आपके गोंडा शहर में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ होने वाला है और कल का क्या कुछ रहा। तो भाई ये सब कुछ जानेंगे आप अपने सिटी की अपडेट में सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली के मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite Ajay Khan.

तो सिटी अपडेट में सबसे पहले, एक हफ्ते से बिजली गुल है और इसके चलते जो है वो ग्रामीण एरिया के लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हैं। सो आंधी और बारिश के एक हफ्ते से ज़्यादा वक्त के बाद भी परसिया फीडर की बिजली आपूर्ति बहाल नहीं होने से जो ग्रामीण हैं उनका गुस्सा कल संडे को फूट पड़ा। सो कई सारे ग्रामीण जो है आर्यनगर उपकेंद्र पहुँचे और बिजली आपूर्ति तत्काल बहाल करने की मांग की और मौके पर जो है वो जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिलने से गुस्सा और बढ़ा। सो फिलहाल आपको बता दें कि 12 दिन बाद बहाल हुई है बिजली। विष्णुहरपुर की बात अगर हम करें, ब्योदा मांझा में 12 दिन से बंद बिजली आपूर्ति कल रविवार को बहाल हो पाई। सो ग्राम प्रशासक केवल राम यादव ने बताया कि लाइन ठीक कराने के बाद कई बार शिकायत की गई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। शनिवार को जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन को जानकारी देने के बाद रविवार को बिजली आपूर्ति बहाल हुई। इसके अलावा बता दें आपको, सड़क पर गिरा है 11,000 वोल्ट का तार दुर्जनपुर घाट में। सो बाबापुरवा चौराहे के पास शनिवार की रात 2:30 बजे 11,000 वोल्ट का लाइन का तार टूटकर सड़क पर गिर गया और करंट चूंकि उसमें फ्लो होने की वजह से तार में आग लग गई। सो रात में ही आवागमन कम होने से हादसा जो है वो टल गया। स्थानीय अधिकारियों ने फ़ोन नहीं उठने पर पुलिसकर्मियों ने गोंडा कंट्रोल रूम को सूचना देकर बिजली आपूर्ति बंद कराई। इसके अलावा अब आपको ले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली जो अपडेट आ रही है घटते पानी के साथ बाढ़ की मार को लेकर के आ रही है। जी हाँ, सो आपको बता दें कि उमरी बेगमगंज और विष्णुहरपुर की बात करें तो बाढ़ का पानी अब उतरने लगा है लेकिन नवाबगंज और तरबगंज के माझा एरिया में मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई हैं। खेतों से पानी हटने के साथ ही बाढ़ से हुई तबाही साफ दिखाई देने लगी है। सो कहीं धान की पूरी फसल चौपट हो गई, कहीं खेत में गिरा गन्ना सड़ने लगा है और संपर्क मार्गों पर जमा कीचड़ से आवाजाही की मुश्किल बनी हुई है। इसके अलावा कल की बात करें तो सुबह 8 बजे एल्गिन ब्रिज पर सरयू का जो वाटर लेवल है वो 105.540 मीटर दर्ज किया गया। ये खतरे के निशान से 53 सेंटीमीटर नीचे है। साकीपुर के किसान मोतीलाल और अमेरिका ने बताया कि उनकी 30 बीघा धान की फसल पानी में डूबने से ख़राब हो गई है।

खेत में गड़ा जो गन्ना था वो भी गिर गया है और अब सड़ने लगा है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है वो लगातार बाढ़ की वजह से आती जा रही है, और यही प्रॉब्लम है कि इस तरह की जो मुश्किलें हैं वो फ़िलहाल कम होने का नाम नहीं ले पा रही हैं। इसके अलावा ले चलते हैं आपको अगली अपडेट की तरफ, और अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है ऑफकोर्स स्वास्थ्य विभाग से। सो स्वास्थ्य विभाग की अपडेट की अगर माने तो सर्दी ज़ुकाम बुखार और चर्म रोग के जो मरीज़ हैं वो फ़िलहाल बढ़ चुके हैं। सो अगर हम बात करें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, कल मुख्यमंत्री आरोग्य जन आरोग्य मेला का आयोजन किया गया था जिसमें ग्रामीणों ने पहुंचकर अपनी स्वास्थ्य जांच कराई और डॉक्टर्स से परामर्श भी लिया। ज़्यादातर केंद्रों पर सर्दी ज़ुकाम बुखार खांसी फंगल इन्फेक्शन चर्म रोग से पीड़ित मरीज़ पहुँचे थे। सो चिकित्सकों ने जांच के बाद मरीजों को दवाएं देने के साथ ही

चलने से बिसुही नदी पर डूब करके राशिद की जो है वो जान ना जाती, उसे रोकने के लिए एक अवरोध होता और उसे संभलने का मौका मिलता। सो बिसुही नदी पर बने उस पुल की यही सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। अब इसी कमी की कीमत वसीम यानी उसका परिवार और अपने 11 साल के बेटे राशिद को खोकर चुका रहा है। सो बहराइच के विशेश्वरगंज क्षेत्र के गेंधरिया निवासी राशिद वीरभुरपोच के पास बिसुही नदी पर बने रेलिंग वाले पुल से 4 दिन पहले गुजर रहा था, जिस पर रेलिंग नहीं बनी हुई है, और उसी समय बिसुही नदी में उफान था और पुल के ऊपर से पानी बह रहा था और इससे राशिद का पैर फिसल गया। रेलिंग नहीं होने की वजह से वो सीधे नदी में चला गया। इसके बाद चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, और अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है चेकिंग अभियान को लेकर। सो चेकिंग अभियान के दौरान क्षमता से ज़्यादा सवारियां मिलने पर टैक्सी संबंधी अनियमितताओं और ARTO ने 4 बसों को सीज़ किया है। ARTO RC भारतीय ने बताया कि संडे को शाम गोंडा लखनऊ रास्ते पर करनैलगंज के चौरी चौराहे के पास चेकिंग के दौरान लखनऊ जा रही स्लीपर 2 बसों को रोककर जांच की गई तो क्षमता से ज़्यादा सवारियां मिली। दोनों बसों का टैक्स भी बकाया था, दोनों को सीज़ कर दिया गया है। सुबालपुर के पास चेकिंग में 2 बसों को टैक्स बकाया पाए जाने पर फिलहाल जो है वो सीज़ कर दिया गया है। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, और अगली जो अपडेट आ रही है वो दरअसल बता दें कि भाई प्रतियोगिताओं के साथ जयंती मनाने को लेकर के आ रही है। जी हाँ, सो महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह का जो शुभारंभ है वो कल रविवार को साइकिल रेस और बैडमिंटन प्रतियोगिता के साथ हुआ। साइकिल रेस में बालिकाओं और महिलाओं ने हिस्सा लिया। जूनियर बालक वर्ग में अद्विक बंसल, बालिका वर्ग में हर्षिता संघई, सीनियर बालक वर्ग में कार्तिक अग्रवाल, बालिका वर्ग में रोली जैन और महिला वर्ग में निमिता सिंघी ने प्रथम जगह जो है वो हासिल की है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता के जूनियर महिला वर्ग में कृति सोमानी और यदन्या अग्रवाल, सीनियर महिला वर्ग में नूपुर मोदी और सुरभि केडिया जो है विजेता रहीं। सो फिलहाल इन सभी जो स्टूडेंट्स हैं इनको सम्मानित भी किया गया। और साथ ही साथ आपको हम बता दें अगली अपडेट की तरफ चल करके, सो रोलर स्केटिंग में आदिति और अंकिता ने 4 गोल्ड मेडल जो है वो जीते हैं। लखनऊ में आयोजित ज़िला रोलर स्केटिंग चैम्पियनशिप में नारायणपुर माझा की बहनों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अलग अलग स्पर्धाओं में ये सफलता इन्होंने हासिल की है और जिससे एरिया का नाम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। सो PVC शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे लखनऊ ज़िला रोलर स्केटिंग चैम्पियनशिप का आयोजन 3 और 4 अक्टूबर को किया गया, जिसमें अक्षिता ने 6 से 8 साल आयु वर्ग की स्पीड क्वार्टरिंग को 2 स्पर्धा में प्रथम स्थान हासिल करके गोल्ड मेडल जीता। वहीं 10 से 12 साल की वर्ग में अदिति ने 500 मीटर रिंक और 1000 मीटर रोड रेस का हिस्सा लेकर दोनों स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल जो है वो हासिल कर लिया है। सो खिलाड़ियों ने जो है वो अपनी सफलता का श्रेय कोच अनुपेंद्र जी और प्रशिक्षण और मार्गदर्शन को दिया है। सो परिजनों ने बताया कि नियमित अभ्यास से दोनों बहनों ने ये मुकाम हासिल किया है। अदिति और अक्षिता हाईकोर्ट लखनऊ की अधिवक्ता विश्वदीप पांडे की दोनों बेटियां हैं और दोनों की सफलता पर क्षेत्रवासियों ने फिलहाल खुशी जताई है। सो ये कुछ अपडेट्स थी, और आज के होने वाले इवेंट्स के बारे में बता दें, सुबह 7 बजे से आवास विकास कॉलोनी में मौजूद प्रेरणा पार्क में योग शिविर का आयोजन किया जा रहा था। सुबह 9 बजे से परसपुर ब्लॉक के संसाधन केंद्र में टीचर्स की FLN का प्रशिक्षण हो रहा है। दोपहर 3 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में माध्यमिक शिक्षा विभाग के जनपदीय एथलेटिक्स और सांस्कृतिक कार्यक्रम का समापन भी किया जाएगा। इसके अलावा आपको हम बता दें कि भाई शाम 5 बजे गांधी पार्क में ताइक्वांडो एसोसिएशन की तरफ से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, और ताड़कावध का मंचन करनैलगंज में मौजूद रामलीला भवन में मुनि आगमन और ताड़का वध का मंचन भी किया जाएगा। सो ये आज होने वाले कुछ इवेंट्स हैं जो कि हमने आपको बता दी हैं आपकी गोंडा अपडेट्स में। आई होप कि भाई आप तक ये सारी जानकारी जो है वो मिल चुकी है, और ज़रूर इसमें से कई जानकारियां आपके काम की होने वाली है। सो चलिए फ़िलहाल वक्त है अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ बढ़ने का। उसके बाद जब वापस आते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप तक हमें पहुँचानी हैं, आपको ही बतानी है अपनी जुबानी।
फिलहाल सुनते रहिए मॉर्निंग वाला शो। गुड मॉर्निंग हुंडा विद योर मॉर्निंग।

0: अरे आइए आइए
1: डॉक्टर साहब। अरे जोड़ों में बहुत दर्द है डॉक्टर साहब।
0: अरे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जोड़े तो ऊपर वाला बनाता है।

0: कोटा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 901-935-5394 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर एस सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 9281-976-9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है।

0: धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: हम बबलू बालेश्वरगंज से, आप सुन रहे रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: सो एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं आपका मॉर्निंग चौक RJ अदनान। सो यस, चलिए फिलहाल चलते हैं आपके सॉन्ग्स की तरफ और देखते हैं भाई कि आपके सॉन्ग्स में तो हम बहुत कुछ प्ले करने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और भी बातें हैं जो आप तक पहुंचानी हैं, राइट? सो एक बड़ी प्रॉब्लम है जो कि अभी यंगस्टर्स में देखी जा रही है और वो है ब्रेन फ्रॉग की प्रॉब्लम। जी हाँ, सो ये क्या है ब्रेन फ्रॉग और आखिर ब्रेन में कैसा फ्रॉग होता है, चलिए, यानी ब्रेन फॉग जो है ये क्या है। फॉग तो आप अक्सर विंटर्स में ही देखते हैं कि भाई कोहरा है, धुंधला है। सो ये धुंधलापन, ये कोहरापन जो है ये दिमाग में कैसे आता है, क्या बाहर वाला ही फॉग आता है या ये है कुछ और, आइए बताते हैं।
3: Now you're listening, Good Morning Koda, with your favorite, RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई आखिर सवाल है कि ये युवाओं में क्यों बढ़ रही है ब्रेन फॉग की प्रॉब्लम। सो ब्रेन फॉग है क्या? सो बार बार चीज़ें भूलना, काम पर ध्यान ना लगना या बात करते करते ध्यान भटक जाना, ये अक्सर हुआ होगा। जैसे कोई भी चीज़ है बार बार भूलते जा रहे हैं। अब बताया गया है कि भैया ये वाला जो है सामान आना है घर में, लेकिन हाँ अभी जाते फिर भूल गए, आते हुए फिर भूल गए। ये मेरे साथ भी होता है कई बार। लेकिन हालांकि ये प्रॉब्लम एक अलग है जिसको हम ब्रेन फॉग कह रहे हैं। सो इसके ये संकेत हैं कि बार बार कोई चीज़ भूल जाना, काम पर भी जो है वो ध्यान नहीं लगना या बात करते करते ध्यान भटक जाना, अचानक रुक जाना और कहना कि हम कहाँ बात कर रहे थे। सो इन लक्षणों को आम भाषा में ब्रेन फॉग कहा जाता है। सो ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि कुछ लक्षणों का नाम है। इसके पीछे कई अलग अलग वजहें होती हैं। अगर हम आम वजहों की बात करें, जैसे कि कई सारी चीज़ों के पीछे सबका अपना रीज़न होता है, कॉजेज होती हैं, उसी तरह इसके पीछे भी कुछ कॉजेज हैं, जिसमें नींद पूरी ना होना, जो कि अभी हाल ही फ़िलहाल की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लोगों की नींद ही नहीं पूरी हो रही है, ज़्यादा तनाव, ज़्यादा देर तक स्क्रीन देखना रात में, वक्त पर खाना नहीं खाना, पानी कम पीना, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी या शराब का सेवन करना, कुछ दवाओं का असर भी हो सकता है। सो शुरुआत में नींद, खान पान और रोज़मर्रा की आदतों को सुधारना जो है वो मददगार हो सकता है। अगर नींद आप सही ले रहे हैं, खान पान आप सही कर रहे हैं और रोज़मर्रा की जो आदतें हैं उसमें अगर सुधार कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा बात आती है कि इसकी जाँच आखिर कराना कब होता है। अगर प्रॉब्लम लगातार बनी रहे और इसके पीछे कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, जैसे कि आयरन की कमी भी कई बार होती है, विटामिन B12 की कमी, थायराइड भी कई बार होता है, ब्लड शुगर में बदलाव भी होता है। सो कुछ लोगों में स्लीप एपनिया, एंग्जाइटी, डिप्रेशन या किसी वायरल इन्फेक्शन के बाद भी ब्रेन फॉग हो सकता है। सो डॉक्टर जो हैं लक्षणों और मेडिकल हिस्ट्री के बेस्ड पर ज़रूरी जाँच जो है वो तय करते हैं। यस, सो डॉक्टर से कब मिलना है? अगर ब्रेन फॉग की वजह है पढ़ाई, ऑफिस या रोज़मर्रा के काम इससे प्रभावित होने लगे, तो डॉक्टर से सलाह ले लें। लगातार थकान, कमज़ोरी, चक्कर, हाथ पैर में झुनझुनी, सांस फूलना या बिना वजह वज़न बढ़ना घटना जैसे लक्षण हो, तब भी जांच ज़रूरी हो सकती है। सो डॉक्टर अजय फड़के जो हैं एगिलस डायग्नोस्टिक्स के मुताबिक, सही वजह पता लगाने पर जो प्रॉब्लम है इसका इलाज संभव हो सकता है। सो कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जहां पे आपको देरी नहीं करनी होती है? अगर अचानक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लग जाए, बोलने में दिक्कत होने लग जाए, या चेहरे बॉडी पर एक तरफ कमज़ोरी महसूस हो, या बहुत तेज़ जो है वो सिर दर्द हो, दौरा पड़े, बेहोशी आए, इन जैसे लक्षण दिखाई दे, तो तुरंत आपको इमरजेंसी मेडिकल की हेल्प लेनी चाहिए। सो ये सिर्फ ब्रेन फॉग नहीं बल्कि किसी और बड़ी प्रॉब्लम की जो है वो संकेत हो सकते हैं। सो ब्रेन फॉग के कई लक्षण हो सकते हैं, किसी भी जांच या इलाज के लिए डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। यानी जो बातें बताई हैं इसके इतर भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। सो डॉक्टर की सलाह लेना, ये सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है। तो ब्रेन फॉग के बारे में आज आपने जाना कि भाई फॉग जो है वो सिर्फ बाहर ही नहीं होता है बल्कि हमारे जहन में भी हो जाता है, जिससे हम चीज़ों को बार बार भूलने लग जाते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और इस तरह से न जाने कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आ जाती हैं। सो ब्रेन फॉग से बचना है एंड डेफिनेटली बच करके ही इससे हम निकल सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। इसका जो जांच है वो भी हो ही जाती है। अगर लक्षण बताया गंभीर है तो इमरजेंसी की तरफ भी रुख करना ज़रूरी, लेकिन इन सभी चीज़ों में आपको डॉक्टर की सलाह लेना मस्ट है। आई होप कि ब्रेन फॉग के बारे में आज आप जान गए हैं और शायद इसके बारे में बहुत कम ही लोग बात करते हैं, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि बहुत आम सी बात है, ऐसा हो ही गया है, हम लोग खान पीना अच्छा नहीं है। सो ऐसे के बहुत सारे ऐसे रीज़न देते हैं जिसको ऐसा लगता है कि इसको लिए कंसल्ट करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। बट अगर ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और आपको लग रहा है कि अब ये नॉर्मल नहीं रह गई है, तो डेफिनेटली कंसल्ट करने की ज़रूरत है।
सो चलिए भाई, आपको आज ब्रेन फॉग के बारे में पता चला। आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आपको खुद महसूस हो, या आपके घर में या आपके किसी कॉन्टैक्ट में, तो आप उनको गाइड कर सकते हैं, जैसा कि हमने बताया कि भाई क्या क्या किया जा सकता है और कौन कौन से लक्षण होते हैं, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। आई होप कि ये प्रॉब्लम अब सॉल्यूशन की तरफ चली जाएगी।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: सड़क की धूल और इंजन के शोर के बीच पैदा हुआ एक ऐसा मिशन जो देश के कई खेतों में नई जिंदगी बो रहा है। जी हाँ, अब आप सोचेंगे कि आखिर मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। सो आपको हम बता दें कि 20 से ज़्यादा गायब होती फसलें बचा रहे हैं एक ट्रक ड्राइवर। सो 3 सालों में देश के 100 से भी ज़्यादा किसानों तक पहुँचा चुके हैं दुर्लभ बीज। कौन है ये ट्रक ड्राइवर और आखिर किस चीज़ के दुर्लभ बीज ये पहुँचा रहे हैं और आखिर क्यों पहुँचा रहे हैं, चलिए सब कुछ बताते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan. Ajay Khan.

खेतों में नई जिंदगी बो रहा है। ज्यादातर लोग क्या है, ट्रक में सिर्फ सामान लोड करते हैं। आपने भी यही देखा होगा सामान लोड होते हुए। लेकिन जब बात आ रही है कर्नाटका के मंजूनाथ के ट्रक की, सो भारत की गायब होती कृषि विरासत का सफर करती है ये ट्रक। जी हाँ, सो पेशे से ट्रक ड्राइवर मंजूनाथ पिछले 3 सालों से एक अनोखे ही मिशन पर हैं। जब भी ये एक राज्य से दूसरे राज्य पे सामान लेकर जाते हैं तो अपने साथ 20 से ज़्यादा दुर्लभ और पारंपरिक देशी बीजों की चलती फिरती बैंक लेकर निकलते हैं। सो आजकल जहां बाज़ारों में पारंपरिक देशी बीज गायब हो रहे हैं और हाइब्रिड बीजों का बोलबाला है, वहीं मंजूनाथ हाईवे के रास्ते मिलने वाले किसानों से एक जगह के देशी बीज लेते हैं और दूसरी जगह के किसानों को मुफ्त में सौंप देते हैं। सो प्रकृति को बचाने के लिए बड़े बजट की नहीं बल्कि बड़े दिल की ज़रूरत होती है। सो बिना किसी अपने निजी फायदे के पिछले 3 सालों में ये देश भर के 100 से ज़्यादा किसानों तक ये दुर्लभ बीज पहुँचा चुके हैं। सो मंजूनाथ की कहानी ये साबित फिलहाल करती है कि अगर इरादे सच्चे हों तो आप अपने रोज़मर्रा के काम के साथ भी एनवायरनमेंट और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सो क्या आप भी अपने आसपास किसी ऐसे रियल हीरो को जानते हैं जो पर्यावरण या समाज के लिए चुपचाप काम कर रहा हो? क्योंकि फिलहाल तो मंजूनाथ ने ये बता दिया, कोई शोर शराबा नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, बस लगे हुए हैं ताकि इस नेचर को बचाया जा सके, दुर्लभ होते वो बिन बीजों को जो कि अब फिलहाल मार्केट में ना के बराबर है और ख़त्म होने की कगार पर है। सो ऐसे दुर्लभ बीजों को लेकर के वो फ्री में एक किसान से यानी पैसे लेकर के ख़रीदते हैं और फ्री में दूसरे किसान को दे देते हैं ताकि ऐसे बीजों को बचाया जा सके, ऐसी फसलों को बचाया जा सके जो हमारी परंपरा से चली आ रही है, जो स्वस्थ हमको रखती है और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, सभी के लिए बेहतर और बेहतरीन है। आई होप कि भाई मंजूनाथ की ये पहल जो है वो आप तक ज़रूर पहुंच गई है और आप इस बात की इम्पोर्टेंस को भी समझ पा रहे होंगे कि एक ट्रक ड्राइवर अपनी ड्राइविंग करने के दौरान बीजों को ख़रीदता है और दूसरे राज्य में जा कर के उन ओरिजिनल, उन दुर्लभ, उन ख़त्म होने वाली बीजों को बेच रहा है ताकि उन फसलों को वापस से बचाया जा सके, संरक्षित किया जा सके, पर्यावरण को बचाया जा सके, प्रकृति को निखारा जा सके। ये सारा मिशन जो है वो मंजूनाथ बहुत चुपचाप अकेले होकर भी कर रहे हैं और बहुत बड़ा बदलाव ले करके भी चले आए हैं। आई होप कि भाई मंजूनाथ की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और मंजूनाथ कहीं ना कहीं हमारे लिए भी एक रियल हीरो है, राइट? सो कैसी लगी मंजूनाथ की ये कहानी, चलिए फटाफट से कमेंट करिए और बताइए।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: तो फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग चौक आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग चौक आरजे अदनान। सो मैंने कहा था कि भाई आज इतनी सारी बात बताने वाले हैं कि आप कहेंगे वाह क्या बात है। सो फिलहाल एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, शायद अभी तक आपको इसके बारे में प्रॉपर ना पता हो। तो ज़्यादा गर्म चाय जो है वो हमारे लिए भारी पड़ जाती है। यूँ तो हमें गर्म चाय ही पसंद है और हम कहते हैं कि भाई ऐसी चाय जो है हमको मिलते रहना चाहिए, ऑफकोर्स। लेकिन अगर क्या होता है जब चाय ज़्यादा ही गर्म होती है, सो कुछ इसके लॉसेस भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, शायद आपको नहीं पता है। तो चलिए वापस से आकर के बताते हैं आपको कि जब ज़्यादा ही गर्म हो जाती है चाय तो आखिर क्या क्या नुकसान हो सकता है। फिलहाल बने रहिए अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो में मॉर्निंग चौक आरजे अदनान के साथ।

अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग जूट को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6।

0: हाँ जी, सो एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम, रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग चौक का आरजे अतान, और आप ट्यून कर चुके हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। तो चलिए भाई, हम आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाले थे और हमने कहा था कि भाई अगर ज़्यादा ही गर्म चाय हम पीते हैं तो ये हमको भारी पड़ सकती है, और मैंने कहा था आने के बाद मैं इसको डिफ़ाइन करता हूँ कि आखिर कैसे ऐसा होता है। सो यस, वो वक्त आ गया है कि अब आपको रोज़ पी जाने वाली चाय के बारे में थोड़ा सा सतर्क कर दिया जाए।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Ajay Khan.

हाँ जी, तो आपको हम बता दें कि भाई 65 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म चाय, कॉफ़ी या कोई भी हॉट ड्रिंक लंबे वक्त में फूड पाइप को नुकसान पहुंचा सकती है। जी हाँ, वही फूड पाइप जिससे जो खाना और पीना हमारा है वो जाता है। सो एक स्टडी में बहुत ही गर्म यानी हॉट ड्रिंक को इसोफेगल कैंसर के बढ़े हुए जोखिम से जोड़ा गया। सो आखिर 65 डिग्री सेल्सियस पर क्यों सावधानी है, ये भी सवाल उठता है। तो आपको हम बता दें कि बहुत ज़्यादा गर्म कोई भी पेय पदार्थ, लिक्विड वाली चीज़ मुंह में, गले में और फूड पाइप की अंदरूनी परत को जला सकते हैं। सो बार बार ऐसा होने से जलन, माइक्रो इंजरी और टिश्यू डैमेज जैसी चीज़ें हो सकती हैं। सो बॉडी के अंदर क्या होता है, सवाल ये भी आता है। हर बार गर्म चाय से फूड पाइप की जो लाइनिंग है उस पर हीट स्ट्रेस पड़ता है, बार बार चोट और रिपेयर का सिलसिला लंबे वक्त में क्रॉनिक इरिटेशन और सेल्स में बदलाव का कारण बन सकता है। सो कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं? बहुत गर्म पीने से मुंह में गला जलना, खराश, सूखापन, एसिड रिफ्लक्स और सीने में जलन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। लंबे वक्त तक बहुत गर्म जो पेय पदार्थ है इसको लेने से इसोफेगल कैंसर के बढ़े जोखिम से भी इसको जोड़ा गया है। तो सिर्फ चाय नहीं, और भी ड्रिंक्स हैं। जी हाँ, सो रिस्क सिर्फ चाय तक मौजूद नहीं है। 65 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म चाहे कॉफ़ी हो, चाहे गर्म दूध हो, चाहे सूप हो या दूसरे हॉट ड्रिंक, ये सब फूड पाइप पर इसी तरह हीट स्ट्रेस डाल सकते हैं। इस वजह से इसको बताया गया है कि भाई इससे बचना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर 65 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हुआ तो ये हमारे फूड पाइप को नुकसान पहुंचा सकता है। और ये चूंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इसको यूज़ करते हैं, चाहे कॉफ़ी हो, चाय हो, तो भाई पीते ही पीते हैं, 2 से 3 टाइम पीते हैं, और सूप वगैरह बहुत ज़्यादा गर्म अगर होगा तो डेफिनेटली ये नुकसान पहुंचाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। और फ़िलहाल वक्त है आपके बाकी बाद में आए हुए मैसेजेस को पढ़ने का। सो चलिए भाई पढ़ते हैं कि बाद में कौन कौन आया है और क्या कुछ लिखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैसेज आया है वो सुशील यादव जी का आया है। शिक्षा से कहीं भी प्राप्त की जा सकती है लेकिन संस्कार घर परिवार से मिलता है। थैंक यू, स्वागत है सुशील यादव जी आपका गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। और आपने बताया सविता जी कि गोड़वा घाट में बुहारी जो धान है वो डूब गया है, मक्का की फसल भी ख़राब हो गई है। जी हाँ, बड़ी प्रॉब्लम है, वी नो वेरी वेल। एंड संजय जी पटना से है, गुड मॉर्निंग से, गुड मॉर्निंग टू यू संजय जी, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। एंड ऑफ कोर्स धर्मेंद्र मोहन जी है अदनान सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। मेरी मेहनत के वो निवाले कौन देखे, सफ़र में पाँव के छाले कौन देखे, सबको दिखता है आज मेरी हंसी, आंखों के नीचे काले धब्बे कौन देखे, सब अंदाज़ा लगा रहे तस्वीरों से मगर तस्वीरों के पीछे जाले कौन देखे, अंधेरे से लड़कर आया हूँ यहाँ तक, हाथों में मशाले कौन देखे। क्या बात है, थैंक यू सो मच टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र मोहन जी, आपका भी स्वागत है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। एंड इसके बाद आप लोगों ने बहुत सारे ऑफकोर्स मैसेजेस किए हैं, मंजूनाथ जी को लेकर लिखा है सविता जी ने, मंजू जी को सलाम। और आशु जी ने कहा मंजूनाथ को दिल से सल्यूट, थैंक यू सो मच टू यू। राहुल हैं फ्रॉम झुंझुनू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू राहुल, आपका भी वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। और प्रीति जी ने कहा वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा गर्म पेय पदार्थ के बारे में, थैंक यू सो मच। एंड आई होप कि आप खुद से और अपने परिवार का भी अब आप ये ख्याल रखेंगे कि कोई बहुत ज़्यादा गर्म चाय, कॉफ़ी, सूप या कोई भी ऐसी हॉट ड्रिंक ले रहा है और वो 65 डिग्री सेल्सियस से तकरीबन ज़्यादा है तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। फिलहाल ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। कल वापस से मिलते हैं।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9286098197। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
5: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
4: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
5: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
4: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
6: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
6: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी करें 7234-020-202।
6: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
7: राव की गूंज, राव की गूंज, राव की गूंज।
8: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गांव की गूंज। हेलो दोस्तों, आप सब अंकुर, किरण, शेफाली और गुड्डू दुबे के साथ टेक ऑफ कर चुके हैं ना भूलने वाली यादों की तरफ एक खूबसूरत से सफर के लिए। एनी गेस हम कहां जा रहे हैं?
9: सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू, हौले से आती ठंडी हवा, खिली खिली धूप, दूर तक फैली हरियाली, मन को मिलती ठंडक। शेफाली, क्या जो हम सोच रहे हैं वही तुम्हारे मन में भी है?
10: हाँ दीदी, अंकुर हम सबको ले चल रहे हैं शहर की भीड़ भाड़ से दूर हरे भरे लहलहाते खेतों में लोक गीतों की मधुर ध्वनि के बीच।
8: बिल्कुल सही शेफाली, गांव की गूंज के सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गांव की गूंज एक शुरुआत है, एक कोशिश है आप सभी को फिर से गांव से जोड़ने की।

0: बिल्कुल सही गुड्डू भाई, गांव में ही भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। जो लोग अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ, उनको बता दें आप सब गांव की गूंज के सफर पर गांव के बदलते रूप को देख रहे हैं और अपने गांव की माटी की सोंधी सोंधी खुशबू को फिर से महसूस कर रहे हैं। मेरा गांव मुझको बहुत याद आता है, बार बार आकर सपनों में सताता है।
1: दोस्तों, ट्रैफिक भरी सड़क से निकलकर फिर से बैलगाड़ी पर बैठ गन्ना चूसते हुए आइए लौट चले अपने बूढ़े बरगद की छाँव में। किरण दीदी, क्या आप अपनी आवाज के जादू से हम सबके गांव के गूंज के सफर को और सुंदर बना सकती हैं?

0: छोटा सा गांव मेरा, पूरा बिग बाजार था। छोटे छोटे घर थे, हर आदमी बड़ा दिलदार था। कहीं भी रोटी खा लेते थे, हर घर में भोजन तैयार था। दादी की कहानी सुन लेते, वही टेलीविजन और वही अखबार था।
1: वही गांव जहां बीमार हम पड़ते थे, पर दुखी पूरा गांव होता था। शादी एक के घर होती थी, पर तैयारी में हम सब लगते थे। हम इतने मजबूर क्यों हो गए कि हमें अपनों को छोड़कर आना पड़ा। यहाँ तो हमारे पास अपने लिए टाइम ही नहीं है।

0: ग्रेट शेफाली, तुम्हारी आवाज ने तो हम सभी के होठों पर मुस्कुराहट ला दी।
1: राइट अंकुर, गांव की गूंज एक कोशिश है लोगों को अपने गांव से जोड़ने की, गांव में हो रहे परिवर्तन को सबको बताने की, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा जो गांव की मिट्टी से पैदा होती है, इसे न्यू जनरेशन को सिखाना है, तभी गांव के गूंज प्रोग्राम का सफर पूरा होगा।

0: एक गुड्डू हैं जो अभी भी गांव की मिट्टी से जुड़े हैं।
1: भैया गए थे हम भी शहर रहने को, पर 10 दिन में भाग गए। वहाँ पर कुछ खाना ही ना अच्छा लगे। खुले में सोने की आदत है गांव में हमारी, वहाँ बंद कमरे में एसी में तो दम घुटने लगा। पानी में तो इतनी बदबू आ रही थी दवाइयों की कि क्या बताएं आपको।
2: हाँ गुड्डू, ठीक कहा तुमने। शहर की चकाचौंध ने तो अंधा कर दिया है। हम देख नहीं पाते कि ना तो हमारे पास शुद्ध हवा है सांस लेने को और ना शुद्ध पानी है पीने को।

0: कोई सोच सकता है क्या कि ये जादुई आवाज किरण के गांव की मिट्टी से निकली है?
1: हाँ अंकुर, झील के किनारे अपने सहेलियों के साथ बैठकर गुट्टक खेलते थे और गाना गाते थे, वहीं से गाने की शुरुआत हुई। बहुत प्यारी यादें हैं गांव की। शफाली, तुम क्यों इतना परेशान हो?
2: अरे दीदी, हमारे बच्चे बहुत हंसते हैं हम पर, बोलते हैं मम्मी पापा के घर टॉयलेट नहीं है और गांव जाना नहीं चाहते।
1: जो छोटी छोटी गांव की बुराइयां थीं, वो खत्म हो रही हैं। सरकार 12,000 रुपए की सहायता दे रही है कि हर घर में शौचालय हो। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने यह वादा कर लिया हमने।
0: थैंक्स किरण जी, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। अब शेफाली गांव के गूंज का सफर करते हुए साथियों के लिए गाना और हो जाए।

गांव की गूंज के सुहाने सफर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गांव की गूंज एक शुरुआत है, एक कोशिश है आप सबको आपके गांव से जोड़ने की। साथियों मत भूलिए, गांव हमारी नींव है, गांव हमारी जड़ है, गांव हमारी और हमारे देश की पहचान है। आज हमारे गांव बिना अपने संस्कृति को, अपनी सादगी को खोए विकास की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं।

0: अरे गुड्डू, तुम्हारी आवाज में इतनी खुशी झलक रही है, क्या बात है।
1: सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं गांव की गूंज के इस प्रोग्राम को। हमारी चाची ने सुना इसे और फोन आया था। जानती हैं, जब उन्हें पता चला कि घर में शौचालय बन गया तो वह 7 साल बाद मुन्नी और छोटू के साथ घर वापस आ रही हैं। ये बड़ी ही खुशी की बात है
2: भाई। इस खुशी के मौके पर एक गाना तो बनता है किरण जी।

तो दोस्तों आज गांव की गूंज का सफर बस यहीं तक। आशा करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम गांव की गूंज बेहद पसंद आया होगा। तो आज के सफर में बस इतना ही। अब दीजिए अनुमति अंकुर, शेफाली, किरण और गुड्डू को, फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: नमस्कार आदाब, हाय, हेलो, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। घड़ी में वक्त हो चला है अब आपकी कार्यक्रम स्वास्थ्य संगनी का, जिसको हम लेकर आते हैं सेहत सही लाभ कई बैनर के तले। मैं हूं आपकी आरजे उन्नति और ये खूबसूरत सी पहल है रेडियो ज्ञान असली और स्मार्ट एनजीओ की, जिसके अंदर बात होती है स्वास्थ्य की, आपकी अपनी सेहत की। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है मेरी को होस्ट सृष्टि, और आज हम बात करने जा रहे हैं उस चीज की, उस आवाज की जो हमें बचपन से कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रही है, हमारा वो साइलेंट हीरो जो हमारे लिए चुपचाप बहुत सारे काम करता है, जिसके बारे में आप अक्सर बातें नहीं करते हैं। आपको भी याद होगा कि आपके शरीर में एक छोटा सा अंग है जो आपके लिए दिन रात मेहनत करता है, सारे विटामिंस को, आयरन को अपने अंदर अब्सॉर्ब करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, आपके अंदर आने वाली हर एक चीज को, आप जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, उसको कहीं ना कहीं फिल्टर कर रहा है, आपके बॉडी को डिटॉक्स कर रहा है। आजकल की दुनिया में जहां हम डिटॉक्स करने के लिए बाहर से ड्रिंक मंगा रहे हैं, वही काम हमारा लिवर बहुत सालों से हमारे लिए करता आ रहा है। हमारा लिवर और किडनी डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए जाना जाता है, चीजों को अब्सॉर्ब करता है, यानी कि न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करता है। लेकिन आजकल की इस बदलती दुनिया में जो सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है वो हमारा यही साइलेंट हीरो, यानी कि हमारा लिवर है। तो भाई सृष्टि, तुम बताओ आज नाश्ते में क्या किया था?
1: मैम बस वही सब्जी रोटी।
0: सब्जी रोटी, ओके। भाई आजकल नाश्ते में जब भी हम नाश्ता करने बैठते हैं तो मुझे लगता है लोग सब्जी रोटी, ब्रेड पकौड़े, समोसे, न जाने क्या क्या ऐसा खाते हैं जो कि नहीं खाना चाहिए, जैसा मुझे लगता है,
1: क्योंकि वो नुकसान करता है हमारे लीवर को भी।
0: अब ये बात तो हर दूसरा बंदा जानता है कि कहीं ना कहीं ये चीजें हमें नुकसान करती हैं, इसके बाद भी हम खाते हैं क्योंकि हमारी जुबान पर जो चटक टेस्ट लगता है ना, वो टेस्ट हमें बहुत ज्यादा पसंद होता है ना
1: मैम? वो तो सबको ही होता है।
0: बिल्कुल, एक्चुअल में जो भी चीजें हम खाते हैं उसका असर आपके लिवर पे भी पड़ता है, और आजकल क्योंकि लिवर से जुड़ी कई सारी बीमारियां जो है वो मार्केट में आ चुकी हैं, मार्केट के साथ साथ आपके शरीर के अंदर भी आ चुकी है। यूं तो अब हर कोई आपको जागरूक कर रहा है कि खाने के पीछे लेबल्स को पढ़ना शुरू कर दो, क्या क्या है उसके अंदर, क्या डाला गया है, क्या नहीं डाला गया है, शुगर मत खाओ, हनी मत खाओ, पाम ऑयल मत लो, न जाने कितनी ही बातें हम सुनते हैं। बट इसके अलावा एक और चीज है जो आपको हो सकती है, भाई लिवर इन्फेक्शन का नाम आपने कभी सुना है कि लिवर में इन्फेक्शन हो गया हो, या किसी डॉक्टर ने आपसे कहा है कि ये सारी चीजें आप मत खाना क्योंकि आपको लिवर में इन्फेक्शन हो गया, और आप सोचते हो लिवर इन्फेक्शन ये क्या चीज होती है, क्या ये बहुत कॉमन है? क्योंकि फैटी लिवर के बारे में तो हम अक्सर सुनते हैं और कहते हैं कि फैटी लिवर आजकल बहुत आम हो चुका है, हर दूसरे इंसान को फैटी लिवर होता है और वो ये बात जानता भी नहीं है, बट क्या लिवर इन्फेक्शन के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो भाई आज आप जानेंगे लिवर इन्फेक्शन के बारे में। जैसे एक वक्त में मैं भी गुजर चुकी हूं जिसका असर ये है कि अब मेरा स्टमक हाइपर सेंसिटिव हो चुका है। ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, बताते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के उस पार आते हैं, तब तक के लिए बने रहिए, आप सुन रहे हैं 89.6 FM रेडियो ज्ञान असली, आपकी अपनी गोंडा शहर की धड़कन, मेरे यानी उन्नति के साथ।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9281 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: स्वागत एक बार वापस से आप सबका आपके अपने वाले शो स्वास्थ्य संगिनी में। सेहत सही लाभ कई बैनर के तले लेकर आए इस खूबसूरत सी श्रृंखला को, जो की रेडियो ज्ञान असली और स्मार्ट एनजीओ की खूबसूरत पहल है। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। और आज इस दोपहर में हम बात कर रहे हैं आपके लिवर की। दोस्तों, हम सब अपनी फिटनेस पर आजकल बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, कैलोरी काउंट कर रहे हैं, प्रोटीन और फाइबर को बढ़ा रहे हैं, बाहर की चीजों को खाना बंद कर रहे हैं। ऐसा आजकल लोग करते जा रहे हैं, इवन इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। जहां पुराने जमाने में लोगों को शराब पीने की आदत बहुत ज्यादा लग चुकी थी, बहुत ज्यादा शराब, सिगरेट और गुटखा, पान, मसाला खाने की आदत हुआ करती थी, वहीं पर आने वाली जनरेशन अपने प्रोटीन और फाइबर पर ध्यान देने लगी है। वहीं पर आने वाली जनरेशन ने अल्कोहल कंज्यूम करना धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, जो कि सही भी है। बट कई बार लिवर इन्फेक्शन होने की एक खास वजह होती है। बस ये नहीं होता कि लिवर इन्फेक्शन इसलिए हो गया क्योंकि आपने शराब पी थी, लिवर इन्फेक्शन इसलिए नहीं हो गया क्योंकि आपने ऐसा कुछ खा लिया था। कई बार लिवर इन्फेक्शन बच्चों के अंदर भी देखने को मिलता है। जैसे कि मैं जब मात्र 1.5 या 2 साल की थी, तब मेरे साथ ऐसा हुआ था। मुझे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही थी, बहुत ज्यादा लूज मोशंस हो रहे थे, डायरिया हो रहा था और मेरी मम्मी ये बात समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। अचानक से पेट में बहुत तेज दर्द का उठना और अचानक से पेट में दर्द एकदम खत्म हो जाना। जैसे ही पेट में दर्द होने लगता था, वैसे ही मैं रोने लग जाती थी और जैसे ही वो दर्द शांत होता था, अगले 2 मिनट के अंदर मैं हंसने लग जाती थी। बहुत सारे लोगों को लगा कि ये नाटक कर रही है, बट मेरी मम्मी जो कि अवेयर थी इस मामले में, और उन्होंने कहा कि भाई ये कोई नाटक तो नहीं हो सकता, कोई 2 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा नाटक नहीं कर सकता है। और इसीलिए उन्होंने सीधा मुझे डॉक्टर के पास दिखाया। डॉक्टर के पास वो लेकर गए, डॉक्टर ने कुछ मामूली टेस्ट लिखे और टेस्ट के बाद ये बात सामने आई कि मुझे लिवर इन्फेक्शन हो गया, यानी कि मेरे लिवर में कुछ तो है जो इन्फेक्शन का कारण बन चुका है। आप ये भी नहीं कह सकते कि 1.5 साल के बच्चे ने शराब पी होगी जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन है, उसकी वजह से ही इसको कुछ बीमारी हुई है। अब ये किसी भी कारण से हो सकता है, अगर आपने दूषित पानी पिया है या फिर दूषित खाना खाया है या कोई बैक्टीरिया जो आपके हाथ के जरिए आपके मुंह के अंदर चला गया है, जिससे एक बच्चे की जो इम्यूनिटी होती है वो एक वयस्क की तरह बिल्कुल भी नहीं होती, वो कमजोर होती है। और इसीलिए बच्चों का बीमार पड़ जाना बहुत आम माना जाता है, इवन उनका ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उस दौरान जब डॉक्टर ने कहा कि भाई इसको लिवर इन्फेक्शन हो गया है, तो मम्मी को लगा कि भाई ये बहुत बड़ी बीमारी है, बट उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं, लिवर इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है और इसकी कुछ दवाइयां होती हैं जो आपको चलानी पड़ेंगी। लगातार कुछ दिनों तक, 1 महीने के आसपास दवा खाने के बाद मुझे कुछ आराम मिला। धीरे धीरे मेरी दवाई बंद कर दी गई और मैं बड़ी होने लगी। बड़े होते होते होते होते मुझे समझ में आया कि जब मैं लगभग 8 से 9 साल की हुई थी, तो हर रात जब भी मैं कुछ खाती उसके बाद मुझे वॉमिटिंग हो रही थी। अब ये बात तब की है जब मैं थी बरेली में, यानी कि अपने नानी के पास, और उस दौरान रात में अक्सर हफ्ते में 2 से 3 बार मुझे वॉमिट हो जाती। मैं सो रही होती थी और अचानक से इस आवाज के साथ उठती कि नानी मुझे उल्टी हो रही है, और नानी कहती भाई रोज रात में उल्टी क्यों आ रही है। इस बात से वो भी बहुत परेशान थी। एक रोज ऐसा ही हुआ कि जब मैं गई थी किसी पार्टी में और बाहर से खाने के लिए मेरा मना कर दिया गया था कि रोज रात वॉमिटिंग हो रही थी, तो नानी को लगा हो सकता है मुझे बाहर का खाना नुकसान कर रहा हो। अब भाई घर में पार्टी चल रही थी, पार्टी में बने थे छोले भटूरे, वो तो घर के बने थे ना, और इसी जिद पर मैं अड़ चुकी थी कि घर का बना तो मैं खा ही सकती हूँ, बाहर का नहीं खा सकती। मैंने वो छोले भटूरे खाए और वापस से नानी के मना करने के बाद भी उनको खा पी कर आराम से डकार लेकर घर पहुंच चुके थे। लेकिन जैसे ही घर के अंदर पहुंचे और रात में सोए, रात के 12 बजे फिर से मुझे वॉमिट हुई, और इस बार नानी ने सोच लिया कि भैया बहुत हो गया, बाहर का खाना तो नहीं खाया था, घर का खाना खाया था, इसके बाद भी अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये कोई सीरियस प्रॉब्लम है। इस चीज को उन्होंने ध्यान में रखा और अगले ही दिन मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने अगेन मेरा चेकअप कराया और उन्होंने बताया कि जो लिवर इन्फेक्शन मुझे बचपन में हुआ था वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, वो अभी भी मेरे बॉडी के अंदर है और मेरे लिवर को कहीं ना कहीं इन्फेक्ट कर रहा है। इसकी वजह से मुझे बार बार ये प्रॉब्लम नजर आ रही है, मुझे बार बार डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, और जब भी मैं कोई चीज बाहर की खाती हूँ या कोई बहुत ज्यादा ऑयली बहुत ज्यादा मसालेदार चीजें मैं खाती हूँ तो मेरी बॉडी उसको कंज्यूम नहीं कर पाती, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती और मुझे वॉमिटिंग हो जाती है। अब इसके लिए उन्होंने किया क्या, इसके लिए मेरे बाहर का खाना हर एक चीज बंद हो गया। अब बाहर के खाने में वो हर एक चीज आती है जिसको जो आपको बेहद पसंद हो, जो एक बच्चे को बेहद पसंद हो, जिसमें पैकेट वाले फूड आइटम्स आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, बाहर से बनी छोले भटूरे, समोसे, टिक्की, पानी बताशे, ये हर एक चीज मेरी बंद कर दी गई। 12 साल के होने के बाद जब इनको धीरे धीरे स्टार्ट किया गया तो इसी डर के साथ स्टार्ट किया कहीं ये फिर से दोबारा से ना हो जाए, बट ये दोबारा नहीं आया। लिवर इन्फेक्शन तो मेरा पूरी तरह से ठीक हो चुका था, लेकिन इसके अलावा जो मुझे तोहफे में मिला वो ये था कि मेरा स्टमक यानी कि मेरा पेट काफ़ी ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो गया। इतना ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो चुका था कि एक आम चीज़ जो दूसरा इंसान खा सकता है मुझे वो डाइजेस्ट नहीं होता, जिसमें ब्रेड बन ये वो सारी चीजें हैं जो मुझे अब डाइजेस्ट नहीं होती। कई लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि जब मैं किसी से कहती हूँ मुझे ब्रेड डाइजेस्ट नहीं होता, एंड वो कहते हैं ब्रेड किसको डाइजेस्ट नहीं होता, जब मैं उनसे ये कहती हूँ कि मैं दूध नहीं पी सकती क्योंकि मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ। हाइपर सेंसिटिव होने की वजह से बचपन से ही एक तो मुझे दूध पीने के बाद डायरिया हो जाता था, जब भी मैं खाली पेट दूध पीती थी मुझे या तो लूज मोशंस हो जाते थे या तो मुझे डायरिया हो जाता था। बट ये बात मुझे बचपन में समझ में कभी नहीं आई कि दूध पीने की वजह से ऐसा क्यों होता है। अब मैं नानी से ये भी नहीं कह सकती थी कि नहीं दूध पीने की वजह से प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि ना मुझे खुद पता था ना उन्हें ये बात बताई मैंने कभी, तो वो ये बात कभी जान भी नहीं पाई कि दूध मुझे नुकसान कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी होती गई 2020 तक आते आते मैंने समझा कि दूध मुझे सिर्फ डायरिया या लूज मोशन नहीं, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, हैवीनेस भी दे रहा है। और बाद में समझ में आया कि मेरी जो गट लाइनिंग है जो लैक्टोज को डाइजेस्ट कर रही है वो धीरे धीरे खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से अब मैं लैक्टोज इनटॉलरेंट हो चुकी हूँ। तो दूध की बनी कोई भी चीज जिसमें लैक्टोज आता है वो मेरे पेट को इरिटेट कर देता है, जिसकी वजह से मुझे कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, लूज मोशन, पेट में दर्द, पेट में मरोड़ या फिर ब्लोटिंग ज्यादा हो जाती है, और वो ब्लोटिंग 15 दिन से पहले जाती भी नहीं है। अब मैंने भाई दूध तो खाना छोड़ दिया, दूध पीना छोड़ दिया, लेकिन दूध के अलावा भी दूध से बनी चीजें मुझे धीरे धीरे नुकसान कर रही थी, जिसमें आइसक्रीम आ रही थी, जिसमें आपकी बनी मिठाइयाँ आ रही थी, जिसमें बर्फी आ रही थी, ये सारी चीजें भी मुझे बहुत ज्यादा नुकसान कर रही थी। धीरे धीरे इन्हें भी बंद किया और अपनी पसंदीदा चीज जिसे मैं खीर कहती हूँ और उसको भी खाना मेरा बंद हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया कि अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो आप आम इंसानों की तरह आम दूध का इस्तेमाल नहीं कर सकती, आप आम दूध का सेवन नहीं कर सकती। ये बात दूसरों को समझाने में बड़ी मुश्किल होती है। जो इंसान जो बचपन से हम दूध पीकर बड़े होते हैं, जब हम किसी को ये समझाते हैं कि नहीं दूध मुझे नुकसान कर रहा है, तो वो कहते हैं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने अगर दूध नहीं पिया तो तुम क्या करती हो, तुम क्या पीती हो। और इसका पीछे का जब उनको कारण समझाया जाए कि मेरा स्टमक काफी हाइपर सेंसिटिव हो चुका है चीजों को लेकर के, प्रॉब्लम्स होती हैं मुझे उन चीज़ों को डाइजेस्ट करने में जो शायद आप कर सकते हो, जिसमें बहुत ज़्यादा सोडियम आता है, बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें आती हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड आता है, तली हुई पूड़ियाँ आती हैं, इन सारी चीजों को मैं एक अच्छी खासी मात्रा में कंज्यूम नहीं कर सकती, और इसकी वजह यह है कि एक वक्त में मुझे लिवर इन्फेक्शन रहा था और वो 4-5 सालों तक लगातार चला था, जिसकी वजह से आज मैं इस हाइपर सेंसिटिविटी से गुजर रही हूँ। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। ये तो मेरी एक छोटी सी कहानी थी, मेरी एक छोटी सी बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, बट हो सकता है आप भी उनमें से एक हो जिनको लिवर इन्फेक्शन की कभी प्रॉब्लम रही हो, या आप भी लैक्टोज इंटॉलरेंट हो सकते हैं। तो ये लिवर इन्फेक्शन है क्या और ये किस किस टाइप का होता है, किसको हो सकता है, किसको नहीं हो सकता है, आज इसको जानेंगे आपके अपने स्वास्थ्य संगनी में। फिलहाल लेते एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक और इसके बाद मिलते हैं आपसे, बात करते हैं लिवर इन्फेक्शन के बारे में, और तब तक के लिए सुनते रहिए। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो ज्ञानासली 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित।
5: हां जी, एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो कैन असली 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। सेहत सही लाभ कई बैनर के तले लेकर आए इस खूबसूरत सी श्रृंखला को जो कि स्मार्ट एनजीओ रेडियो कैन असली की प्यारी सी पहल है, जिसमें बात करते हैं आपकी सेहत की। और आज हम बात कर रहे हैं लीवर संक्रमण यानी कि लीवर इन्फेक्शन की। लीवर इन्फेक्शन से स्वास्थ्य को बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है और अगर आप इसे समय रहते ना पता लगाएं और इसकी दवा ना कराएं तो ये आगे जाकर बहुत ज्यादा गंभीर हो सकता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकता है। ये संक्रमण अक्सर चुपचाप बढ़ते हैं जिसके लक्षण देखने से पहले ही लीवर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच जाता है। तो आइए बात कर लेते हैं कि किस किस तरह के लीवर इन्फेक्शन हो सकते हैं। एक तो आता है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा आम है, जिसे हम कहते हैं वायरल हेपेटाइटिस ABCDE। वायरल हेपेटाइटिस ए क्या होता है, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। आमतौर पर जब आप दूषित भोजन या पानी का सेवन करते हैं और अगर वो दूषित भोजन आपके लिवर तक पहुंचता है और उससे होने वाली जो बीमारी होती है उसे हेपेटाइटिस ए कहा जाता है, जो कि एक तीव्र संक्रमण है जो आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाता है। ये पीलिया, थकान और पेट दर्द जैसे लक्षण को पैदा करता है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की। ये वायरस लीवर में छुपकर बैठा रहता है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं ये लीवर के लिए साइलेंट किलर या फिर छुपा रुस्तम है। ये सालों तक कोई भी लक्षण आपको नहीं दिखाता। अगर आपको हेपेटाइटिस बी हो भी जाता है तो भी सालों तक आपको कोई लक्षण नहीं मिलता, पर धीरे धीरे लीवर को अंदर से कमजोर करता रहता है। आपका लीवर अंदर से धीरे धीरे कमजोर होता रहेगा और बाहर से कोई भी लक्षण नहीं आएगा। ये होता है हेपेटाइटिस बी। इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि भाई इसकी वैक्सीन उपलब्ध है, यानी कि भारत में आ जाकर इसकी वैक्सीन लगवा सकते हैं, इसके टेस्ट करवा सकते हैं। हेपेटाइटिस बी अक्सर लीवर साइरोसिस या लीवर कैंसर का भी कारण बन जाता है। वहीं पर बात कर लेते हैं अब हेपेटाइटिस सी की। ये बिल्कुल बी जैसा ही खतरनाक है, पर इसकी कोई भी वैक्सीन हमारे पास इस वक्त उपलब्ध नहीं है। ये बहुत लंबे समय तक लीवर में रहकर लीवर को डैमेज करता है। हालांकि मेडिकल साइंस में इसको ठीक करने के लिए बहुत अच्छी दवाइयां इस वक्त मौजूद हैं। अगर बात करें हम हेपेटाइटिस डी की, ये अकेले कुछ नहीं कर सकता। ये उन्हीं लोगों को होता है अक्सर जिनको हेपेटाइटिस बी हो चुका हो। ये बी के साथ मिलकर लिवर को अक्सर डबल नुकसान पहुंचाता है। और अब बात करते हैं हेपेटाइटिस ई की। हेपेटाइटिस ई जो कि बिल्कुल ए की तरह ही होता है, ये गंदे पानी से फैलता है। ये आम लोगों के लिए बहुत ज्यादा नॉर्मल है, बट प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और मेनली जो हमें हेपेटाइटिस देखने को मिलता है वो हेपेटाइटिस ए ही होता है, क्योंकि हेपेटाइटिस ए अक्सर बच्चों के अंदर ज्यादातर नजर आता है, क्योंकि बच्चे किसी भी तरह का पानी पी लेते हैं, गंदा पानी पी लेते हैं, कुछ भी उठाकर खा लेते हैं और उनके मुंह के जरिए ये वायरस उनके लिवर तक पहुंचता है और उनके लिवर को कमजोर करता है, जिसे हम आम भाषा में जॉइंटिस कहते हैं, यानी कि पीलिया का हो जाना, पेट में दर्द होता है, फिर बच्चों को पानी भी हजम नहीं होता। तो अगर आपको कभी भी हेपेटाइटिस हुआ है तो हेपेटाइटिस के ये कुछ मुख्य कारण हैं ABCDE, जिनको आपने समझा। और अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे इन्फेक्शन की जो जीवाणिक होते हैं। जीवाणु संक्रमण से लीवर में फोड़े पड़ जाते हैं जो लीवर के अंदर मवाद उत्पन्न करते हैं। ये फोड़े शरीर के अन्य भागों में संक्रमण का कारण हो सकते हैं जो लीवर तक फैल जाते हैं। इसी के साथ बात करते हैं परजीवी संक्रमण की। परजीवी संक्रमण भी लीवर को प्रभावित कर सकता है, जिसमें अमेबिक लीवर फोड़े जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। यह संक्रमण परजीवी से होता है। यह आमतौर पर दूषित भोजन और पानी के माध्यम से ही फैलता है। उसके जो मुख्य लक्षण होते हैं वो होता है बुखार, ठंड लगना, पेट में दर्द होना या बहुत ज्यादा उल्टियां होना या आपका लीवर का बढ़ जाना। इसके अलावा एक और आता है जो शायद आपको ना पता हो, उसमें आता है फंगल संक्रमण। लीवर में फंगल संक्रमण बहुत कम होता है लेकिन हो सकता है, खासकर कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले, यानी कि जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर होती है, उन्हें लिवर में फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। हम आपको बता दें ये वो सारे इन्फेक्शन हैं जो आपके लिवर को प्रभावित कर सकते हैं, जिसके कारण आपका लिवर इन्फेक्टेड हो सकता है। और अब बात करें इनके लक्षणों की, यानी कि लिवर इन्फेक्शन अगर किसी को होता है तो क्या संकेत मिलते हैं, क्या लक्षण नजर आते हैं। सबसे सामान्य लक्षण ये होता है कि आपको बुखार आता है। अक्सर संक्रमण का पहला संकेत बुखार ही होता है। हम आपको बता दें अगर आपकी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले आपको बुखार आता है। बुखार का मतलब ये नहीं है कि आप बीमार हैं। बुखार का मतलब ये है कि आपके शरीर के अंदर कोई तो वायरस, बैक्टीरिया या फंगस एंटर कर चुका है, जिससे आपका शरीर लड़ने की कोशिश कर रहा है और उसको हराने के लिए ही टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है, जिससे वायरस हार जाए या मर जाए। अगर बुखार लगातार बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन अभी तक आपकी बॉडी से नहीं गया है और अब आपको उपचार की जरूरत है। इसके बाद आता है थकान। लगातार थकान और ऊर्जा की कमी सामान्य लक्षण है। अगर आपको लगातार थकान रहती है, आपको लगातार ऊर्जा में कमी यानी कि एनर्जी आपकी कम लगती है, आप सोकर उठते हो इसके बाद भी आपको थकान है, आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो इसके बाद भी आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपका शरीर किसी न किसी संक्रमण से अंदर ही अंदर लड़ रहा है और आपका खाना ठीक तरह से नहीं पच रहा, आपकी बॉडी को सही न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। इसके अलावा आपके लिवर से जुड़े हुए कुछ स्पेशल लक्षण यानी कि कुछ ऐसे सिम्टम्स जो तब नजर आते हैं जब लिवर में ही कोई दिक्कत होती है। पहला आता है पीलिया। हम आपको बता दें बिलिरुबिन के निर्माण के कारण त्वचा और आंखों का रंग पीला पड़ जाता है। ये एक ऐसा पदार्थ है जो आमतौर पर लिवर द्वारा बनाया जाता है। ये लिवर की खराबी को प्रमुख संकेत देता है, यानी कि अगर आपके लिवर में कोई दिक्कत है तो साफ तौर पर ये बात क्लियर करता है, यानी कि पीलिया, आपके स्किन का पीला पड़ना, आपकी आंखों का पीला पड़ना, आपके नेल्स का पीला पड़ना, ये साफ तौर पर बताता है कि आपका लिवर बिलिरुबिन नाम का ये पदार्थ बहुत ज्यादा बना रहा है और इसके कारण ही आपका शरीर पीला पड़ रहा है और ये लिवर खराब होने का प्रमुख संकेत माना जाता है। इसके अलावा आता है गहरे रंग का पेशाब। अगर आप लगातार दिन में काफी ज्यादा पानी पी रहे हो और इसके बाद भी आपके टॉयलेट का जो कलर है वो बहुत डार्क येलो होता है या फिर किसी भी तरह का डार्क होता है, तो हम आपको बता दें ये इसका कारण है कि आपके लिवर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है या आपके नसों के अंदर जहां पर आपका ब्लड घूम रहा है उसके अंदर बिलिरुबिन का स्तर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आपके पेशाब का रंग गहरा हो चुका है, हल्के रंग का मल। हम आपको बता दें पित्त के अपर्याप्त प्रसंस्करण के परिणाम स्वरूप मल का रंग हल्का हो जाता है। त्वचा में बहुत ज्यादा खुजली होना। त्वचा में पित्त लवाड़ों के जमा होने से खुजली हो सकती है। अगर आपके स्किन पर बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है बिना किसी वजह के, अगर आपने कोई भी चीज नहीं खाई है जिससे आपको एलर्जी हो या कोई और कारण नहीं है और आपको लगातार इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, तो ये एक बड़ा संकेत होता है कि इसमें कहीं ना कहीं आपके लिवर में कोई ना कोई दिक्कत है। इसके अलावा बात कर लेते हैं मतली या उल्टी का होना। अगर आपको बार बार वॉमिटिंग आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब मुझे लिवर इन्फेक्शन हुआ था तो मुझे रात में अक्सर वॉमिटिंग हुआ करती थी। मैं कोई भी चीज़ खाती थी तो रात में जैसे ही सो जाती थी, सोने के बाद मुझे वॉमिट हो जाती थी। बट आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको रात में सोते वक्त ही हो, आपको किसी भी वक्त उल्टी हो सकती है, लेकिन अगर आपको बार बार उल्टी हो रही है तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है और डॉक्टर के पास जाना है। बात करते हैं पेट में दर्द का होना। पेट में दर्द होना, बेचैनी होना या आपके ऊपरी दाहिनी हिस्से में दर्द होना, आपके लिवर के पास सूजन होना या जलन का बहुत ज़्यादा होना, ये वो सारे आम कारण हैं जो ये दर्शाते हैं कि आपके पाचन तंत्र में कुछ गड़बड़ी है या आपके लिवर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। भूख की कमी। संक्रमण से भूख कम हो जाती है जिससे वजन बहुत तेजी से घटना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा जिनको लिवर इन्फेक्शन होता है अक्सर वो खाना नहीं खाते, या फिर जिन्हें जॉइंटिस होता है यानी कि हेपेटाइटिस होता है, पीलिया होती है, उनका खाना पीना भी कम हो जाता है, उन्हें अक्सर भूख नहीं लगती है। लोग उनसे पूछते हैं कि भैया खाना क्यों नहीं खा रहे, तो उनका सीधा जवाब होता है कि यार भूख नहीं लगी है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आप पहले खाना खाते थे, अच्छी खासी मात्रा में खाते थे, बट अचानक से आपके खाना खाने की मात्रा कम हो गई है और आप पहले की तरह खाना नहीं खा पा रहे हो और आपका वजन भी बहुत तेजी से घट रहा है, तो ये बताता है कि आपके लिवर में या आपके पाचन तंत्र में कुछ तो गड़बड़ है। इसके अलावा आता है पेट में सूजन का होना, क्योंकि भाई लिवर आपके पेट के अंदर होता है, तो लिवर में सूजन आती है प्लस आपको इन्फ्लामेशन आपकी अपने पेट के ऊपर नजर आती है। इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन, सूजन अक्सर आपको अपने पेट के ऊपर अगर नजर आ रही है और वो टाइट टाइट है, यानी कि दबाने पर वो बहुत टाइट महसूस हो रही है, इन्फ्लामेशन है, सूजन है, पेट में दर्द भी है, दाहिनी ओर ज्यादा दर्द है, भूख का कम लगना है, तो भाई ये वो सारी कमी है जो ये बताते हैं कि आपके लिवर में दिक्कत है। पेट में सूजन के साथ साथ अगर आपको लिवर इन्फेक्शन है तो आपके पैरों में भी सूजन आ सकता है। अगर आपके पैरों में सूजन सामान्य से ज्यादा है, अगर आपने कोई काम नहीं किया है और लगातार हफ्तों दो हफ्तों से आपके पैरों में सूजन है, तो ये बताता है कि आपके लिवर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। इसी के साथ अगर आपको कहीं चोट लग गई है और आपका बहुत ज्यादा खून बह रहा है, तो ये भी एक लक्षण होता है जो ये बताता है कि आपका लिवर अंदर से खराब हो रहा है। खराब लिवर रक्त के थक्के के लिए आवश्यक प्रोटीन का कम उत्पादन करता है, जिसके कारण आपका खून बहुत ज्यादा बहता है। एक सामान सी चोट लगने पर भी, अगर आपका हाथ चाकू से भी कट गया है या फिर हल्की सी पिन की निप भी उसके अंदर चली गई है, तो बहुत ज्यादा खून बहता है, एक आम से ज्यादा खून बहता है। और अगर ये बहुत ज्यादा खून बह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि लिवर वो प्रोटीन नहीं बना पा रहा है जिससे खून ना रुक सके। तो भाई ये वो सारे कारण हैं जो ये दर्शाते हैं, वो सारे लक्षण हैं जो ये बताते हैं कि आपके लिवर में कुछ प्रॉब्लम है और इन सबको नजरअंदाज नहीं करना होता है। अगर आप इनमें से किसी एक भी लक्षण को देखते हैं, पीलिया, भूख का कम लगना, पेट में दर्द होना, सूजन आना, पैर में सूजन आना, पेट के अंदर इन्फ्लामेशन, तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर की सलाह जरूर लें, डॉक्टर के पास जरूर जाएं और अपना टेस्ट जरूर से कराएं। फिलहाल आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं, तब तक के लिए आप सुनते रहिए आपका अपना रेडियो 89.6 FM, यही गोंडा शहर की धड़कन। Stay tuned.
1: What is this? अरे कितना क्रेडिट देगा उस लड़की को? अरे वो दूसरे शहर से, I'm telling, अगर पैसा नहीं आया ना, you will have to pay.
6: But papa, she's a nice girl.
7: भैया देखो, दिल्ली वाली दीदी आ गई।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
1: हां जी, तो एक बार वापस से स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं आप सबका हम आपके अपने वाले स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। सेहत सही लाभ के बैनर के तले लेकर आए इस खूबसूरत सी पहल को जो कि स्मार्ट एनजीओ और रेडियो ज्ञानस्थली की है, आप सुन रहे हैं मेरे साथ यानी कि अपनी आरजे नदी के साथ आपके अपने एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर। आज हम बात कर रहे हैं आपके इस सेहत के कार्यक्रम में लिवर इन्फेक्शन के बारे में, जिससे मैं भी काफी ज्यादा परेशान थी और हो सकता है आपके अंदर भी इनमें से कुछ लक्षण नजर आते हों। फिलहाल बात कर लेते हैं कि लिवर इन्फेक्शन किन को ज्यादा हो सकता है। तो अगर हम बात करें आपके जीवन शैली की, तो वो लोग जो बहुत ज्यादा शराब का उपयोग करते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, लगातार शराब के सेवन से लीवर में सूजन का होना, फैटी लीवर का होना, सिरोसिस का होना पड़ सकता है। शराब आपके सेहत के लिए हानिकारक होती है, ये बात आपको हर दूसरा इंसान बताता है, इवन आपके घर वाले भी आपको ये बात बताते हैं, और मुझे पता है आपको भी ये बात पता होती है कि शराब हमारे सेहत के लिए, हमारे लीवर के लिए कितना ज्यादा खराब है। इसके बाद भी कई लोग शराब का सेवन करते हैं और कहते हैं कि नहीं, मुझे तो कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। जी, हो सकता है कि आपको सामने से वो लक्षण नजर ना आ रहे हो, जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि कुछ लक्षण फैटी लीवर के, कुछ लक्षण हेपेटाइटिस के आपको नजर नहीं आते हैं, बट अंदर से आपका लीवर धीरे धीरे खराब हो रहा होता है। आजकल लोगों के अंदर फैटी लीवर बहुत ज्यादा पाया जाता है। फैटी लीवर का कारण सिर्फ ये नहीं होता कि किसी ने बहुत ज्यादा फैट ले लिया, अगर आप अल्कोहल भी ले रहे हैं तो भी आपको फैटी लीवर हो जाता है। इसके अलावा आती है नशीली दवाइयों का बहुत ज्यादा प्रयोग करना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बिना नशीली दवाएं खाए बिना नींद नहीं आती, अगर आप उनमें से एक हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि नशीली दवाएं आपके लीवर को कमजोर करती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा नशीली दवाएं लेते हैं, नींद की दवा बहुत ज्यादा लेते हैं बिना कारण, बस ये सोचकर कि नींद की दवा ले लेने से मेरी नींद अच्छी हो जाएगी, और आप अपनी नींद को सिर्फ नींद की दवाइयों के ऊपर ही छोड़ रखे हैं, तो भैया आपको भी लिवर की इश्यूज हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा नशीली दवाइयां लेते हैं तो ये सब मिलकर आपके लिवर को परेशान करते हैं, नुकसान करते हैं, इरिटेट करते हैं, जिसके कारण आपको हेपेटाइटिस बी सी डी होने का खतरा बढ़ जाता है। हम आपको बता दें, अगर आप ड्रग्स लेते हैं यानी कि अगर आप दूषित सुइयों का भी इस्तेमाल करते हैं तो भी आपके लिवर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका खान पान अच्छा नहीं होता। भाई, लिवर हमारा मांगता है हमसे अच्छा खाना, हमारा बॉडी हमसे कहता है कि कुछ ऐसा खाओ जो हमें परेशान ना करे, जिससे हम सुरक्षित रहें। बट आजकल जिस तरह से हम खाना खाते हैं वो मेनली होते हैं तले भुने, बाहर की चीजें हम बहुत ज्यादा खाते हैं, जिसमें पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, सोडा, ये वो सारी चीजें हैं जो हमारे लिवर को बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, और सिर्फ लिवर को नहीं कि हमारी आंतों को, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो इसका असर आपकी किडनी पर भी पड़ता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा तेल मसालेदार चीजें खाते हैं, बहुत ज्यादा तीखी मिर्च वाली चीजें खाते हैं, तो आपका लिवर इससे डिस्टर्ब होता है, बहुत ज्यादा इरिटेट होता है, आपके पाचन तंत्र पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। इसीलिए डॉक्टर आपको अक्सर सलाह देते हैं कि सब्जियों का सेवन थोड़ा ज्यादा करें, कार्ब्स का सेवन थोड़ा कम करें, और कोशिश करें कि सब्जियां जब आप पका रहे हो तो उनमें 1-2 लीटर तेल ना डालें, 1-2 चम्मच डालें, क्योंकि आपकी कैलोरीज भी मैटर करती हैं। इसके अलावा अगर आप उनमें से हैं जो नॉन अल्कोहलिक हैं लेकिन फैटी लीवर आपके अंदर नजर आ रहा है, तो ये भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपके लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप अपने आसपास सफाई नहीं रखते हैं, क्योंकि जब आप अपने आसपास सफाई नहीं रखते हैं तो आपका जो खाना होता है वो दूषित होता है, आपका जो पानी होता है वो दूषित होता है और इससे हेपेटाइटिस ए और ई का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि आपको याद होगा हमने आपसे कहा था कि भाई हेपेटाइटिस ए और ई दूषित खाने और पानी से ही होता है, तो अगर आप अपने आसपास अच्छी सफाई नहीं रखते हैं और आपको लगता है सिर्फ घर साफ कर देने भर से ही ये सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, घर का कूड़ा उठा करके अक्सर आप अपने बगल वाले प्लॉट जो खाली पड़े होते हैं उनमें फेंक आते हैं और सोचते हैं इससे तो सब कुछ ठीक हो गया ना, मैंने तो अपना घर साफ कर लिया अब मुझे कोई बीमारी नहीं होगी। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो चीजें वहां आपने फेंकी हैं वो सड़ती हैं और उन सड़े हुई चीजों पर मक्खियां मच्छर बैठते हैं और वही आपके खाने पर भी आके बैठते हैं, जिसकी वजह से भी आपको हेपेटाइटिस ए और ई हो सकता है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपको परेशान करती हैं, जिसके कारण आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको हेपेटाइटिस ना हो, आप चाहते हैं कि आपका लिवर अच्छा रहे, तो आपको क्या खाना चाहिए। तो आप फल का सेवन करें, सब्जियों का सेवन ज्यादा करें, पानी ज्यादा पिया करें, यानी कि वाटर इनटेक अपना कंप्लीट रखें, 10 से 12 ग्लास पानी पीना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। आप गर्मियों के मौसम में इतना पानी पी सकते हैं, सुबह उठकर सबसे पहले गर्म पानी पीने की कोशिश करें, खाना खाने से पहले गर्म पानी पीने की कोशिश करें, खाने के साथ पानी ना पिएं और मार्केट में आ रहे डिटॉक्स ड्रिंक्स के भरोसे ना बैठें। ये ना सोचें कि आप डिटॉक्स ड्रिंक पी लेंगे और आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, क्योंकि डिटॉक्स करने का काम आपके बॉडी में लिवर और किडनी का ही होता है। बहुत ज्यादा दवाइयों का सेवन ना करें, जिसमें नशीली दवाइयों का सेवन बहुत लिमिटेड मात्रा में करें, जब आपको डॉक्टर सलाह दें तभी करें। और ये वो सारी चीजें हैं जो आप करके और थोड़ी सी एक्सरसाइज करके अपनी डाइट को बदल के, अपनी आदतों को बदल के आप अपना लीवर और अपना स्वास्थ्य दोनों अच्छा बनाए रख सकते हैं। तो भाई ये तो था आज का आपका कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी का, जिसमें हमने बात की लिवर इन्फेक्शन को, हमने समझा लिवर इन्फेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और इसे कैसे ठीक कराना है। अगर आप अपने लिवर का टेस्ट कराना चाहते हैं तो आप LFT करा सकते हैं, या फिर जो टेस्ट आपको डॉक्टर लिख कर देते हैं, जो सलाह वो देते हैं, आप उससे उसका टेस्ट करा सकते हैं। फिलहाल

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
2: अरे भाई वाह, आज तो हमारे गांव में कुछ अलग ही माहौल है। सुबह सुबह इतनी भीड़ और ये लाउड स्पीकर से आवाज, सभी लोग ध्यान दें। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर है। अरे ये HPV क्या होता है भाई और इतनी भीड़ क्यों लगी है आखिर?
3: RJ कांछा, आज बड़ा अच्छा दिन है गांव के लिए भी और हमारी बेटियों के लिए भी। आज जो कैंप लगा है ना, ये कोई साधारण टीकाकरण है नहीं, ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी बीमारी से बचाने वाला टीका है। पर HPV के बारे में विस्तार से बताने से पहले एक कहानी बताना चाहता हूँ।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: गांव का नाम बड़की टोला है। सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन सावित्री देवी का दिन कब का शुरू हो चुका था। पहले चूल्हा जलाना, फिर पानी भरना, बच्चों को तैयार करना और उसके बाद खेत का काम। सावित्री देवी एक 12 साल की बेटी थी। गुड़िया पढ़ने में तेज लेकिन थोड़ी शर्मीली। सावित्री चाहती थी कि उसकी बेटी कुछ बन जाए, उसकी जिंदगी उससे बेहतर हो। एक दिन गांव में आशा दीदी आईं और उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर लगने वाला है। उन्होंने समझाया कि ये टीका लड़कियों को आगे चलकर एक खतरनाक बीमारी सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। सावित्री देवी पहले तो थोड़ा हिचकिचाई। उन्होंने अपने पति रामलाल से बात की।
2: अच्छा।
3: रामलाल पहले तो बोले, अरे हमारी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, उसे क्या जरूरत है टीके की। लेकिन आशा दीदी ने धैर्य से समझाया, भैया यही सही समय है, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं पहले काम करता है, अगर अभी लगवा दिया तो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचाव हो जाएगा। रामलाल कुछ सोच में पड़ गए
2: जी।
3: उन्होंने आसपास के लोगों से भी पूछा लेकिन किसी के पास पूरी जानकारी नहीं थी, बस अफवाहें थी। तभी एक दिन उन्होंने रेडियो पर एक कार्यक्रम सुना जिसमें मेरे जैसे ही एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समझा रहे थे कि ये टीका सुरक्षित है और क्यों जरूरी है। उस दिन के बाद रामलाल का नजरिया बदल गया। उन्होंने कहा, अगर एक छोटा सा टीका मेरी बेटी को जिंदगी भर की बीमारी से बचा सकता है तो हम क्यों पीछे रहें। अगले ही दिन सावित्री और रामलाल अपनी बेटी गुड़िया को लेकर कैंप पहुंचे। वहां कई और लड़कियां भी आई थी।
2: अच्छा।
3: शुरुआत में गुड़िया थोड़ी डरी हुई थी लेकिन जब उसने देखा कि बाकी लड़कियां भी हिम्मत से टीका लगवा रही हैं, तो उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा मैं भी लगवाऊंगी। टीका लगने के बाद बस थोड़ा सा दर्द हुआ लेकिन 2 दिन में सब ठीक हो गया। धीरे धीरे गांव में लोग भी प्रेरित हुए। सावित्री देवी अब खुद दूसरी महिलाओं को समझाने लगी। रामलाल पंचायत में भी इस विषय पर बात करने लगे।
2: अच्छा भैया, तो गांव में इस पर क्या प्रभाव पड़ा?
3: बताता हूँ
2: जी।
3: कुछ महीने बाद बड़की टोला में एक बदलाव साफ दिखने लगा। ज्यादा लड़कियां टीका लगवा रही थी, लोग अफवाहों के बीच सही जानकारी पर भरोसा करने लगे थे। और सबसे बड़ी बात, अब बेटियों की सेहत को लेकर गंभीरता बढ़ गई थी।
2: क्या बात है।
3: सावित्री देवी अक्सर कहती थी, पहले हम सोचते थे कि ये सब शहरों की बात है लेकिन अब समझ में आया कि हमारी बेटियों का भविष्य हमारे ही हाथ में है। ये कहानी सिर्फ सावित्री और गुड़िया की नहीं है, ये हर उस परिवार की कहानी हो सकती है जो सही समय पर सही फैसला ले।
2: अच्छा भैया, ये HPV नाम तो बड़ा भारी लग रहा है, जरा खुलकर विस्तार से और आसान शब्दों में समझाइए।
3: देखिए आरजे कांचा
2: जी,
3: HPV का मतलब है ह्यूमन पेप्लोमा वायरस। नाम बड़ा लग रहा है पर बात आसान है। ये एक ऐसा वायरस है जो अगर शरीर में आ जाए और समय रहते रोका ना जाए तो महिलाओं में आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय के मुंह का कैंसर पैदा कर सकता है।
2: मतलब ये सीधी सीधी जानलेवा बीमारी तक ले जा सकता है।
3: हाँ आरजे आकांक्षा, और सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हैं आप?
2: क्या सेहतिया जी, अब तो आप थोड़ा हमको डरा रहे हैं।
3: डरने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। कह रहा हूँ इस बीमारी की सबसे बड़ी चालाकी ये है कि शुरू शुरू में इसका कोई लक्षण ही नहीं होता है। ना कोई दर्द, ना बुखार, ना कोई ऐसी परेशानी जिससे लगे कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है।
2: मतलब इंसान को पता ही नहीं चलता है।
3: बिल्कुल आरजे कांचा, और यही वजह है कि जब तक लोगों को इसका पता चलता है तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है, बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है।
2: अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक बात है। तो फिर इससे बचने का कोई तरीका है या नहीं?
3: हाँ यही तो खबर है।
2: ओहो क्या,
3: यही अच्छी खबर है आरजे कांचा
2: जी।
3: जहाँ एक तरफ इसका इलाज मुश्किल हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ इसका बचाव बहुत आसान है।
2: सच में?
3: जी हाँ।
2: पर कैसे?
3: HPV वैक्सीन से एक छोटा सा टीका जो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचा सकता है।
2: जरा इसे और आसान करके समझाइए ना, ताकि हमारे गांव के लोग भी अच्छे से समझ सकें।
3: ठीक है, एक उदाहरण से समझिए। जब हम खेत में फसल लगाते हैं तो क्या करते हैं?
2: चारों तरफ बाड़ लगाते हैं ताकि जानवर अंदर ना आए।
3: बिल्कुल, ताकि फसल सुरक्षित रहे। और ठीक वैसे ही ये वैक्सीन हमारे शरीर के लिए सुरक्षा की बाड़ की तरह काम करता है। ये वायरस को अंदर आकर नुकसान करने से रोकता है।
2: ओ मतलब ये बीमारी को शुरू होने से पहले ही रोक देती है।
3: हाँ यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई इलाज नहीं है कि बीमारी हो जाने के बाद काम आए, और ये तो पहले से ही सुरक्षा देता है ताकि बीमारी हो ही ना पाए।
2: अच्छा भैया, आप ये बताइए, तो फिर ये जो टीका है उसे किसे लगवाना चाहिए? क्या कोई खास उम्र है इसकी?
3: हाँ, इसका सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब इसे सही उम्र में लगवाया जाए। आमतौर पर 9 से 14 साल की लड़कियों को ये टीका लगवाना सबसे अच्छा माना जाता है।
2: और अगर कोई इससे बड़ी उम्र की हो
3: तो भी चिंता की बात नहीं है। ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेकर बाद में भी ये टीका लगवाया जा सकता है, लेकिन जितना जल्दी लग जाए उतना बेहतर है।
2: अच्छा सेहतिया जी, एक बात मेरे मन में आ रही है, ये तो लड़कियों का टीका हो गया, तो इसमें पुरुषों की भी कोई भूमिका है क्या?
3: यही तो सबसे अहम बात है। महिलाओं की सेहत सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं होती है, इसमें पूरे परिवार की, खासकर पुरुषों की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है।
2: जरा विस्तार से बताइए।
3: देखिए आरजे कांचा
2: जी,
3: एक पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी को समय पर सही जानकारी दे और उसका टीकाकरण करवाए। एक भाई का कर्तव्य है कि वो अपनी बहन को समझाए, उसे डर या अफवाहों से दूर रखे। और एक पति का फर्ज है कि वो अपनी पत्नी की सेहत का ख्याल रखे, उसे हर जरूरी सुविधा और सहयोग दे।
2: सही कहा आपने।
3: अगर घर का पुरुष ही पीछे हट जाएगा या ध्यान नहीं देगा तो आधी लड़ाई वहीं हार जाएंगे। इसलिए पुरुषों की भागीदारी बहुत जरूरी है।
2: मतलब ये सिर्फ महिला स्वास्थ्य का मामला नहीं है?
3: बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये पूरे परिवार का मामला है। जब एक महिला स्वस्थ रहती है तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, और जब परिवार स्वस्थ होता है तभी गांव मजबूत बनता है।
2: लेकिन सेहतिया जी, एक बात है कि गांव में तो तरह तरह की बातें चलती रहती हैं। कोई कहता है कि ये टीका लगवाने से लड़कियों में कमजोरी आ जाती है, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आगे चलकर माँ बनने में दिक्कत होती है।
3: देखिए आर्जकांक्षा
2: जी,
3: यही सबसे बड़ी समस्या है, अधूरी और गलत जानकारी। ये सब जो बातें हैं
2: जी
3: आपने सुनी है न, ये सच नहीं है बल्कि अफवाहें हैं।
2: मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है?
3: नहीं, मैं आपको एक एक करके साफ साफ कर देता हूँ
2: जी।
3: पहली बात, लोग कहते हैं कि टीका लगवाने से कमजोरी आ जाती है, जबकि सच्चाई ये है कि टीका लगने के बाद हल्का सा बुखार या हाथ में दर्द हो सकता है, जो एक दो दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है।
2: अच्छा, तो जो लोग कहते हैं कि इससे आगे चलकर बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है, उसका क्या?
3: वो भी पूरी तरह गलत है। इस वैक्सीन का माँ बनने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक वायरस से बचाने के लिए होता है और कुछ भी नहीं है।
2: और एक बात, जो लोग अक्सर कहते हैं भैया कि अगर लड़की बिल्कुल ठीक है तो टीका लगवाने की क्या जरूरत है?
3: देखिए, यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है।
2: अच्छा,
3: ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं बल्कि बीमारी होने से पहले काम करता है। अगर लड़की अभी स्वस्थ है तो वही सबसे सही समय है टीका लगवाने का। जैसे हम बारिश आने से पहले छाता रखते हैं, वैसे ही पहले से सुरक्षा देता है। जरा सोचिए आरजे कांचा
2: जी,
3: अगर एक छोटा सा टीका आपकी बेटी को एक बड़ी और जानलेवा बीमारी से बचा सकता है तो क्या इंतजार करना चाहिए?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। जब बचाव इतना आसान है तो देर क्यों करें? सेहतिया जी, एक बात बताइए, क्या हमारे गांव में भी लोग इसे लगवा रहे हैं?
3: हाँ, धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं और आगे भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोग डर और अफवाहों के कारण पीछे हट जाते हैं। यही वजह है कि आज भी जैसे कैंप बहुत जरूरी है, ताकि सही जानकारी हर घर तक पहुँचे। जहाँ जानकारी नहीं पहुँचता है वहाँ ऐसे ही कुछ रानी जैसा केस हो जाता है। उस इलाके के पास एक और गांव था, छोटा पुरवा। यहाँ रहती थी कमला देवी और उनकी बेटी रानी। रानी भी गुड़िया की ही उम्र की थी, हसमुख, चंचल और पढ़ाई में अच्छी। जब गांव में HPV का टीकाकरण की बात आई तो आशा दीदी यहाँ भी आई और लोगों को समझाने लगी। उन्होंने कमला देवी से भी कहा, बहन अपनी बेटी को टीका लगवा लेना। लेकिन कमला देवी के घर का माहौल थोड़ा अलग था। उनके पति महेंद्र इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया, ये सब नई नई बातें हैं, हमारे जमाने में कौन सा टीका लगता था और हम तो ठीक हैं। कमला देवी भी डर गई। गांव में कुछ लोगों ने और बातें फैलाई, इससे लड़की कमजोर हो जाएगी, आगे चलकर बच्चा नहीं होगा। इन अफवाहों के बीच सच की आवाज दब गई। रानी ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, अम्मा मेरी सहेली गुड़िया टीका लगवाने गई थी, मैं क्यों नहीं जा सकती? कमला देवी के पास जवाब नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा तुम्हारे बाबूजी मना कर रहे हैं। समय बीतता गया, बात वहीं रह गई। सालों बाद जब रानी बड़ी हुई, शादी हुई और एक दिन उसे बार बार कमजोरी और असहजता महसूस होने लगी। शुरू में सबने इसे सम्मान समझा, लेकिन जब हालात बिगड़ने लगी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद जो बताया उसने पूरे परिवार को हिला दिया। ये सर्वाइकल कैंसर का मामला है और अब ये काफी आगे बढ़ चुका है। कमला देवी के पैर के तले जमीन खिसक गई। उन्हें वही दिन याद आया जब आशा दीदी ने समझाया था, जब रानी ने खुद पूछा था। महेंद्र भी चुप हो गए, उनकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। उन्होंने धीमे से कहा, अगर उस दिन हमने टीका लगवा दिया होता तो शायद आज का ये दिन नहीं देखना पड़ता। इलाज शुरू हुआ लेकिन अब रास्ता मुश्किल था। बार बार अस्पताल के चक्कर बढ़ता, खर्च, परिवार की चिंता और दर्द। रानी की बीमारी ने सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं पूरे परिवार को झकझोर दिया। आज कमला देवी हर घर जाकर एक ही बात कहती है, अफवाहों पर मत जाओ, हमने अपनी गलती से बहुत बड़ा नुकसान देखा है, तुम ऐसा मत करना, उनकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन आवाज में एक विनती है, अपनी बेटी को बचा लो समय रहते।
2: ये तो बहुत दुखद हुआ। तो आज जो लोग भैया हमें सुन रहे हैं, उन्हें आखिर क्या करना चाहिए?
3: उन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए, आज ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं, आशा दीदी से बात करें और अपनी बेटियों का नाम टीकाकरण के लिए दर्ज कराएं। और सबसे जरूरी बात, जो सही जानकारी आपने आज सुनी है उसे दूसरों तक पहुंचाएं, अफवाहों को नहीं सच्चाई को फैलाएं।
2: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि HPV क्या है, ये कैसे एक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और एक छोटा सा टीका कैसे हमें इस बड़ी सी परेशानी से बचा सकता है।
3: और याद रखिए, महिलाओं की सेहत सिर्फ उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है और सही समय पर लिया गया एक छोटा सा फैसला जिंदगी भर का बड़ा बदलाव ला सकता है।
2: छोटी सी तैयारी बड़ी बीमारी से बचाओ, बेटी का टीका, परिवार का भविष्य सुरक्षित बनाओ। तो चलिए, जाने से पहले लेंगे सेहत की शपथ।
1: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई

0: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
1: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
0: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
1: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
0: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
6: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
6: आज ही कॉल करें 92 60 981 976 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
6: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण पूरा करने के लिए दिसंबर माह को टीकाकरण उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अपने 5 साल तक के नन्हे मुन्ने बच्चों को 12 खतरनाक बीमारियों से बचाइए और उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए। याद रखिए, 5 साल 7 बार 12 बीमारियों पर वार। यदि छूटे न टीका एक भी बार, टीका लगवाने के लिए आपके आस पड़ोस में ANM बहन जी द्वारा हर बुधवार व शनिवार में आयोजित किए जा रहे टीकाकरण सत्रों में जाए व अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जनहित में जारी।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
2: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
1: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में आज हमारे बहुत ही गेस्ट की लाइन लगी हुई है। तो आज सबसे पहला गेस्ट, तो अभी हम आपको नहीं बताएंगे कि कौन है, लेकिन आपको बता दें कि आज भी अंशिका नहीं है क्योंकि उनकी उसकी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, इस वजह से वो नहीं आई है। एंड हम सभी मिलकर दुआ करेंगे कि वो जल्दी से ठीक होकर के आपके अपने शो सुन सहेली में फिर से वापस आ जाएं। लेकिन आपकी आज समता आ गई है और आज का शो आप सभी को पता है कि लजीज मंडे, और लजीज मंडे के दिन हम लेकर के आते हैं बहुत सारी डिशेस को लेकर के। कुछ होती हैं अतरंगी सी, कुछ होती हैं अचपटी सी, और कुछ होती हैं लजीज सी, और कुछ होती हैं बहुत ही लजीज सी। तो भाई इन तीन चार रेसिपीज में से आपको कौन सी पसंद है मुझे चैट बॉक्स में आके ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि हम अतरंगी भी बताते हैं, कुछ मतरंगी भी बताते हैं, और कुछ अटपटा सा भी बताते हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा लजीज सा भी ले करके आते हैं। तो आज मंडे की शुरुआत करेंगे, लेकिन मैं बताऊंगी कल संडे था, और यार संडे के दिन ना इतनी ज़्यादा काम हो जाता है, मतलब लगता है कि संडे एक मिलता है हम लोग को आराम करने के लिए, लेकिन वो आराम कहीं का कहीं धरा का धरा रह जाता है और हम लोगों को हो जाती है इतनी ज़्यादा थकावट कि कोई और एक्स्ट्रा काम हो ही नहीं पाता है। पर यहाँ पर आने के लिए मंडे के लिए हम लोग करते हैं पहले से बहुत प्री प्लान कि आज हम ये बताएंगे, आज हम वो बताएंगे। तो आज मैं भी आपको कुछ बताऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं आपको कि आज हमारे साथ हमारी मास्टर शेफ आ चुकी हैं ऑन एयर, आपको आज रेसिपीज का बहुत बढ़िया वाला एक बहुत ही बढ़िया सा मिश्रण बताने वाली हैं। एंड हमारे साथ आज कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो कि आपको बताएंगे कुछ मीठा खट्टा, और मैं तो हूँ ही, मैं तो आपको पता ही है कि मैं तो बताती हूँ। तो उस सबसे पहले एक गाना आज सुना देते हैं और उसके बाद आएंगे आज की पोयम को लेकर के, लेकिन उसके पहले ये सुन लेते हैं इस प्यारे से गीत को, और उसके बाद सीधे मास्टर शेफ के साथ एंट्री करेंगे। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को, लेकिन इस प्यारे से मौसम को हम क्या कहेंगे भाई, कभी सर्दी हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, कभी क्या हो रहा है। और आज ही मैंने एक रील भी पोस्ट करी थी कि कभी गर्मी हो रही है, कभी बारिश हो रही है, तो आपको इन सब से अपने आप को बचाव करना है। इन सब का सीधा जो प्रभाव पड़ रहा है वो आपके पेट पे पड़ रहा है। कभी गर्मी लग रही है तो कुछ नहीं खाना हो रहा है, सिर्फ पानी पी रहे हैं। कभी थोड़ा मौसम ठीक हो जा रहा है तो हम भरपेट खा ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपके डाइजेशन में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जा रही है। तो उन सब का भी सलूशन देंगे आज खाना खजाना में, लेकिन इस प्यारे से मौसम को मानसून में आप सभी को इस प्यारे से मौसम में एक साथ एक ही फ्रेम में बोलेंगे शुभ दोपहरिया। शुभ दोपहरिया आप सभी को, क्योंकि बज चुका है 1:37 और प्रॉपर आज जो है वो दोपहर हो चुकी है, हम आ चुके हैं। चलिए ज़्यादा बात न करते हुए आइए इस गाने को सुनते हैं और फिर हम लौटेंगे एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको यहीं सुनते रहना 89.6 FM पे आपकी अपनी आरजे संता के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: खराब डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैम्ब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका। वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और खाना खजाने के सफर में। बिल्कुल देर न लगाते हुए आइए सीधे चलते हैं, हमारे स्टूडियो में आ गई हैं आपकी मास्टर शेफ जो कि हैं हमारी रंजना मैम। तो भाई आते ही अभी हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी और मैंने पूछा नहीं, क्योंकि एक सरप्राइज होता है कि वो आज क्या खिलाने वाली हैं। तो आइए हम उन्हीं से जानते हैं। और मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे शो सुन सहेली में।
5: सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और समता, हम तो चाहते हैं कि कोई अच्छी अच्छी चीज़ें रहें जो सब लोग सरल ढंग से बना लें और खा लें।
1: बिल्कुल,
5: क्योंकि किचन बहुत अच्छी चीज़ है लेडीज़ के लिए, कि कम समय में अगर अच्छी चीज़ बन रही है और बच्चे और हस्बैंड परिवार खुशी खुशी खा रहा है और पौष्टिक भी है, तो समझो बहुत ही अच्छी बात
1: है। बहुत ही अच्छी बात है मैम।
5: तो मैं आज जो हूँ, आलू का झोल, जिसे बिना मसाले का रहता नहीं, टमाटर का झोल,
1: आलू का झोल
5: और पूरी।
1: मैम हम आपकी बात को एक मिनट रोकेंगे।
5: बिल्कुल,
1: अभी आपने सुना होगा कि जब मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हम लोग अतरंगी भी बताते हैं यहाँ पर तो ये एग्जैक्टली अतरंगी ही है। मतलब ये आलू का झोल अभी तक मतलब आपने कभी नहीं सुना होगा। हम लोग इसीलिए मैम का नाम जो है वो मास्टर शेफ यूं ही नहीं किसी को मिल जाता है, मतलब मास्टर शेफ का मतलब है। और अभी अभी अभी जस्ट एक घंटे पहले का इंसिडेंट बता रहे हैं, सैंडविचेस कोई लेके आया था, तो मैं थी किचन में मैम के साथ में। अभी हमारे यहाँ होम साइंस डिपार्टमेंट में किचन भी है, तो मैंने कहा मैम इसको ऐसे नहीं ऐसे करते, तो मैम ने कहा कि नहीं। मैम ने क्या किया कि जो सैंडविच मेकर होता है उसमें उसको गर्म किया और उसके बाद उसको अच्छे से एक एक डाल करके फिर उसको हम लोगों ने सेका। तो देखो ये होता है एक टेक्निक, मतलब मैं क्या कर रही थी, मैं तवा ढूंढ रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, बट मैम आई, उन्होंने तुरंत सैंडविच मेकर में उस सैंडविच को एक सीधा एक ऊपर से डाला और फटाफट वो पक करके तैयार हो गई। तो ये होता है कि जब बड़े बुजुर्गों का केवल हाथ भी लग जाए ना तो वो चीज़ यूं बन जाती है। तो आइए मैम अब आपकी बात को पूरा करते हैं।
5: हाँ, तो ये जो है आलू का झोल, तुम आगरा गई होगी
1: जी,
5: ये तो वहाँ पे बहुत मिलता
1: जी
5: है, और उसके संग कचौड़ी मिलती है
1: जी मैम,
5: तो इसका स्वाद ही अलग रहता है
1: जी।
5: और अब तो जाड़े शुरू हुए हैं, नया आलू भी आ रहा है और टमाटर बहुत आ रहा है
1: जी,
5: और सस्ता भी है टमाटर।
1: हाँ जी,
5: पहले तो 20 था, फिर 30 हुआ, अब 40 हो गया, लेकिन फिर भी और शहरों के हिसाब से गोंडा में अभी भी बहुत सस्ता है। तो आप जो है आधा किलो आलू ले लीजिए
1: जी।
5: आलू आप जो है चाहे लाल वाला लीजिए या जो भी आपके घर आता, बहुत मीठा नहीं होना चाहिए, क्वार्टरेट आलू या कौन सा कहते हैं वो वाला आलू आधा किलो लीजिए, मतलब उसमें 3-4 चढ़ेंगे। आप उसको उबाल लीजिए और छील लीजिए, छीलने के बाद आप उसे काटेंगे, हाथ से फोड़ दीजिए, फोड़ करके उसको अलग रख दीजिए। अब आप क्या करेंगे, आधा किलो जैसे आपने लगभग आलू लिया है, तो टमाटर भी आप 400 ग्राम से कम मत लीजिएगा, वो भी लगभग आधा किलो के बराबर ही हो जाता है 400 ग्राम। उसको आप खूब लाल लाल टमाटर पके पके लीजिए, धो लीजिए और टुकड़ों में काट के रख लीजिए। अब आप क्या करेंगे कि कढ़ाई, मतलब जो भी कुकर है उसमें आप थोड़ा सा देसी घी डालिए, अब आपकी मर्जी, 1 चम्मच डालिए या 2 चाय का चम्मच, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। आप 1 चम्मच चाय का देसी घी डालिए, उसमें एक चौथाई चाय का चम्मच।

0: चम्मच आप जीरा डाल दीजिए। जीरा डालने के बाद आप एक चम्मच टीस्पून भर करके हल्दी डाल दीजिए, थोड़ा पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद आप टमाटर डाल दीजिए। टमाटर डाल करके आप उसमें थोड़ा नमक अंदाज से डाल दीजिए और उसको सीटी दे दीजिए कि वो पकना रहे, पकता रहे। जब टमाटर थोड़ा एक सीटी आ जाए उसको थोड़ा छोड़ दो, फिर अपने आप खुलने दो या जल्दी हो अपने आप खोल दो तुम
1: जी।
0: फिर कलछुल से उस टमाटर को खूब चला के एक सार कर लो। एक सार का मतलब है कि वो जो है गल जाए।
1: अच्छा।
0: अगर गला रहता है तो वो आलूओं में बहुत अच्छा लगता है।
1: तो सबको मतलब कूकर में चला लेना है।
0: हाँ,
1: अच्छा, अच्छा।
0: आलू हम पहले ही उबाल चुके हैं, छील चुके हैं, मैश कर चुके हैं। अब बचा हुआ टमाटर उसको भी हम कुकर में ही डाल देंगे। अब उसमें हमने क्या करा, वो आलू भी डाल दिया जो हमने मैश किया था।
1: हाँ।
0: और उसमें हम एक पैकेट मैगी मसाला डाल देंगे।
1: ओ वाव।
0: और नमक अंदाज से हम डाल ही चुके हैं। अगर लग रहा थोड़ा आपको कम है थोड़ा और डाल लीजिए। हरा मिर्च डालेंगी, हरा धनिया डाल देंगी, अदरक। हरा मिर्च अपने स्वाद के अनुसार एक दो, जो भी अगर आप क्या कम खाते हो कम डालिए, एक ही डालिए, ज़्यादा खाते हो तीन चार डालिए।
1: हाँ।
0: अदरक का एक इंच का टुकड़ा आप काट के डाल दीजिएगा। हरी धनिया आपकी इच्छा पे है। इस समय अगर सस्ता है तो आप ज़्यादा डालिए, महंगा हो तो एक दो डालिए, क्योंकि अगर हरी धनिया नहीं पड़ती तो सुंदर नहीं।
1: हाँ, मैम ये और खाने का और, मन भी नहीं
0: हाँ,
1: करता है,
0: मतलब अच्छी नहीं लगती सब्जी, तो वो आप डाल लीजिए। उसमें फिर आप पिसा हुआ लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार एक चम्मच दो चम्मच डाल लीजिए। उसके बाद आप थोड़ा सा कसूरी मेथी उसमें डाल दीजिए और उसमें ये गाढ़ा रहेगा, बहुत पतला नहीं रहेगा कि पानी अलग आलू अलग।
1: हाँ।
0: पर एक सार रहेगा। आप इसमें अंदाज से पानी डालेंगी और इसको एक उबाल दे करके अलग रख लीजिए। अब आप तैयारी आपको एक दिन पहले करनी पड़ेगी। हाँ। अगर शाम को बना रही हैं तो सुबह करनी है, सुबह बना रही हैं तो शाम रात में तैयारी करनी है। तब आप एक कटोरी दाल ले लीजिए।
1: अच्छा।
0: उड़द की दाल। हाँ, और आप बिना छिलके वाली लीजिए। तो इसको ज़्यादा धोना भी नहीं पड़ता, साफ सुथरी रहती।
1: हाँ।
0: तो आप इसको भिगो दीजिए और मिक्सी में चला करके पीस लीजिए। थोड़ा पानी डाल के पीस लीजिएगा, बहुत पानी ऐसा नहीं, लेकिन हाँ बीज की दाल आप पी सकती हैं। उसके बाद आप सब समेट करके आप थाली में निकाल लीजिए। थाली में निकालने के बाद आप एक कटोरी सूजी ले लीजिए, रवा जिसे हम सूजी कहते हैं, रवा ले लीजिए। और एक कटोरी या आधा कटोरी आप मैदा ले लीजिए और आधा ही कटोरी आप आटा ले लीजिए। अगर चाहिए तो आप एक कटोरी आटा ले मैदा ले लीजिए, आधा कटोरी आटा ले लीजिए। नहीं है डालना मैदा तो आप मत डालिए।
1: हाँ।
0: कोई उसकी बात। अब उसी आटे में जो है नमक आप डाल देंगी, जीरा डाल देंगी, हींग डाल देंगी और उसको आप अच्छे से सानेंगी। थोड़ा सा सरसों का तेल उसमें डाल दीजिएगा, थोड़ा मोयन ऐसा हो जाएगा। हाँ। और कोशिश यही करिए कि दाल जितनी हो उसी से आटा मेरा सन जाए।
1: अच्छा, जितनी मतलब दाल हो उसी के अकॉर्डिंग आटा
0: लीजिए। और अगर आपको लग रहा है थोड़ा कम है तो पानी डाल के भी बना लेंगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें भी आप नमक डाल देंगी। उसके बाद ढक करके आप आधा घंटे के लिए इसको रख देंगी।
1: जी।
0: अब इसमें चाहती हैं तो बहुत गरम मसाला कोई खाना है तो जीरा है और काली मिर्च आप इसको दरर करके मोटा मोटा पीस करके इसमें डाल दीजिए। तो खड़ी खड़ी दाल जो काली मिर्च होती है बहुत अच्छी लगती है झोल के संग खाने में, तो आप ये भी कर सकती हैं। अब आप इसको सान लीजिएगा, नमक रख के इसमें डाल करके एक ढक के रख दीजिए कम से कम 10 मिनट। तब तक आपने झोल बना लिया। झोल बनाने के बाद आप कढ़ाई चढ़ा लीजिए, अपनी इच्छा अनुसार चाहे रिफाइंड तेल डालिए, चाहे डालडा डालिए, चाहे सरसों का, जो आपकी इच्छा हो जो भी खाते हैं उसको आप पहले गरम करिए, फिर मीडियम आंच कर लीजिए। गरम तो आप तेल कर लीजिए पर उसके बाद आप मीडियम आंच कर लीजिए, क्योंकि हमारी जो पूड़ी है वो भी तो अच्छे से फूलनी चाहिए, और पकने के लिए समय चाहिए। उसके बाद हम एक एक पूड़ी डाल डाल तलते जाएंगे। झोल निकाल लीजिए, अपने जो भी खा रहा है उसको आप झोल और पूड़ी ये दीजिए, और झोल में भी आप हरी धनिया खूब अच्छे से डाल लीजिएगा। अगर हरी धनिया ज़्यादा है तो आप पूड़ी के आटे में भी जो डंठल है वो काट के डाल सकती हैं।
1: हाँ।
0: और कसूरी मेथी रहेगी ही, एकदम अलग लजीज। ये आपका बहुत कम समय में बनने वाला बहुत अच्छा नाश्ता है। मेरे घर तो जब अचानक कोई मेहमान आने वाला होता है तो हम इसको जरूर बनाते झोल पूड़ी को,
1: बहुत
0: तो इससे बहुत अच्छा रहता है कि तुरंत बन जाता है,
1: टाइम भी नहीं लगेगा और अच्छी खासी मतलब एक अगर भूख लगी हो तो उसके लिए एक प्रॉपर नाश्ता,
0: और बच्चे भी बहुत अच्छे से क्योंकि आलू का झोल रहता मसाला रहता नहीं है तो बच्चे भी बहुत अच्छे से खा लेते हैं।
1: बिल्कुल, तो इतना टेस्टी है ना, और मैं बताऊं कि मुझे तो बहुत भूख भी लगी हुई है इस समय, और ये इतना प्यारा इतना मतलब मैं टेस्टी वाला जैसे अगर बहुत तेज वाली भूख में मिल जाए तो फिर क्या ही कहने।
0: बहुत अच्छा,
1: तो मैम ने अभी एक रेसिपी बता दी है, तो आप चाहते हैं एक गाना सुना देते हैं लिसनर्स को मैम, और फिर आते हैं, फिर हम एक रेसिपी मैम से सुनेंगे। तब तक के लिए आप सुनते रहे हमारा खाना खजाना स्पेशल सुन सहेली, बस हम यू गए यू आए, स्टे ट्यून्ड।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में हमारे हैं मास्टर शेफ। और आइए जानते हैं उनसे दूसरी और बहुत ही बढ़िया वाली फिर से कुछ अतरंगी सी रेसिपी। जी मैम।
3: भाई देखो, हमने झोल और पूरी तो खिलाई दी जी। पर बच्चे चावल बहुत पसंद करते हैं।
2: हाँ,
3: तो आज मैं आप लोग को रसम और चावल भी बता रहे हैं।
2: रसम? हाँ। तो मैम ये रसम, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो रसम है ये नाम क्यों पड़ा?
3: ये केरला में बहुत खाई है, पॉपुलर डिश है
2: जी।
3: वहाँ पर लेमन राइस बहुत खाया जाता है और रसम बहुत खाया जाता है।
2: ओके।
3: जैसे हम लोग इधर दाल बहुत खाते हैं, दाल चावल के संग, वो लोग रसम और चावल खाते हैं।
2: आप लोगों ने लिसनर्स एक बात गौर करी, अभी इसके पहले मैम ने कहा कि आगरा की फेमस डिश को मैं बताने जा रही हूँ, फिर अभी केरला की फेमस डिश को बता रही हूँ। इससे एक अंदाजा लगता है कि हमारी मैम ना बहुत घूमी है और उनको हर एक जगह की नॉलेज इतनी ज्यादा है, खास करके खाने पीने में।
3: सच में समता
2: जी,
3: वो लोग केले के पत्ते पे ही सब्जियां और चावल डाल देते हैं और उसमें गड्ढा करके उसमें रसम ढेर सारा डाल देते हैं। अरे इतना बढ़िया लगता है गरम गरम खाने में कि हम तुमसे क्या बताएं।
2: मैम वहाँ की कुछ एक कढ़ी भी बहुत फेमस है ना, इडली सांभर।
3: हाँ,
2: आई थिंक इडली सांभर वहाँ का फेमस
3: तो है। वो तो अलग चीज है, लेकिन रसम जो है उनके यहाँ जब कोई त्योहार व्यवहार होता है तब उसमें बुला करके रसम चावल खिलाते हैं वो लोग, और केले के पत्ते पे ही खिलाते हैं। और सब जेंट्स लुंगी पहने रहते हैं और लेडीज जो है सुंदर साड़ी पहने रहती हैं और बालों में गजरा लगाए रहती हैं, खूब अच्छे से तैयार रहती हैं।
2: बहुत ही बढ़िया।
3: तो चलिए,
2: तो आज हम जानेंगे रसम, यानी केरला की बहुत फेमस डिश को जानेंगे।
3: ये अब जैसे हमने टमाटर का झोल बताया था, एक तरह से ये भी उसी तरह का है
2: जी।
3: पर ये थोड़ा अलग ढंग से बनता है।
2: ओके।
3: तो चलिए सामान आप पहले लिख लीजिए कि टमाटर आप आधा किलो खूब अच्छे पके पके, आप जो हाइब्रिड टमाटर मत लीजिएगा जिसमें गूदा हो, जिसमें रस हो, देसी टमाटर आप लीजिएगा। अब आप जो है आधा किलो टमाटर लीजिए खूब अच्छे लाल लाल
2: जी।
3: और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए,
2: कट कर लेना है।
3: और थोड़ी हरी धनिया लीजिए, दो तीन डाल जैसे जैसी भी हो, और उसको भी खूब महीन महीन काट करके आप टमाटर में डाल दीजिएगा। आप चाहे टमाटर और हरी धनिया को आप मैशर से फोड़िए, चाहे हाथ से फोड़िए।
2: हाँ।
3: और खूब अच्छे से टमाटर और हरी धनियों को आप मिक्सी नहीं चलाएंगे, हमको इसको पीसना नहीं है।
2: अच्छा, मतलब जैसे कहते हैं, कहते हैं दरदरा।
3: हाँ,
2: दरदरा पीसना।
3: आपने हाथ से बिल्कुल मैश करके बराबर
2: हाथ से दरदरा कर लेना।
3: उसके बाद आप इसको छन्नी से छानेंगी और दबा दबा के पूरा आप पल्प ले लेंगी, जो भी गूदा है।
2: हाँ, हाँ।
3: तो इसके संग संग धनिये का भी रस आ जाएगा।
2: हाँ।
3: और बीजा और टमाटर जब छनेगा तो फिक जाएगा।
2: हाँ।
3: क्योंकि खाते समय मुंह में बीजा टमाटर नहीं आएगा,
2: नहीं आएगा।
3: अब आप क्या करेंगी कि इसको दो प्याले पानी या ढाई प्याला पानी डाल करके आप इसको पल्प को उबलने चढ़ा देंगी, खोलने देंगी। तब तक आप क्या करेंगी कि आप जो कूटने वाला रहता है उसमें आप एक चम्मच काली मिर्च ले लेंगी
2: जी,
3: एक चम्मच जीरा ले लेंगी, तीन चार हरी मिर्च ले लेंगी और लहसुन 10-12 कलियां ले लेंगी
2: जी,
3: एक इंच का टुकड़ा अदरक का ले लेंगी, हींग ले लेंगी
2: जी,
3: और इन सबको आप उससे कूटेंगी।
2: अच्छा,
3: मतलब देखो इसमें भी मिक्सी नहीं चलनी।
2: हाँ।
3: है, हम उसको चाहे लोढ़े से, चाहे वो जो घर में कुटनी नहीं आती है,
2: आती है।
3: हाँ, हाँ, हाँ, उस कुटनी से कूट लेंगे
2: जी।
3: हरी मिर्च जरूर 4-5 या 1-2 जरूर डालिएगा, इससे जो होता है वो अलग ढंग का फ्लेवर
2: आता है,
3: आता है
2: उसका। हाँ, हरा मिर्च का। हाँ, तो बहुत आता है।
3: खूब अच्छे से कूट लीजिएगा। कूटने के बाद जब आप देखिए कि खूब अच्छे से खोल रसम, तब उसमें नमक भी डाल दीजिएगा आप।
2: हाँ।
3: और ये जो मसाला आपने तैयार किया है ये भी उसी में मिला दीजिएगा। और जैसे मिलाएंगी देखिएगा कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है।
2: हाँ।
3: इसको ढक दीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगी, जब ये डालेंगी तो एक टेबल स्पून इमली पकी हुई उसका गूदा आप घोल के डाल देंगे।
2: अच्छा, जो कच्ची वाली, जो
3: पकी हुई इमली जो रहती है उसका
2: है।
3: खूब अच्छे से एक चाय का चम्मच, एक टेबल स्पून आप गूदा ले लीजिए।
2: हाँ।
3: उसको खूब मैश करिए, मैश करके आप इसी रसम में खोलते में डाल दे देंगी
2: जी।
3: और चाहिएगा तो जरा सा खुटा मिर्चा डाल लीजिएगा अगर आप तेज और खाना पसंद करती हैं। अब आप इसको फिर खोलने देंगी, फिर चला करके आप इसको अलग रख लेंगी
2: जी।
3: अब आप क्या करेंगी, आप तड़के वाला पैन ले लीजिए, उसमें आप रिफाइंड डाल लीजिए या सरसों का तेल या देसी घी जो भी आप खाती हैं वो डाल लीजिए। उसमें आप हींग डालिए, करी पत्ता खूब महीन काट के,
2: महीन काट कर
3: वो डालिए, साबुत मत डालिएगा, महीन काट के डालिए। बनारसी राई डालिए या काली राई डालिए इसमें। उसके बाद जो है इसमें लाल मिर्च जो साबुत होती है उसको आप तोड़ करके डालें। उसके बाद जो है आप इसको गरम गरम उसी रसम के रसे में आप डाल देंगी तो छौंका लगा लेंगी, बहुत सुंदर लगता है जो ऊपर से छौंका लगा हुआ। उसके बाद उसमें आप मिला देंगी
2: जी।
3: आप चावल भी आपका है तो तब तक चावल आप क्या करेंगी, जो भी आपके अंदाज का है कुकर में नमक डाल के जैसे आप पकाती हैं आप वैसे ही पका लीजिए, उसको अलग रख लीजिए। अब आप इसमें भी तड़का बनेंगी तो तड़के में क्या करेंगी कि कढ़ाई में जो है तेल डालेंगी, हल्दी डालेंगी और हरी मिर्च इसमें भी डालेंगी, हरा धनिया डालने से सुंदर लगने लगता, इसलिए आप हरा धनिया भी इसमें डाल दीजिएगा और साथ ही एक पूरे नींबू का रस इसमें पड़ जाएगा
2: जी।
3: इसमें जब बढ़ जाएगा तब जो है चावल जो है इसको आप वो भी डाल दीजिएगा, बनारसी राई भी इसमें डाल दीजिएगा।
2: अच्छा, मतलब चावल में भी तड़का लगना है,
3: अलग से लगना
2: है। पहले
3: सिर्फ चावल बना के रख लेना है और फिर चावल में भी हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगा के चूंकि इसमें हल्दी भी पड़ी है तो फिर हम इसको तड़के को चावल में डाल देंगे। चावल में भी हम हल्का सा नमक डाल के ही पकाएंगे जब भी उबालेंगे, जैसे घर में बनाते तो उसमें। और अगर आपने नमक नहीं डाला है तो आप तड़के में थोड़ा नमक अंदाज से डाल लीजिएगा हल्का बहुत, तो कोई जरूरी नहीं है कि चावल में डालिए या तड़के में डालिए। उसके बाद ये तड़का आप उठा करके चावल में डाल देंगी और चला देंगी। जैसे ही चलाएंगी तो जो हल्दी पड़ी है नींबू है वो सब पीला पीला आ जाएगा और नमक भी और आ जाएगा और खटाई का भी स्वाद आ जाएगा। उसके बाद आप इसको थाली में, अब परसने का रहता है कि हम गोल एक कटोरी में लेते हैं और फिर गोली गोल हम उसको थाली में डाल देते हैं और थाली के किनारे किनारे जो इसे गोला है उसके किनारे किनारे रसम डाल देते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। आप लोग ऐसे बनाइए और खाइए, देखिए कितना अच्छा लगेगा।
2: मतलब तो ऐसी सी चीजें आज ना कि कम से कम बता रहे हैं कि कसम से कि आज ना माउथ वाटरिंग हो रही है कि इतना मतलब लजीज से भी लजीज। और अभी अगर मिल जाए ना तो मैं तो कसम से
3: सच में रसम तो बहुत अच्छा लगता है, एक कटोरी दो कटोरी कभी भी पी लो और चावल के संग तो बहुत ही अच्छा लगता है। चूंकि चावल तड़के वाला होता है इसलिए बहुत अच्छा स्वाद आता है।
2: बिल्कुल,
3: चलिए
2: तो मैम फिर से हम चाहेंगे कि ऐसी ही नई नई डिशेस को लेकर के और स्टेट वाइज जो आपने बताई आज डिशेस उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे ही नई नई डिशेस को लेकर के आप हमारे स्टूडियो में जरूर से आया करिए,
3: बिल्कुल,
2: ताकि हम लोगों के बिजनेस को भी नई नई चीजें मिले।
3: बिल्कुल, तो फिर चलिए आपको सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, फिर मिलेंगे।
2: थैंक यू सो मच। तो भाई ये थी हमारे साथ में आज हमारे मास्टर शेफ ने बहुत ही गजब की मतलब बताई कि मैं तो इसको जरूर से ट्राई करूंगी एंड आप भी ट्राई करिएगा, उसका फीडबैक हमें बताइएगा। और आज बस इतना ही, सुनेंगे अभी इसके बाद और रेसिपीज लेकिन हमारी नई स्टूडेंट्स के साथ में। तो बस हम यू गए यू आए, स्टे ट्यून्ड।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आज समता और साथ में आज हमारे, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ है मास्टर शेफ, और उसके बाद में हमारे ही कॉलेज की कुछ स्टूडेंट्स आई हैं जो कि उनके घर की कुछ स्पेशल चीज़ों को आज आपके साथ शेयर करने वाली हैं। तो मैं नेक्स्ट आवाज़ आपको सुनाऊंगी और उनसे पूछूंगी भी कि आप क्या आज बनाने वाली हैं। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि लिसनर्स, आपका भी आज आप कॉल कर सकते हैं और अपने किचन से कुछ ऐसा लजीज हमें बता सकते हैं। द नंबर इज 6393316429। इस पे आप कॉल करिए और बता सकते हैं आपके अपने किचन में कुछ ऐसा खास, जैसे प्रीति जी हैं और आशु जी हैं, तो बहुत सारी ऐसी नव्या जी, तो जितने भी हमारी फीमेल लिसनर्स हैं, मतलब फीमेल्स में इसलिए कहती हूँ क्योंकि किचन में ज़्यादातर वो ही रहती हैं, तो अगर मेल भी कॉल करके बताएंगे कि मुझे ये बनाना आता है चाय के अलावा, कॉफ़ी के अलावा, तो आप लोग भी कॉल करके अपनी अपनी डिशेस को हमारे साथ पहुँचा सकते हैं, यानी आपकी डिशेस को सुनेंगे बहुत सारे लोग। तो फिलहाल हम आपकी करते हैं कॉल का वेट, लेकिन इसके पहले हमारे स्टूडियो में आ गई हैं हमारे साथ एक स्टूडेंट। तो आप अपना सबसे पहले नाम बताएं एंड स्वागत है, अभिनंदन है आपका, और आप अपना नाम बताएं पहले।
5: मेरा नाम सिमी है और मैं आपको आज एक रेसिपी बताने वाली हूँ जो है लौकी का लच्छे वाले हलवा।
4: लौकी का लच्छे वाला हलवा। तो सिमी, पहले तो मुझे ये आपसे जानना है कि आप हमारे NGM कॉलेज की स्टूडेंट हैं।
5: यस मैम।
4: ठीक है, तो घर में काम करती हैं आप?
5: यस मैम।
4: मुझे देख के लगता तो नहीं है कि आप काम करती हैं घर में।
5: मैम करते हैं।
4: करते हैं।
5: yes,
4: तो किचन का काम ज्यादा अच्छा लगता है कि बाहरी ऊपर ही काम अच्छा लगता है?
5: नहीं मैम, किचन का भी अच्छा लगता है और बाहर का।
4: बाहरी जैसे डस्टिंग वगैरह हो गया, घर की मेंटेनेंस हो गई है ना।
5: yes,
4: लेकिन सबसे ज्यादा काम जो है वो किचन का ही लड़कियों को सीखना चाहिए, क्योंकि देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि आप कपड़े धोने वाले रख सकते हैं, आप अपने घर को मेंटेनेंस करने वाले रख सकते हैं, बट अगर खाना बनाने वाला भी अगर आप रख देंगे ना, तो हमारा कॉलेज लड़कियों का कॉलेज है और मैं सब लड़कियों को यही कहती हूँ कि अगर आपको अपने हस्बैंड को खुश रखना है, तो कहा जाता है कि हस्बैंड के जो दिल का रास्ता होता है ना, उनके पेट से होके जाता है।
5: yes, ma'am.
4: तुम्हें पता है?
5: yes, ma'am.
4: ये कैसे पता है तुम्हें?
5: मैम आपने बताया मुझे
4: अभी, वो तो मैंने अभी बताया ना, उसके पहले तुमने यस मैम बोल दिया था। चलो तो ठीक है, ये तो हो गई बातें। तो चलिए अब मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि लौकी का लच्छेदार जो हलवा बनेगा तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, पहले वो जान लेते हैं।
5: सबसे पहले उसमें एक ताजी और हरी लौकी चाहिए।
4: ताजी ना मिले तो?
5: मैम हरी लौकी होनी चाहिए,
4: हरी
5: हमें
4: बासी नहीं होनी चाहिए।
5: यस मैम
4: जी,
5: ताजा, क्योंकि ताजा लौकी होगा तो ज्यादा स्वादिष्ट हलवा बनेगा।
4: जी,
5: तो सबसे पहले हमें लौकी ले लेना है एक, और उसमें कुछ जरूरी चीजें हाँ, जैसे कि उसमें देसी घी चाहिए, इलायची चाहिए
4: जी,
5: चीनी चाहिए
4: जी,
5: और ड्राई फ्रूट अपने अकॉर्डिंग।
4: अपने अकॉर्डिंग।
5: यस मैम। और उसमें खोया चाहिए।
4: खोया, अच्छा, यानी कि हम लोग खोए वाली आज हलवा खाने वाले हैं। तो अभी आप लोगों ने अतरंगी डिशेस सुना था ना, रास मतलब सुना अभी जब हमारे साथ रंजना मैम थी, और बहुत ही केरला की एक बहुत अच्छी सी डिश आपने सुनी, आगरा की सुनी, तो ऐसे ही आज अब उसके बाद में मीठा खाने के लिए रेडी हो जाइए आप सभी लोग। तो जी सिमी जी बताइए, तो कैसे बनाना है, क्या क्या प्रोसेस है इसका?
5: मैम सबसे पहले लौकी को हम छील लेंगे, उसको धुल लेंगे, फिर हम कद्दूकस कर लेंगे लौकी को।
4: उसको कद्दूकस कर?
5: यस मैम। लौकी को कद्दूकस करने के बाद उसको हम बॉईल करेंगे। okay. पानी में बॉईल करेंगे।
4: अच्छा, पहले लौकी को डायरेक्टली बॉईल करके कद्दूकस नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं, पानी नहीं आ जाएगा उसमें।
5: yes, ma'am.
4: जी जी।
5: तो मैम सबसे पहले इसको छील लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे, फिर उसको जो है बॉयल करेंगे पानी में।
4: हाँ।
5: पानी में बॉयल करने के बाद फिर मुश्किल से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट बॉयल करेंगे, फिर हम लोग एक छलनी में इसको छान लेंगे। छान के फिर पानी अलग कर लेंगे और लौकी को अलग रख लेंगे
4: जी।
5: ठीक है, फिर उसके बाद में एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 चम्मच हम घी डालेंगे और जो खोया होगा हमारा उस घी में खोए को भून लेंगे।
4: अच्छा, पहले कढ़ाई में खोए को भून लेना है।
5: यस मैम, वो थोड़ा ब्राउन ब्राउन भूनना है। भून के हम खोए को निकाल लेंगे एक प्लेट में, फिर उसके बाद में उसी कढ़ाई में फिर हम 2 चम्मच घी डालेंगे, फिर उसमें छोटी इलायची डालेंगे, फिर उसके बाद में जो है हम लौकी डालेंगे।
4: ओके,
5: लौकी डाल के फिर उसको भूनेंगे थोड़ा।
4: हाँ।
5: 1 से 2 मिनट भूनने के बाद फिर हम उसमें मैम खोया डालेंगे।
4: ओके,
5: खोया डालने के बाद फिर शक्कर डालेंगे, शक्कर डालने के बाद फिर ड्राई फ्रूट डालेंगे, फिर उसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, फिर धीमी आंच पे हम उसको 5 मिनट के लिए रख देंगे।
4: मतलब उसको पकाना भी है।
5: यस मैम, 5 मिनट, ताकि जो है चीनी और खोया वो लौकी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। फिर 5 मिनट जब वो हो जाए और हम ये देखेंगे कि हमारी जो चाशनी होगी चीनी वाली वो लौकी एब्जॉर्ब कर ले।
4: अच्छा, वो गीला गीला भूनते रहना है।
5: yes,
4: वरना वो गीली गीली चिपचिपी सी लगेगी।
5: yes, जी। फिर उसके बाद में अच्छे से उसको भून लेंगे, फिर ऊपर से हम अपने पसंद के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट डाल के और इलायची और अगर हो तो जैसे कि केसर या फिर केवड़ा जेल, फ्रूट मतलब फ्लेवर के अकॉर्डिंग उसको डाल के फिर हम लोग गैस ऑफ कर देंगे। हाँ। फिर उसके बाद में गर्मा गर्म हम लोग सर्व कर लेंगे।
4: अच्छा, तो एक बात मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ।
5: यस मैम।
4: जैसा कि मुझे कहीं से पता चला है कि आप लोगों में जो ईद में जो सेवई बनती है।
5: यस मैम।
4: वो एक सेवई का नाम होता है किमामी।
5: यस मैम, किमामी सेवई होता है। हाँ। और एक शीर खोरमा।
4: शीर खोरमा, तो ये कुछ हलवाई का स्वाद कुछ वैसा मिलता जुलता तो नहीं लग रहा है? उसमें भी आप खोया डालते हैं और ड्राई फ्रूट डालते हैं, बट इसमें लौकी का स्वाद आएगा।
5: यस मैम, इसमें लौकी का स्वाद भी आएगा, बट इसमें जो लौकी का हमारा हलवा है वो लच्छेदार होगा।
4: लच्छेदार।
5: यस मैम, और लच्छेदार जो होगा। और मैम, ये लौकी का हलवा 2 तरह का बनता है। एक में दूध पड़ते हैं, वो बिल्कुल एकदम मिक्स टाइप का हो जाता है।
4: हाँ।
5: लेकिन इसमें दूध हम नहीं डालेंगे, इसमें केवल खोया।
4: अच्छा, खोए से ना वो दानेदार बनेगा।
5: वो दानेदार बनेंगे और खोया अलग दिखेगा और लौकी मुझे अलग से दिखेगी एकदम, तो ये लगेगा बिल्कुल लच्छे वाले लौकी का हलवा,
4: लच्छेदार लौकी का हलवा। इसको नाम हम लोग दे देते हैं नामकरण, लच्छेदार लौकी का हलवा।
5: यस मैम,
4: जो कि बताया आज हमारी कॉलेज की और NGMPG कॉलेज की हमारी स्टूडेंट है, MA की स्टूडेंट है सिमी, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी बनाई है, पर ये अभी ओरली बनाई है। और अब हम उम्मीद करते हैं कि ये लच्छेदार हलवा जो है ये प्रेजेंटेशन इसकी मतलब स्वाभाविक रूप से, जैसे ना जैसे कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल रूप में ये बना के आए और हम लोगों को खिलाएं।
5: यस मैम।
4: तो ये कब होगा शुभ काम?
5: जब मैम, हाँ, जब आप बोले।
4: मतलब हम इनको बोल रहे हैं कि अभी आपको बोलना है कि जब आप कहें, मतलब ऐसे ऐसे मेरे होनहार स्टूडेंट है ना। तो थैंक यू सो मच सिमी, और चलिए हम आपको एक बहुत ही प्यारा सा गाना बता देते हैं। एंड थैंक यू सो मच आप आए और आपने बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी हमें, मेरे साथ में हमारे लिसनर्स को भी बताया। और फिर से हम आपको बुलाएंगे जब भी हमें लगेगा कि एक कुछ अच्छा सा लजीज सा खाना है बढ़िया सा, तो आपको हम फिर से याद करेंगे। लेकिन आज के लिए थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ सिमी, जो कि इन्होंने लच्छेदार हलवा बताया है और आई थिंक बहुत ही क्विकली बन गया। और हम लोग सोचते हैं ना कि कौन बनाए, कौन उसको इतनी मेहनत करे, बट इन्होंने अभी बोलने में मुझे लग रहा है कि 2 से 3 मिनट में ही बता के बट फटाफट ख़त्म कर दिया, और बनाने में मैक्स टू मैक्स 10 मिनट लगता होगा। तो चलिए हम इस हलवे को ट्राई करेंगे और आप लोग भी ट्राई करिएगा। लेकिन अभी हम सुनेंगे इस प्यारे से गाने को, बस हम यू गए यू आए, स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ओआरएस का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: डिलिशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता। और आज जैसा कि अभी मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं, खुश कर दिया आपने, बहुत ही प्यारे से गाने चल रहे हैं, दिल खुश कर दिया आपने। तो भाई मुझे लग रहा है कि जब दिल खुश

कामकाजी महिलाएं जो होती हैं, जिन्हें जो लोग ये कहती हैं कि मुझे ना बहुत ज़्यादा काम रहता है, हम पूरा पूरा दिन हम लोग खाली नहीं होते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि लहसुन, जो कि अदरक, लहसुन और हरी मिर्च हर एक सब्जी में पड़ती है और हर एक सब्जी का एक ये मेन इन्ग्रीडियंट्स है जो लोग लहसुन और ये खाते हैं, ठीक है। तो लहसुन छीलने का जो तरीका है आज मैं आपको बताती हूँ कि लहसुन की कलियों को निकाल कर गर्म पानी में 10 से 15 मिनट आपने उसको भिगो के रख देना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि पानी में भीगने के बाद ये आसानी से नरम हो जाती है और हाथ से रगड़ने पर छिलका तुरंत उतर जाता है, जिसके कारण से आपकी जो लहसुन है वो आसानी से छिल जाती है। अब एक बात बता दूं और कि आपको इसको छील करके फ्रिज में एक कंटेनर में, जो टाइट कंटेनर ढक्कन वाला होगा, उसमें आपको इसको बंद करके रख देना है, ताकि बस आपने फ्रिज खोलना है, लहसुन निकालनी है और आपने अच्छे से उसको किसी भी सब्जी में डाल देना है। दूसरा एक बात मैं आपको बताऊंगी कि एक तरीका और है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग टिक्की बनाते हैं, आलू की टिक्कियाँ बनाते हैं, उसमें ना आप लोगों ने आरारोट डालते हैं। आरारोट जो होता है ना, आरारोट पाउडर होता है वाइट वाला, वो डाल के बनाते हैं। काफ़ी लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में टिक्कियाँ खाते हैं तो उसमें भी मिला के बनाते हैं। वो वाला आरारोट पाउडर लेना है आपको, और आपने क्या करना है कि लहसुन को थोड़ा सा किसी कपड़े में, मतलब आपने एक लहसुन का पूरा पूरा एक बंच लेना है और अपने हाथ से या किसी बेलन वेलन की सहायता से हल्का सा उसको क्रश कर देना है, और दूसरा कपड़ा उसके ऊपर रख करके हल्के से उसके ऊपर रगड़ देना है। मतलब ऐसे दो तीन आपने पूरा पूरा डंठल ले लेना है। हल्का सा उसको तोड़ने के बाद में आपने उस पाउडर में मिला के रख देना है, जो कि आरारूट पाउडर होता है, उसमें आपके मिला करके कुछ देर के लिए इसको रख देना है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि इसके जो छिलके हैं ना, अपने आप से मुलायम होना शुरू हो जाएंगे, और फिर आपने इसको हल्के हाथ से भी अगर आप इसको निकालेंगे ना, तो ये निकल जाएगा। तो ये दो टिप जो है लहसुन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये करना है तो आप इसको अपने किचन में हमेशा से बना करके इसको रख सकते हैं। दूसरा है कि मिर्च काटते समय हाथों की जलन से बचाओ। मिर्च के डंठल तोड़ने या काटने से पहले हाथों पर थोड़ा सा सरसों का तेल या कोई भी कुकिंग ऑयल लगा लें, ताकि मिर्च के जो डंठल हैं वो आसानी से उसमें से हट जाए। कई बार ऐसा होता है कि मिर्च हम पूरी पूरी फ्रिज में रख देते हैं, और जिसके कारण से मिर्च फ्रिज में रखने से वो सड़ जाती है। तो क्या करना है कि आपने एक छोटा सा कंटेनर लेना है, जिसमें हरे मिर्च की डंठल को तोड़ करके उसको एक कंटेनर में रख देना है, ताकि ये लंबे समय तक चले, और अगर डंठल लगी रहेगी तो मिर्च जल्दी सड़ जाते हैं। तेल लगाने से मिर्च का जो तीखापन होता है वो हाथों की त्वचा में समाता नहीं है, मतलब लगता नहीं है, अगर आप तेल लगा करके अपने हाथों में ये काम करेंगे तो। एंड दूसरा बता दूं कि अदरक छीलने की आसान सी ट्रिक, बहुत ही आसान है। अदरक के बहुत सारे ना उबड़ खाबड़ वाली उसकी त्वचा होती है ना, तो उसको क्या करना है, वो बहुत सारे उबड़ खाबड़ वाली आकारों की वजह से जो चाकू से जो छीलना होता है वो बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए एक चम्मच के पिछले हिस्से का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे अदरक का छिलका बहुत आसानी से और सफाई से उतर जाता है। मतलब चम्मच ले लीजिए और उसके उल्टे तरफ से आपने क्या करना है, चाकू की मदद से नहीं, आपने क्या करना है, चम्मच की मदद से उसको उल्टी तरफ से आपने उसकी छिलकों को उतारेंगे तो बड़ी आसानी से वो साफ हो जाता है, ठीक है। एंड कुछ और मेरे पास टिप्स हैं जो कि हैं बहुत ही आसान से, जो कि मैं आपको बताऊंगी अभी। क्या करना है आपको कि अगर आलू अगर आपने बॉईल कर लिया है, मतलब आपको कुकर में अगर आलू को बॉईल करना है एंड आपका कुकर काला हो गया, नॉर्मल सी बात है कि आलू जब हम बॉईल करते हैं, बैगन बॉईल करते हैं, तो क्या होता है कि वो कुकर है वो काला पड़ जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको आधा नींबू काट करके, या नींबू आपके पास किसी भी कंडीशन में रखा होगा, भले उसके अंदर रस है कि नहीं, उसका छिलका भी होगा तो भी चल जाएगा, जब आप आलू बॉईल करें, बैगन को बॉईल करें, तो आपने वो उस छिलके को पानी में डिप करके छोड़ देना है, डाल के छोड़ देना है, ठीक है। फिर क्या होगा कि वो आलू जो है, आलू के पानी के कारण से कुकर काला हो जाता है, तो वो काला नहीं होगा, और जो नींबू का रस है ये पूरे आपके कुकर में फैल जाएगा, जिसका छिलका जो है, छिलका मात्र भी काम करेगा।

तो अगर आपने ऐसा करना है तो आपका कुकर कढ़ाई या कढ़ाई में भी कुछ लोग मैंने देखा है कि बॉयल करते हैं, कढ़ाई खुली वाली होती है उसमें भी मैंने देखा है कि काफ़ी लोग इसको बॉयल करते हैं। तो अगर आपको कढ़ाई में भी करना है तो आप कढ़ाई में भी इसको कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि मतलब ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको उसको साफ़ करते हुए मतलब कभी भी इस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं आपकी नींबू से, अगर आपको रस निकालना है, ज़्यादा नींबू से रस निकालना है तो हाथ की हथेलियों से बहुत ही प्रॉब्लम होती है, हाथों से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो क्या करना है कि नींबू को काटने से कुछ सेकंड पहले इसे गुनगुने पानी में डुबोकर आपको रख देना है और उसके बाद हथेली से काउंटर पर आप रगड़ें उसको। मतलब नींबू को आपने गर्म पानी में बॉईल करके छोड़ देना है, देन आपका जो काउंटर होता है, किचन काउंटर होता है, उस पर आपको रगड़ना है उस नींबू को निकाल करके। उसके बाद जब आप इसको कट करके इसका रस निकालेंगे तो नींबू का केवल और केवल छिलका बच जाएगा, सारा का सारा रस बाहर निकल जाएगा। सब्जियों का रंग बरकरार अगर आपको रखना है और आपको सब्जी का रंग फीका ना हो, जैसे पालक हो गई, मटर हो गई, तो हरी सब्जियों को उबालते समय पानी में एक चुटकी चीनी मिला दें जिसका रंग कभी भी फीका नहीं पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग साग बनाते हैं, पालक पनीर बनाते हैं, ऐसे ही दाल वाला साग बनाते हैं, तो क्या होता है कि उसका जो रंग होता है वो फीका पड़ जाता है और फिर उसको खाने में तो स्वाद आता है लेकिन दिखने में वो अटपटा सा लगता है। तो आपने बॉयल करते समय थोड़ी सी चीनी, मतलब आधी चम्मच चीनी आपने उसमें डाल देनी है और फिर उसका स्वाद आपने देखना है कि स्वाद तो बढ़िया से आएगा ही, पर प्रेजेंटेशन इज मस्ट, प्रेजेंटेशन भी आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो ये थे कुछ ऐसे किचन टिप्स जो मैंने आपको बताए। चलिए तो अब हमें दे इजाज़त, हम मिलेंगे आपको। एंड थैंक यू अरविंद जी, धर्मेंद्र जी, जितने भी हमारे लिसनर्स आज आए हैं। और अब हमें दे इजाज़त, हम मिलेंगे कल सेम प्लेस सेम टाइम पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283686।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

ये रोना धोना क्यों है भाई? मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आरजे उन्नति, और ये है कॉलर ट्यून गोंडा फरमाइशों में। रोना नहीं होता है दोस्तों, सिर्फ हंसना होता है, मुस्कुराना होता है। फिलहाल के लिए हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप सभी? गुड आफ्टरनून। घड़ी में वक्त हो चला है 3:06 बाद स्टूडियो क्लॉक, और आपके साथ मौजूद है आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी रेडियो चौक की उन्नति, एंड प्रोग्राम चल रहा है कॉलर ट्यून गोंडा, यानी कि आपके अपने फरमाइशों वाला कार्यक्रम। फरमाइशों का सिलसिला जारी रहने वाला है 3 से 4। ऑफकोर्स मंडे का बेहद ही स्पेशल, वैसे तो हम पूरे हफ्ते एंजॉय करते हैं, लेकिन मंडे शुरुआत हो चुकी है और अब से सैटरडे तक नॉन स्टॉप आपकी फरमाइशें चलेंगी, तो मुबारक हो। और फिलहाल हमारे पास हमारा पहला गाना भी आ चुका है, लेकिन अगर आपका अभी तक सॉन्ग आपने नहीं भेजा है तो भैया फ़ोन उठाए, डायल करें 6393316429, और अपनी फरमाइशों के साथ साथ अपने शहर का नाम, अपने गाने के बोल, अपना नाम, और किसको डेडिकेट कर रहे हैं वो नगमा बताइएगा ज़रूर। एंड आइए एंजॉय करते हैं हमारी पहली फरमाइश, जो कि हमारी देवी प्रसाद जी की आई है, जा रे पंछी कहाँ जाना है। ये इस गाने में एंजॉय कीजिएगा, जो कि मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है।

और ये फरमाइश थी हमारे देवी प्रसाद जी की, आप एंजॉय कर रहे थे। जी हाँ, आप एंजॉय करते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में चल उड़ रहे पंछी, और ऑफ कोर्स भाभी फिल्म से था 1957 का गाना। एंड आइए बढ़ते हैं हमारे अपने चैट बॉक्स में, क्योंकि आपके चैट बॉक्स में कुछ मैसेजेस आ चुके हैं, कुछ पैगाम आ चुके हैं। और हमारे पास जो मैसेजेस हैं उनमें से सबसे पहला मैसेज आया हमारे अरविंद जी का, और लिखा है, हेलो अश्वती मैम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अरविंद जी, आप बताइए आप कैसे हैं? शुभ दोपहरिया, आपके नटखट मिजाज को दिल से मिस करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम भी आपको काफ़ी मिस करते हैं। रिजु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुलफशाह सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गई हैं, हेलो गुड आफ्टरनून अंति मैम, गुड आफ्टरनून टू यू गुलफशाह जी, कैसी हैं आप? सुरेंद्र यादव फ्रॉम गौरा चौकी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एंड अरीबा शेख हमारे साथ जुड़ गई हैं, हेलो गुड आफ्टरनून अंति मैम, गुड आफ्टरनून टू यू अरीबा जी, कैसी हैं आप? आपका भी इस्तकबाल करते हैं हम कॉलर ट्यून गुंडा में। एंड इसके बाद हमारे पास जो मैसेज आया है वो आया है धर्मेंद्र मोहन जी का, उन्नति जी राम राम, बेस्ट ऑफ लक, राम राम आपको भी, एंड थैंक यू सो मच। मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हाय लिखा है आपने, हाय कैसे हैं आप? आपका भी वेलकम करते हैं हम कॉलर ट्यून गुंडा में। नाजिया अंसारी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू यू नाजिया जी, कैसी हैं आप? एंड रीना शर्मा फ्रॉम उत्तराखंड हमारे साथ जुड़ गई हैं, और उनका भी मैसेज हमें मिल चुका है। आइए आपका भी स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। फिलहाल के लिए आपकी फरमाइशों को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे पास जो अगली फरमाइश आ चुकी है वो है अमित कुमार जी की, एंड क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त गाने की फरमाइश है, यानी आइडिया क्या हो सकता है, नहीं है? चलिए हम ही आपको बता देते हैं, जो गाना आया है वो आया है तेरे इश्क में नाचेंगे, तो सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। अपनी फरमाइशों को करने के लिए बस डायल करें 6393316429 और अपनी फरमाइशें भेज दें हम तक अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ साथ। स्टे ट्यून्ड।

रमन जी, डम डम डुबा डुबा डुबा डुबा, कहाँ डुबा, कहीं नहीं डूबना है आपको, बाहर आना है आपको, बाहर आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सुन रहे थे कुमार सानू और अली शान सपना मुखर्जी की आवाज में। तेरे इश्क में नाचेंगे राजा हिंदुस्तानी से आमिर खान और करिश्मा कपूर पर फिल्माया गया गाना है, समीर साहब के लिखे बोल है, नदीम अख्तर का दिया हुआ म्यूजिक है। फिलहाल आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। ऐसे हम आपको बता दें, नदीम श्रवण एंड अख्तर साहब हैं इसके अंदर। और अगला गाना हमारे पास आया, जो अगली फरमाइश हमारे पास आई है कॉल ट्यून गुंडा में, वो है हमारी समरीन जी की, एंड शी वांट्स टू लिसन तेरा मेरा रिश्ता पुराना। एंजॉय करते रहिए आवारापन से, हम मिलेंगे इस गाने के उस पार लेकर के अगली फरमाइश जो होने वाली है हमारे रिजू की, सो प्लीज एंजॉय।

और आप एंजॉय कर रहे थे मुस्तफ़ा जाहिद की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा नगमा तेरा मेरा रिश्ता पुराना, और ये गाना था फरमाइश हमारी समरीन जी का। एंड वक्त हो चला है हमारे अगले गाने की तरफ बढ़ने का, लेकिन उससे पहले चैट बॉक्स में एक नज़र देख लेते हैं भैया कि अगला पैगाम हमारे पास किसका आया है। हमारे साथ जो जुड़ गए हैं वो हैं सचिन राज चौहान, लिखा है आपने, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू सचिन जी, कैसे हैं आप, आपका स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ बारिश हो रही है भैया, ये बेमौसम बारिश आजकल हो क्यों रही है, इसके पीछे कोई कारण बताएंगे? क्योंकि जब हम चाहते हैं बारिश हो तो बारिश नहीं होती, और जब हम नहीं चाहते हैं कि आज बारिश ना हो उसी दिन बारिश हो जाती है, वाई? फिलहाल उड़ती जी नमस्कार, मनी जी ने लिखा है नमस्कार आपको भी, मनी जी कैसे हैं आप, एंड ओके आई होप आप लोग चैट बॉक्स की मर्यादा बनाकर रखेंगे। और आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, अगला सॉन्ग हमारे पास रिजू जी का है, तो एंजॉय करते रहिए, एक फसाना, हम मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

और ये फरमाइश थी हमारे रिजु जी की, एक अफसाना बन गया है। और आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली फरमाइश पर। हमारे साथ एक और लिसनर जुड़ गए। हाय मैम, हाय, कैसे हैं आप? एंड सभी से सवाल किया गया है कि आप सभी कैसे हैं, तो भैया अपना अपना जवाब आप खुद दीजिए और हम एंजॉय करने जा रहे हैं हमारे अगले गाने को। अगला सॉन्ग वन ऑफ माई फेवरेट गाना है दोस्तों, सीट बेल्ट बांध लीजिएगा क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं हिमेश रेशमिया की आवाज़ में झलक दिखला जा। गुलाब शाह सिद्दीकी जी की फरमाइश है, डेडिकेटेड टू मी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आइए एंजॉय करते रहते हैं और आप सभी को डेडिकेटेड है ये गाना उनकी तरफ से, तो भैया कहीं मत जाइए, बहुत ही जबरदस्त हिट सॉन्ग है, वन ऑफ माय फेवरेट है, ट्यून मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और हिमेश रेशमिया का एक वक्त का सबसे पॉपुलर गाना भी यही है।

हिमेश रेशमिया की आवाज और इमरान हाशमी का वो एनर्जी वाला डांस इस गाने को इतना सुपर डुपर हिट बना देता है। अक्सर फिल्म से आप इंजॉय कर रहे थे हमारे गुलाबशाह जी की फरमाइश। और हमसे सवाल किया गया है भाई कि किसको बुलाया जा रहा है। आप ही को बुलाया जा रहा था जनाब, आप आ चुके हैं और आपने झलक दिखला भी दिया है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास आई है सुरेंद्र यादव जी की, तो इंजॉय करते रहिए उनकी फरमाइश को। हम मिलते हैं अगले गाने पर अगली फरमाइश को लेकर के, लेकिन तब तक के लिए हम आपको बता दें, याद दिला दें कि आप सुन रहे हैं कॉल अच्छी उनगोंडा भी, तो राजी नदी आपके अपने फरमाइशों वाला कार्यक्रम। अगला गाना यानी कि हमारी जो नेक्स्ट फरमाइश है वो है सुरेंद्र यादव जी की, हम तुम पिक्चर देख रहे हैं। फिलहाल हम तो गाने इंजॉय कर रहे हैं आपके साथ मिलकर के। आप देखिए पिक्चर अलका जी और उदित नारायण की आवाज़ में रंग फिल्म से।

गोंडा में भी बिजली गई थी, 4 दिन के लिए बत्ती गुल हुई थी और उसके बाद लगा था कि नहीं होनी चाहिए ये चीजें, सिर्फ जो आपको रोमांटिक लग रही है हमारी फिल्मों में, असल जिंदगी में जब होता है ना तो बिजली विभाग वालों का सर खा लिया जाता है कि क्यों चली गई बत्ती भाई, बताओ हमको तनिक, और वो भी कहते हैं सर बता रहे, तनिक सबर कीजिए बता रहे हैं। फिलहाल के लिए आप एंजॉय करते हैं सुरेंद्र जी की फरमाइश, रोमांटिक गाना था 90s का, रंग फिल्म से आप एंजॉय कर रहे थे, और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। क्या बात है भाई, अरविंद जी ने इतने खूबसूरत गाने की फरमाइश की है कि सुन के आपका दिल गार्डन गार्डन ना हो जाए तो कहना, इतना प्यारा गाना है कि आपने इसको बचपन में सुना होगा, अगर आप इस गाने को भूल चुके हैं तो दोबारा से याद आने वाला है, बिकॉज गाने का नाम है हीरिए सोनिए हीरिए। गाना याद आया ना, आया ना जी, हाँ आने वाला था क्योंकि बहुत प्यारा गाना है। शहनवाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर विकास त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लिखा है उन्होंने गुड, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी स्वागत करते हैं, और आइए एंजॉय करते हैं हमारे अरविंद जी की फरमाइश, मिलते हैं अगले गाने पर, डेडिकेट करते हैं वो इस गाने को वो सभी को, इंक्लूडिंग मी एंड माई टीम, तो आप एंजॉय करते रहिए, थैंक यू सो मच, सुनते रहिए कॉल ट्यून गोंडा, और ये ऑफकोर्स बहुत ही प्यारा सा गाना है।

0: वॉट इज दिस? मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ.
1: सो वॉट?
2: यू नो शेर, इट रियली हर्ट्स.

हां जी, और आप सुन रहे थे हमारे अरविंद जी की फरमाइश, तू आज तेन रब दा वास्ता। जाने के बाद ऐसे वास्ते नहीं दिया जाता है, पहले ही लिया जाता है। भैया जब कोई इंसान आपके साथ होता है, कोई शख्स आपके साथ होता है, कद्र तब की जाती है जाने के बाद सिर्फ पछतावा होता है दोस्तों, और पछतावे से जिंदगी नहीं चलती। फिलहाल आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे पास आया है आवाज विकास से हमारे धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश, और गाने का नाम है तेरी बाहों में है। तो इंजॉय करते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार आपके अपने कॉल ट्यून गोंडा में। इंजॉय करते रहिए, सुनते रहिए, आप सुन रहे हैं गोंडा का अपना एफएम रेडियो 89.6 FM विद राजू नती।

और ये फरमाइश थी हमारे धर्मेंद्र मोहन जी की। फिलहाल आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास है अमित जी की और वो एंजॉय करना चाहते हैं यूं ही, तो एंजॉय करते रहिए यूं ही और हम मिलेंगे इस गाने के उस पार। बहुत ही प्यारा सा नगमा है। हम आपको बता दें भैया, कंगना रनौत पे फिल्माया गया गाना है आपके, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है, तो एंजॉय करते रहिए। और अगली फरमाइश हमारे पास है रईस साहब की, जगू भाई की, अरीबा जी की, निशा जी की, रीना शर्मा जी की, उस्मान खान जी की और हमारे बर्थडे बॉय के लिए शहनवाज जी की। स्टे ट्यून्ड।

और ये फरमाइश थी हमारी अमित जी की, एंड हमारे साथ चैट बॉक्स में भी अमित जी जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत करते हैं अमित जी। मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। अगली फरमाइश हमारे पास आई है, मेरे यार की शादी है फिल्म से हम दोनों जैसा कोई भी नहीं है। और ये बात सच है कि भाई हमारे जैसा कोई होता भी नहीं है, ये बात हमें नहीं पता होती, हम दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। लेकिन कंपेयर मत कीजिए जनाब, आप इकलौते सिंगल पीस इस धरती पर आए हैं और आपको इस बात का गुमान होना चाहिए, लेकिन ईगो नहीं रखना, फिलहाल के लिए एंजॉय करते रहिए। हम मिलेंगे इस गाने के उस पार। हमारे रईस साहब की फरमाइश है ये। अगली फरमाइश हमारे पास है घुसियाना से जग्गू भाई की, जो सुनना चाहते हैं बगावत फिल्म से मेरे महबूब तुझे सलाम। मिलते हैं इस गाने पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: वक्त को मद्देनजर रखते हुए अब बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, आइए एंजॉय करते हैं बगावत फिल्म से हमारे अगले गाने को एंड माफी चाहेंगे, हमें इस गाने को बीच में ही रोकना पड़ा। बहुत ही खूबसूरत फरमाइश थी रही साहब आपकी। एंड अगली फरमाइश हमारे पास जो है वो अरिबा शेख की है, निशा जी की है, रीना शर्मा जी की, उस्मान खान जी की है, हमारे शोएब जी की है, शहनवाज जी की है। एंजॉय करते रहिए।
1: मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे।
0: इट्स कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वेरी गुड आफ्टरनून आज अनूनी, गुड आफ्टरनून टू यू, आपका भी वेलकम करते हैं हम।

और ये फरमाइश थी हमारे जग्गू भाई की खुशियान से। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अरिबा शेख जी की फरमाइश और उनके भाई अफान की फरमाइश है, दिल पे जख्म खाते हैं तो इंजॉय करते रहें। हम मिलते हैं इस गाने के उस पार। धुरंधर फिल्म से आप सुन रहे हैं बेहतरीन सा गाना, और अगली फरमाइश हमारे निशा जी की, रीना शर्मा जी की, उस्मान खान की है। सो स्टे ट्यून्ड।

और ये फरमाइश थी हमारे अरीबा जी और उनके भाई अफान की। एंड आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ और अपने दिलों की पेटी बांध ले, यानी कहे कि भैया दिलों को थोड़ा सा थाम लें क्योंकि आ रही है बेवफा से एक दिल रुबा है। और आप एंजॉय करने जा रहे हैं हमारे अक्षय कुमार और करीना कपूर पे फिल्माया गया गाना उदित नारायण की आवाज पे मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है। और ये फरमाइश है हमारी निशा जी की, तो जरा सुनते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा।

हाँ जी, और आप एंजॉय कर रहे थे हमारे निशा जी की फरमाइश, और इस नकमे के बाद आइए बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे अगली फरमाइश की ओर। उत्तराखंड से हमारे पास फरमाइश आई है हमारी रीना शर्मा जी की, और वो एंजॉय करना चाह रही हैं, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। रफी जी या लता जी की आवाज़ है, दो ओजी सिंगर्स की आवाज़ में आप एंजॉय करने चाह रहे हैं ये बेहतरीन नगमा। हम मिलते हैं इस गाने के उस पर, इंतजार कीजिएगा उस्मान खान की फरमाइश है अगली, सुनिएगा जरूर, जाइएगा कहीं भी नहीं, सुनते रहिए कॉल ट्यून गुंडा।

0: दूंगा। हाँ जी, और आप एंजॉय कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता जी की आवाज में एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। रीना शर्मा जी की फरमाइश थी हमारे पास उत्तराखंड से। और आइए पेश करते हैं आपके लिए अगला गाना जो हमारे पास है वो है उस्मान खान जी की फरमाइश, और वो सुनना चाहते हैं तेरे नैना मेरे नैनों से। नैना नैना की बात है, आंखों आंखों में ही समझ लीजिए क्या बात है क्या बात नहीं है। और एंजॉय करते रहिए, हम मिलते हैं इस गाने के उस पार। और ये अगला सॉन्ग हमारे बर्थडे बॉय के लिए होने वाला है जिनका नाम अमन है। तो भैया पहले तो हैप्पी बर्थडे एंड उसके बाद आपका गाना प्ले करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड।
1: ये तो हुए सुर, अब इन पे बिठाएं बोल।

और ये फरमाइश थी हमारे उस्मान खान जी की, तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। अब ये मीठी मीठी बातें कैसे करते हैं, इस सवाल का जवाब हम ना ही दे सकते हैं क्योंकि मेरे नैनों पर चश्मा चढ़ चुका है। सो आई डोंट नो। फिलहाल के लिए आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे पास शोएब जी की तरफ से आया था अमन जी को बर्थडे विश करने के लिए, और जैसा आपने टाइम भी भैया हमको पता चल चुका है, तो आइए विश करते हैं उन्हें हैप्पी वाला बर्थडे, और आप एंजॉय कीजिए सोनू निगम की आवाज़ में ये बेहतरीन सनगमा फॉर योर बर्थडे स्पेशल।

हैप्पी बर्थडे टू यू अमन जी। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारी आखिरी फरमाइश की ओर और आपके अपने मैसेजेस की ओर। इट्स कुमार जी की तरफ से बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। विकी जी ने विश किया हैप्पी बर्थडे टू यू, आंखों में आंसू हैं आपके, बहुत बहुत शुक्रिया, हालांकि खुशी वाले आंसू हैं। एंड हमारे साथ गुलाबशाह जी लगातार जुड़ी हुई थी। शहनवाज जी, आपकी फरमाइश को प्ले करने का वक्त आ गया है और आप इंजॉय करते रहिए, जिंदगी आवारगी है। और हम मिलेंगे भैया कल आपसे दोबारा 3 से 4 आपके अपने कॉल ट्यून गोना में, तो एंजॉय करते रहिएगा। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा है बता रहिएगा जरूर। और ये फरमाइश उन सभी को डेडिकेटेड है जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे बट जिन्होंने अपनी फरमाइश नहीं की है, जिसमें हमारे पप्पू जी आते हैं, हमारे इट्स कुमार जी आते हैं और हमारे बाकी लिसनर जो हमें सुन रहे हैं रेडियो गार्डन से, फ्रीक्वेंसी से या फिर एप्लीकेशन से। एंजॉय करते रहिए, आप सुन रहे कॉल ट्यून गोना। फिलहाल के चाहेंगे इजाजत, फिर मुलाकात होगी। रखिएगा ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद न आना, घबराहट, काम में मन न लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9286098197 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: स्वागत है आपका शाम के शो गोधूली में। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन, और मैं हूं आपका आरजे अदनान। शाम के इस शो में अक्सर हम गोंडा की ऐसी पर्सनालिटीज को इनवाइट करते हैं जो अपने उस खास एरिया के बारे में हमको उसकी जानकारी देते हैं। कुछ हमारे दैनिक दिनचर्या से जुड़ा होता है, तो कुछ हमारे करियर से, तो कुछ बिजनेस से, और कुछ अलग अलग मुद्दों से जुड़ी हुई बातें होती हैं। आज का मुद्दा इतना ज्यादा जरूरी है कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में काम आता है। बिल्कुल भाई, अगर हम गेस्ट की माने तो सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक उनका विभाग और हमारा जुड़ाव ऐसा है जैसे कि एक दूसरे के बिना कोई काम होना ही नहीं है। जी हाँ, तो पहले ही नहीं बुझाएंगे, बल्कि हम सीधे से अगर आपसे बताएं कि आज टैक्स जो हम पे करते हैं, जिसमें हम हाउस टैक्स को जानते हैं, वाटर टैक्स जानते हैं, और कई तरह के ऐसे टैक्सेस होते हैं, जब हम उसको पे करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार हम टैक्स तो दे रहे हैं, लेकिन दरअसल इससे हमको क्या मिल रहा है, इससे हमारे गली मोहल्ले का, हमारे शहर का क्या विकास हो रहा है। ये सवाल शायद आपके जहन में भी होगा। खैर, इसी बात को सरल आसान शब्दों में समझाने के लिए आज हमारे साथ में मौजूद हैं राजस्व निर्धारण अधिकारी श्री रत्नेश यादव जी। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं गोधूली शो में।
2: बहुत धन्यवाद आपका, और मैं पूरे गोंडा नगर वासियों को धन्यवाद देता हूँ, और मेरा हृदय से प्रणाम है सभी को। आप सभी लोगों का स्वागत है इस बातचीत में। ये आपकी बातचीत है तो हम इसमें आगे बने रहेंगे। आप सभी का अभिनंदन है।
1: बिल्कुल, थैंक यू सो मच, क्योंकि जैसा कि अभी आपने कोट किया, ये आपकी बातचीत है। सो दोस्तों, हमारी सड़क पर चलने से लेकर के पानी पीने, नालियों से निकासी होने और सफाई आसपास रहने, सब कुछ नगर पालिका से जुड़ा होता है, नगर निकाय से। और इसी सिस्टम को आज हम जानेंगे आसान शब्दों में, लेकिन उससे पहले, चूंकि हमारे साथ में बतौर एक्सपर्ट मौजूद हैं ऑफ कोर्स हमारे कर निर्धारण अधिकारी, तो चलिए भाई हम उनसे बातचीत करते हैं और पहला सवाल आपसे हम करते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है सर, कि आप बताइए, हमारे जो श्रोता इस वक्त आपको सुन रहे हैं, कि कर निर्धारण अधिकारी का जो मुख्य काम है वो क्या होता है, और एक आम नागरिक के लिए आपसे मिलना क्यों जरूरी हो जाता है कि वो आपसे आके मिले।
2: कर निर्धारण अधिकारी का जो मुख्य कार्य है वो कर का निर्धारण है, लेकिन चूंकि नगर पालिका में हमारी पोस्टिंग है, तो नगर पालिका में पूरे राजस्व की जिम्मेदारी हमारी रहती है। नगर पालिका में जो भी राजस्व आता है, जिसको बोर्ड फंड के रूप में जाना जाता है, जिससे तमाम से कार्य होते हैं, तो वह एक जरूरी फंड होता है जो नगर पालिका क्षेत्र के विकास और नगर पालिका को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए आवश्यक होता है, उसके लिए हमारी आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें हम गृहकर, जलकर यानी कि हाउस टैक्स और वाटर टैक्स का निर्धारण करते हैं। इसके साथ नगर पालिका समय समय पे तमाम और जैसे लाइसेंस शुल्क, इसके अलावा विज्ञापन शुल्क, पार्किंग शुल्क इत्यादि जगहों से हमारी आय होती है, तो वो सारी जिम्मेदारी और कर्तव्य हमारा रहता है कि उसको हम सुरक्षित उपलब्ध कराएं या संग्रहित करें।
1: बहुत अच्छी बात है, आपने कहा कि जो भी पैसा जाता है हाउस टैक्स से, वाटर टैक्स से, या आपने कहा कि पार्किंग का शुल्क हो गया,
2: जी,
1: तो ये आपके सोर्सेज होते हैं, ये स्रोत हैं जहां हाँ। से नगर पालिका को
2: राजस्व
1: मिलता है, और ये बोर्ड फंड
2: हाँ
1: जनहित में काम आता
2: हाँ,
1: है
2: जनहित में काम
1: जी। ये बहुत अच्छी बात आपने बहुत आसान से शब्दों में बताई। अगर मैं बोर्ड फंड की बात करूं तो मुझे लगता है कि कुछ आसान से शब्दों में आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि बोर्ड फंड का पैसा आखिर कहाँ कहाँ जाता है।
2: एक्चुअली जो बोर्ड फंड का पैसा होता है वो पूरे साल में कलेक्ट किया जाता है, और जितनी भी व्यवस्थाएं नगर पालिका में, जैसे शासन से जो निर्माण कार्य के लिए पैसा आता है उसके अतिरिक्त जो नगर पालिका को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए व्यवस्था की जाती है वो बोर्ड फंड के माध्यम से ही की जाती है। बोर्ड फंड मतलब वो होता है, नगर पालिका चूंकि होती है तो नगर पालिका परिषद एक बोर्ड है, एक हमारी एक व्यवस्था है और स्थानीय स्वशासन की प्रक्रिया है, तो यह अपने आप में एक सरकार है। जो नगर पालिका का बोर्ड है अपने आप में एक सरकार है और एक परिषद है यह, जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदया और उसके साथ हमारे 27 वार्ड मेंबर होते हैं जो उस बोर्ड फंड के माने वो होते हैं, और जिसमें अलसासी अधिकारी के माध्यम से उसका जनहित में उपयोग किया जाता है। तो निर्माण कार्य और जो शासन द्वारा समय समय पर निर्गत वो होते हैं बजट होते हैं, उसके अलावा जितने भी सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कार्य हैं वो बोर्ड फंड से।
1: बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सरलता से आपने बता दिया बोर्ड फंड का पैसा आता कैसे और जाता कहाँ है। सर, बहुत सारे लोगों को लगता है कि टैक्स भरना सिर्फ एक बोझ है, हम जो हाउस टैक्स या बॉर्डर टैक्स देते हैं उससे हमारे मोहल्ले और शहर को सीधा फायदा क्या मिलता है?
2: सीधा फायदा एक्चुअली कई बार हमें लगता है कि मैं ज़्यादा टैक्स दे रहा हूँ और हमारे वहाँ तो कोई काम नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो सभी शहरवासियों से कलेक्ट किया जाता है, और यह उसी तरीके से व्यवस्था है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक और पाले पोसे सब अंग। तो हम जो पैसा पाते हैं या जो पैसा बोर्ड फंड में आता है हमें उन जगहों पे भी खर्च करना होता है जहां आवश्यकताएं हैं। वो जरूरी नहीं कि आपके घर में वो पैसा हम आपके सामने की सड़क बनवाने में खर्च करें, लेकिन ये पूरा जो नगर पालिका क्षेत्र है उस नगर पालिका क्षेत्र में अलग अलग जगह जो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, कहीं नाली टूटी हुई है, कहीं सड़क टूटी हुई है, कहीं स्वच्छता की व्यवस्था है, कहीं पेयजल की व्यवस्था है, कहीं रोड पे लाइट की व्यवस्था है, तो इन व्यवस्थाओं में जैसे पैसा सब जगह से कलेक्ट किया जाता है, कोई ज्यादा देता है कोई कम देता है, लेकिन उन सारे पैसों का बराबर रूप से सब जगह उपयोग किया जाता है। तो कई जगह जहां विकास कार्य ठीक है उसके अलावा जहां विकास कार्य में पिछड़े हुए मोहल्ले हैं या जो विकास कार्य के लिए पिछड़े हुए जगह हैं उन जगहों पे वो पैसा लगता है, तो पैसा कलेक्ट करके मैं बाकी जगह लगाता हूं। आपका टैक्स जो होता है उसी टैक्स से व्यवस्थाएं चलती हैं, तो टैक्स इसलिए बहुत आवश्यक है, और यह किसी सर्विसेज के बदले नहीं है। एक्चुअली क्या है कि संविधान में जब स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था लाई गई 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा, तो उसी में टैक्स की व्यवस्था की गई, तो यह संविधान हमको प्रदत्त करता है शक्ति टैक्स लगाने के लिए, और जितने भी तरीके के आप टैक्स देते हैं उसके बदले डायरेक्ट कोई आपको सुविधा नहीं देता है। जैसे इनकम टैक्स हम देते हैं तो सरकार हमको तुरंत कुछ व्यवस्था नहीं दे देती कि इनकम टैक्स दिए तो आपके खाते में इतना रुपया तुरंत दे देगी या जो आपकी व्यवस्था दे देगी, लेकिन उसके बदले इस देश की जो व्यवस्था चल रही है, इस देश में जो भी सरकारी व्यवस्था चल रही है, सरकारी हॉस्पिटल की हो या सरकारी विद्यालयों की हो या रोड हो, सड़कें हो, पानी हो, इन सारी व्यवस्थाओं को सरकार वो हमारे ही आपके पैसे से कर रही है, चाहे वो इनकम टैक्स का हो या GST के रूप में हो या कमर्शियल टैक्स के रूप में या हाउस टैक्स वाटर टैक्स के रूप में। तो हाउस टैक्स वाटर टैक्स का कलेक्शन तो चूंकि हमारे ही, हमने आपको बताया कि हमारा जो बोर्ड होता है स्थानीय शासन के अंतर्गत सरकार होती है
1: जी,
2: तो वह पैसा हम आप ही से लेते हैं और सभी शहरवासियों के लिए खर्च करते हैं।
1: बिल्कुल, आपने भी एक कहा था, एक लाइन बोली कि कुछ कम देते हैं कुछ ज्यादा, जरा हाँ, इस कम और ज्यादा को डिफाइन करिए।
2: इस कम और ज्यादा का तात्पर्य है कि जो आवासीय है जिसका जितना टैक्स बनता है, जैसे आवासीय का टैक्स अलग बनता है, कमर्शियल का टैक्स अलग बनता है, तो कमर्शियल को लगता है यार मैं तो बहुत ज्यादा टैक्स दे रहा हूँ, मैं 4 गुना 3 गुना पे कर रहा हूँ, और जो आवास वाले लोग हैं उनका कम टैक्स लग रहा है। तो यह ऐसी व्यवस्था है कि जो जैसा जिसकी व्यवस्था रहती है उसी हिसाब से नियम बनाया गया है, उसी हिसाब से गजट में प्रावधान है कि कमर्शियल से ज़्यादा टैक्स की व्यवस्था है, आवासीय से कम टैक्स की व्यवस्था है, और जिनका जैसा मकान रहता है, जैसे मकान के आधार पर यह टैक्स वर्कफिट के स्क्वायर फिट के आधार पर इसकी गणना की जाती है, तो जिसका जैसा आंकड़ा निकलता है, छोटा मकान है तो कम देता है, ज़्यादा बड़ा मकान, अब एक ही मोहल्ले में 50 मकान है सपोज दैट, 50 में 10 मकान बड़े हैं, 40 मकान छोटे हैं, तो 10 मकान ज्यादा पैसा दे रहा है टैक्स के रूप में, वह कहे नहीं हमारे सामने की सड़कें केवल बननी चाहिए, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। हम उस 50 मकान से पैसा लेंगे और किसी से कम लेंगे, किसी से ज्यादा लेंगे, जो 40 मकान छोटे वाले हैं उनसे हम कम पैसा लेंगे, जो 10 मकान हो सके उस 40 मकान का जितना मिला के दे रहा हूँ उसमें से 10 में से 5 मकान वाला दे रहा हो,
1: बिल्कुल,
2: लेकिन हम जब सड़क बनाएंगे तो उस पूरे पैसे से बनाएंगे, नाली बनाएंगे तो उस पूरे पैसे से बनाएंगे, रोड लाइट लगाएंगे तो उस पूरे मोहल्ले के लिए लगाएंगे,
1: जहां रिक्वायरमेंट
2: होगी। तो यही व्यवस्था है, कोई कम कोई ज्यादा देता है, लेकिन हमें खर्च सब पे बराबर करना है।
1: जी, तो इस वक्त जो श्रोता आपको सुन रहे हैं और वो ये जानना चाहें कि मान लीजिए एक आम आदमी इस शो को सुनते हुए कि भाई हमको टैक्स कैसे पता करना है कि हमारे घर के लिए अभी फिलहाल कितना टैक्स हुआ है, जो बिना किसी एजेंट के आराम से पता कर सके, कैसे पता कोई कर सकता है?
2: टैक्स पता करने के लिए आपको किसी भी एजेंट की आवश्यकता नहीं है। मोस्टली हमारा प्रयास रहता है कि हम सभी जो भी हमारे आवासीय या कमर्शियल लोग हैं उन तक हम स्वयं अपना बिल और नोटिस अपने कर्मचारियों के माध्यम से, जो हमारे नगर पालिका के कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से उन तक पहुंचवाते हैं। चूंकि कर्मचारियों की संख्या भी सीमित है, हमारा प्रयास रहता है कि हम 100% पहुंचाएं, लेकिन जिन कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पाया और वो अगर टैक्स जमा करते हैं तो कहीं एजेंट और कहीं मत जाने की आवश्यकता। और नगर पालिका परिषद गोंडा की ऑफिस है जो पांडे बाजार पुलिस चौकी के बगल में है, मेन ऑफिस, वहाँ पर आएँ। वहाँ पर कर विभाग है, कर विभाग में मैं बैठता हूँ सुबह से लेकर शाम तक, और हमारे सारे लिपिक और राजस्व निरीक्षक बैठते हैं, वो संबंधित वार्ड के लिपिक से पूछ लेंगे, वो उनका टैक्स देख के बता देगा कितना उनका बकाया है, और जो बकाया उनका रहे उस बकाया को वो जमा कर दें। हम उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं, हम ऑनलाइन करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप जो है ई नगर सेवा पोर्टल है जो पूरे उत्तर प्रदेश में है, उस पोर्टल के माध्यम से भी अपना टैक्स आप ऑनलाइन देख सकते हैं, पारदर्शिता के साथ रहेगा।
1: ये बड़ी अच्छी जानकारी दी है कि आने वाले टाइम में जैसे हम अभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर लेते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर लेते हैं, उस तरह से अब हमको हाउस टैक्स या वाटर टैक्स के लिए जाने की भी जरूरत नहीं होगी।
2: नहीं नहीं नहीं,
1: पोर्टल के माध्यम से
2: अगर आप मोबाइल चला रहे हैं या कंप्यूटर चला रहे हैं तो उस मोबाइल में सिंपल सा एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा, ई नगर सेवा पोर्टल है, ऐप है जी। उसको डाउनलोड करेंगे आप, नगर पालिका गोंडा का चयन करेंगे और उसके बाद अपने संबंधित वार्ड का चयन करके, अपने मोहल्ले का चयन करके अपना हाउस नंबर केवल डालेंगे, आपका जो भी बकाया है, आपका जो भी टैक्स है वो आपके सामने निकल आएगा। और ऐसी व्यवस्था हम लोग बनाएंगे कि वो उस पर काम चल रहा है, लगभग 80-90% काम लगभग पूरा हो चुका है और वो बस लाइव आना बाकी है डेटा, और जैसे ही लाइव आता तो उस पर आप जितना भी आपका बकाया है आप अपने घर से बैठ के मोबाइल से पे कर सकते हैं, तो उसी ऐप के थ्रू से।
1: आपने कहा कि ऑनलाइन हम जाके पे कर सकते हैं, एक तरह से ये फैसिलिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक सवाल फिर ये भी आता है कि कई लोग होते हैं जिनका काफ़ी वक्त से बकाया रहता है
2: जी,
1: और उन पर काफ़ी ज़्यादा पेनाल्टी भी लग जाती है, तो वो सेटलमेंट ऑनलाइन में कैसे हो पाएगा?
2: जी, जी।
1: और अभी मान लीजिए जब तक ये व्यवस्था लागू नहीं भी है और ऐसी किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो क्या कोई प्राविधान होता है, क्या सेटलमेंट होता है?
2: एक्चुअली क्या है कि अभी जो हमारा बकाया रहता है उस पर हमारे वहाँ नियमावली के अनुसार ब्याज का प्रावधान है
1: जी,
2: कि अगर आपका जो बकाया रहता है उसमें ब्याज का प्रावधान है, या कई लोगों का ये रहता है कि हमारा टैक्स ज़्यादा लग गया है, गलत बन गया है, तो दो अलग अलग बातें हैं। तो पहले हम ब्याज पे बात कर लेते हैं। ब्याज के लिए सभी नगरवासियों के लिए ये बहुत खुशी की बात है, और पूरे प्रदेश में यह अभी हमारे नगर विकास विभाग द्वारा एक व्यवस्था चल रही है वन टाइम सेटलमेंट की। जैसे बिजली विभाग में आप सुने होंगे कि वन टाइम सेटलमेंट की, तो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के थ्रू आप अपने पुराने जितने भी बकाए हैं ब्याज के, उस पर ब्याज मुक्त कर दिया गया है, यानी कि उस पर ना कोई अधिभार, ना कोई सरचार्ज, ना कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, केवल आपका जो गृहकर और जलकर का मूल रुपये है वही केवल आपको जमा करने होंगे। तो वह अभी स्कीम चल रही है जिसका लास्ट डेट है 15 दिसंबर तक। आप 15 दिसंबर तक उसमें अप्लाई करेंगे और वो डायरेक्ट आप साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल पे आपकी ओटीपी आएगी, अपना हाउस नंबर डालिए, अपना डेटा फिल करिए, वो हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा, हम उसको चेक करेंगे, क्रॉस चेक करने के बाद आपका ब्याज शून्य हो जाएगा और आपकी वहीं पर एक स्लिप जनरेट हो जाएगी जहाँ पर आप पैसा अपना जमा कर सकते हैं। अभी यह ब्याज के लिए चला। दूसरा, अगर कई बार लोगों को लगता है कि मेरा पैसा ज़्यादा लग गया है, टैक्स ज़्यादा लग गया है
1: जी,
2: तो उसके लिए आप लिखित रूप में आपत्ति का प्रावधान है, जो आप नगर पालिका परिषद कार्यालय में आके अपनी आपत्ति दाखिल कर सकते हैं, उसको मैं संबंधित राजस्व निरीक्षक से जांच करवा के सही करवाने की व्यवस्था है, तो हो सकता है।
1: मतलब ये दोनों तरह के केसेस के लिए
2: जी
1: उसका सलूशन मिल जाए।
2: हाँ, लेकिन जो बकाया है, हमारा भी निवेदन है सभी नगरवासियों से कि अपने बकाए को समय से उसे समाप्त कर लें, चूंकि बकाया रखना ठीक नहीं है, तो सरकारी बकाया है उसको समय से जमा करके खत्म कर लें।
1: बिल्कुल, और आपने डेट भी बता दिया है कि 15 दिसंबर 2026।
2: हाँ, तब तक ब्याज मुक्त आपका पैसा जमा हो जाएगा।
1: बिल्कुल। सो हमारे श्रोता जो इस वक्त लाइव सुन रहे हैं उनसे भी हम भी यही अपील करेंगे कि अगर आपका कोई हाउस टैक्स या वाटर टैक्स बाकी है तो जैसा कि हमारे कर निर्धारण अधिकारी जी ने बताया है कि भाई इसका एक समय सीमा दी गई है 15 दिसंबर 2026, तब तक वन टाइम सेटलमेंट में आप करा लें तो आपके लिए भी बेहतर होगा और शायद आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत भी फिर नहीं होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक बड़ा कह सकते हैं कि विडंबना है, बड़ी समस्या देखी जाती है जब कोई मकान खरीदता या बेचता है
3: जी,
1: तो अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो ऐसा लगता है मुझे कि बहुत बड़ी चीज़ है मकान, मतलब बड़ा पेचीदा चीज़ है, कागज़ पे कागज़ दाखिल खारिज होता है और इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं कि उसमें इंसान सोच पड़ जाता है। लेकिन अगर मैं एक छोटी सी बात करूं, दाखिल खारिज जो कि नगर पालिका से जुड़ा हुआ है,
3: जी
1: तो दाखिल खारिज कराने में कई बार लोग सालों साल चक्कर काटते हैं। मैं बस आपसे ये जानना चाहूंगा कि इसका सबसे आसान तरीका क्या है।
2: वो जानकारी के अभाव में कई बार ऐसा होता है, या कई बार दाखिल खारिज जो खारिज दाखिल होती है उसको, यह उर्दू शब्द है, इसको हिंदी में नामांतरण बोलते हैं, इंग्लिश में म्यूटेशन बोलते हैं, यानी कि नाम परिवर्तन कराने की प्रक्रिया। खारिज दाखिल मतलब एक लोग का नाम खारिज होगा और जो नए क्रेता रहेंगे उनका नाम चढ़ जाएगा। खारिज दाखिल दो तीन तरीकों से होता है। एक तो वरासत के आधार पर होता है कि किसी की डेथ हो गई, उनके जितने भी वारिसान उनका नाम आ जाए। दूसरा एक प्रक्रिया होती है कि बैनामे की जमीन है तो बैनामे के आधार पे, कई बार गिफ्ट डीड भी होता है तो भी रजिस्टर्ड रहता है, या कोई वसीयत के आधार पे रहता है तो वहाँ से खारिज दाखिल कराने की आवश्यकता पड़ती। तो अगर वरासत के आधार पे है तो उसकी सिंपल सी एक प्रक्रिया है, जिस भी व्यक्ति के नाम नगर पालिका में वो संपत्ति दर्ज है पता कर लें किसके नाम दर्ज है, या आपको पता ही होगा, आप पे बिल गया होगा या आप पे रसीद कटी होगी तो पता ही आपके पास ही होगा। उस व्यक्ति का अगर नाम हटवाना है, वरासत में चढ़वाना है, तो उस व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट, चूंकि उसकी मृत्यु के पश्चात ही ये प्रक्रिया होगी, तो उस व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट, इसके अलावा परिवारजन प्रमाण पत्र ताकि उसके जितने वारिसान हैं हमें पता चल जाए, और एक 10 रुपए की नोटरी जो आती है, जितने भी परिवारजन प्रमाण पत्र में जितने सदस्य हैं सबकी नोटरी, और सभी लोगों का आधार कार्ड, और आधार कार्ड हस्ताक्षरित रहे, और नगर पालिका आकर एक फार्म भरना होता है जिसको हम नामांतरण फार्म कहते हैं या खारिज दाखिल का फार्म कहते हैं। उस फार्म को भरने के बाद, आप जैसे ही वो फार्म भरने के बाद फीस कटवाते हैं तो संबंधित लिपिक के पास पत्रावली जाती है। संबंधित लिपिक उस पत्रावली पे अपनी आख्या बना के देता है कि फला वार्ड का है, ऐसा ऐसा विषय है और यह कागज आए हुए हैं, इस आधार पर दाखिल खारिज होगी। उसमें फिर मेरी आवश्यकता पड़ती है तो मैं संबंधित राजस्व निरीक्षक, जो उस वार्ड के राजस्व निरीक्षक, उनको मार्क करता हूँ कि जाके मौके की जांच करें भौतिक आधार पे, क्योंकि हमारे वहाँ कोई भी खारिज दाखिल बिना भौतिक जांच के नहीं होती है
1: जी।
2: तो आरआई मौके पे जाते हैं, बताते हैं कि जिन लोगों ने आवेदन किया है उनका मौके पे कब्जा है। उसके पश्चात मैं सभी लोग को सार्वजनिक नोटिस इशू करता हूँ, जितने उसमें परिवारजन में जितने भी सदस्य रहते हैं सभी लोगों को, ताकि उसमें किसी प्रकार की धोखाधड़ी या ऐसी गुंजाइश न रहे, और पेपर में प्रकाशन किया जाता है, जिसकी समय सीमा नोटिस की 1 माह होती है और पेपर प्रकाशन का समय सीमा 15 दिन होता है। उसके पश्चात, यह 1 माह और 15 दिन के पश्चात आपकी पत्रावली मेच्योर हो जाती है। लेकिन अभी गोंडा नगर पालिका की ऐसा वो है कि इसमें बोर्ड में फाइनल डिसीजन होता है, बोर्ड में स्वीकृत किया जाता है वो प्रस्ताव। तो आपका प्रस्ताव इतना तक होने के पश्चात आपकी फाइल में चोर हो जाती है, आपकी दाखिल खारिज की प्रक्रिया जो अधिकारी के स्तर से होना रहता है वो पूरी हो जाती है। उसमें फिर फाइनल मेरी साइन हो जाती है कि बोर्ड में रखने के लिए, ईओ साहब की और चेयरमैन मैडम की अभी वर्तमान में। उसके पश्चात जब भी अगली बोर्ड बैठक अग्रिम होती है उसमें उस पत्रावली को रख दिया जाता है। माननीय बोर्ड का जैसा भी आदेश होता है, अगर वो स्वीकृत कर दी जाती है तो ठीक, अस्वीकृत कर दी जाती है तो जो जिस भी आधार पर अस्वीकृत की जाती है उस कमी को दूर करके, उसको रिजॉल्व करके, या उस आपत्ति का निस्तारण किया जाता है। अगर किसी पे कोई आपत्ति आ गई इस दौरान तो उसकी जनसुनवाई होती है। जनसुनवाई के दौरान उस पे जो भी नियमानुसार होता है, जो भी शासन या नियम के अनुकूल व्यवस्था दी गई है उसके अंतर्गत सुनवाई के पश्चात उसमें आदेश किया जाता है। यह वरासत के आधार पे है। बैनामे के आधार पे भी यही प्रक्रिया है। बैनामा आप लगा लें जिससे खरीदे हैं, आधार कार्ड लगाने के बाद एक एफिडेविट लगा दें, अप्लाई कर दें, प्रक्रिया सेम रहती है। मौके पे कब्जा चेक कर लिया जाएगा, कब्जा चेक करने के बाद नोटिस जारी कर दी जाएगी। अगर किसी को कोई आपत्ति होगी तो आपत्ति आएगी तो उसका सुनवाई होगा, आपत्ति नहीं आई तो फाइल में चोर होने के पश्चात बोर्ड बैठक में रखी जाएगी। बोर्ड बैठक में जब भी बोर्ड बैठक होती है तो स्वीकृत हो जाएगी। एक समस्या जो आती है कि जनरली बोर्ड बैठक थोड़ा सा विलंब से कई बार होती है
1: जी।
2: तो उस चीज के लिए अब आगे यह प्रयास है कि बोर्ड बैठक में चूंकि हमारी नगरपालिका एक्ट जो है 1916 उसकी धारा 112 में प्रावधान है कि वो बोर्ड अपनी शक्ति को प्रत्याभूत कर सकता है, ईओ या चेयरमैन को माने उस चीज के लिए प्राधिकारी नियुक्त कर सकता है। तो बोर्ड ने प्राधिकारी नियुक्त कर दिया है ताकि लोगों का दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया है ये जनहित गारंटी के अंतर्गत आती है कि 45 दिन में इसको कंप्लीट होना आवश्यक है
1: जी।
2: तो वह अब प्रक्रिया आसान बनाने के लिए उस पर भी कार्य चल रहा है। वो जब भी फाइनलाइज हो जाएगा, उस आपत्ति के लिए भेजा गया उसमें कोई आपत्ति नहीं आई है, तो जब भी वो फाइनलाइज हो जाएगा हम लोग उस पर भी कार्य कर रहे हैं कि फिर वो चेयरमैन मैडम की साइन होने लगे तो बोर्ड की प्रत्याशा में पत्रावली आपकी लंबित ना रहे, तो वह प्रक्रिया हो जाएगी। तो फिर आप जो है 45 दिन के अंदर देखेंगे कि ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन हाँ, उसमें कहीं एजेंट और बिचौलिए के चक्कर में नहीं पड़ना है, वो नगर पालिका कार्यालय आके। और दूसरी एक बात हम बताएं, ई नगर सेवा पोर्टल जो चालू हो रहा है वहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे और वहीं से पूरी जांच होगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ऑनलाइन फीस कटवाइए, आपको नगर पालिका आने की जरूरत नहीं, नगर पालिका स्वयं आपके द्वार पर जाएगी, चेक करेगी मकान पर आपका कब्जा है तो फिर उस पर रिपोर्ट लगाएगी और 45 दिन के अंतर्गत वो प्रक्रिया पूरी होनी है क्योंकि ऑनलाइन उसकी मॉनिटरिंग होती है, तो 45 दिन के अंतर्गत आपका प्रक्रिया पूरा हो जाएगा, खारिज दाखिल जिसे बोलते हैं। तो अब वो उतना टफ नहीं है, धीरे धीरे उसमें प्रयास किया जा रहा है कि उसको आसान बनाया जाए।
1: बिल्कुल, एंड बहुत ही आसानी से आपने बताया
2: जी,
1: ऑफ कोर्स, और ये बड़ी अच्छी बात है कि लोग आसानी से जान गए हैं। तो चलिए फिलहाल एक छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का टाइम हो गया है, वापस से आने वाले हैं। एक बड़ा अहम सवाल है कि लोग अपने दुकानों के आगे एक छोटी सी दुकान और लगवा लेते हैं या अपने घरों के आगे, जिसको लेकर के टैक्स से जुड़ी कुछ बातें हमें पूछनी है अपने आज के एक्सपर्ट से। लेकिन आइए पहले इस ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस से आते हैं, फिर बताते हैं कि आखिर इस बात का निराकरण क्या है।

0: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 901-935-5394 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप। आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं। सो एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है आपके अपने गौधुली शो में। और जाने से पहले, चूंकि हम एक बहुत ही अहम सवाल कर रहे थे हमारे राजस्व निर्धारण अधिकारी से, सर जाने से पहले हम पूछना चाहते थे आपसे कि जैसे गोंडा है, बहराइच है, आसपास के या कोई भी छोटे जिले हैं,
1: जी,
0: वहाँ जब कोई पुराना मकान खरीदता है या नया बनाता है
1: जी,
0: तो उसका दाखिल खारिज को लेकर के आपने सारा नियम बता दिया है, लेकिन ऐसा होता है कि अक्सर लोग छोटी दुकान खोल लेते हैं घर के आगे
1: जी,
0: या फिर एक कमरा किराए पर दे देते हैं
1: जी,
0: तो क्या ऐसी सूरत में उनका पूरा घर कॉमर्शियल टैक्स में चला जाता है या सिर्फ उसे कमरे का टैक्स बदलता है?
1: नहीं नहीं, केवल उस कमरे का टैक्स बदलता है। और मेरी यह अपील भी है नगरवासियों से कि अगर बीच में, पहले आपका आवासीय अगर टैक्स लगा हुआ है, तो अगर आप एक कमरा दे रहे हैं तो उसको बता दें कि मैं इतना कमरा किराए पे दे रहा हूँ। अगर आपने रजिस्टर्ड किरायानामा करा रखा है तो रजिस्टर्ड किरायानामे की एक कॉपी लगा दें, ताकि उसी एक कमरे पे आपका टैक्स लग सके। और अगर पहले से है कि किसी का एक कमरे में केवल दुकान है या दो कमरे में, तो हमारे वहाँ मिक्स्ड प्रॉपर्टी होती है जिसमें आवासीय और अनावासीय दोनों होता है। तो जितना आपका एरिया कमर्शियल का है उतने पे केवल कमर्शियल का टैक्स लगेगा, और जितना नॉन कमर्शियल यानी कि आवासीय है, रेजिडेंशियल है, उस पर रेजिडेंशियल का टैक्स लगता है।
0: अच्छा, ये बात तो समझ में आई कि आपने कहा दोनों का प्राविधान है
1: जी,
0: पर अक्सर मुझे लगता है कि शायद कई बार लोग इसलिए नहीं बताते होंगे कि भाई बिला वजह हमारा टैक्स बढ़ जाएगा।
1: हाँ हाँ,
0: तो ऐसी सूरत में मान लीजिए कि कोई छिपा के रखा है, टैक्स नहीं दे रहा है
1: जी,
0: ठीक है, राजस्व की हानि हो रही है एक तरफ, लेकिन नहीं देने वाले को लग रहा है उसका फायदा हो रहा, बचा रहा है
1: जी,
0: पर उसको मुसीबत किन परिस्थितियों में आ सकती है?
1: यह गलत है। एक्चुअली क्या है कि हम जो चीज छिपाते हैं, तो जैसे विद्युत का है कि कई बार चोरी से आप कनेक्शन ले लेंगे, तो सरकार ने वो व्यवस्था बना रखी है, पालिका, इसीलिए मैंने कर्मचारियों को बैठा रखी। हमारे राजस्व निरीक्षक होते हैं और हमारे TC होते हैं जो टैक्स कलेक्टर होते हैं, कर समाहर्ता, वो आपके घर घर और वार्ड में जाते हैं, उनका वार्ड डिसाइडेड है, और समय समय पे चेकिंग का कार्य हमारे द्वारा भी स्वयं किया जाता है। तो कई जगह ऐसा देखने में आता है कि लोग आवासीय बताए हुए हैं या पहले से आवासीय चला, बीच में फिर उसमें एक दुकान खुल गई, तो फिर राजस्व निरीक्षक हमको रिपोर्ट करता है कि फला व्यक्ति या फला मकान ऐसा है, और उसके आधार पे फिर हम आपको एक नोटिस भेजते हैं कि आपकी जो वर्तमान परिस्थिति हो उसके आधार पे हमें सूचित कर दें, अपना स्वकर निर्धारण फॉर्म फिर से भर के भेज दें, ताकि हम उसका सही से निर्धारण कर सकें। यदि आपके द्वारा वो निश्चित समय में नहीं किया जाता है, तो हम बाह्य आधार पे उस पे टैक्स अधिरोपित कर देते हैं, और वो संबंधित राजस्व निरीक्षक जाते हैं और राजस्व निरीक्षक के माध्यम से उस पे एक टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं और हमारे पास लाते हैं। तो हम जांच के पश्चात देखते हैं, अगर सब कुछ सही है और उनकी बात सही है राजस्व निरीक्षक की, तो हम उस टैक्स को फाइनल कर देते हैं, बाय आधार पे वह टैक्स लग जाता है। तो कोई इससे बच नहीं सकता है, तो ज्यादा बेहतर है कि आप समय से ईमानदारी से बता दें, उस पे फिर जुर्माने का भी प्रावधान है।
0: करेक्ट, तो वही हम कहना चाह रहे थे,
1: तो गलत पे तो जुर्माने का प्रावधान
0: होता ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई देख नहीं रहा है,
1: नहीं,
0: बल्कि कब आपको देख लिया जाएगा पता नहीं,
1: पता आपको नहीं पता चलेगा तो वो देख लिया जाता है।
0: ऑलराइट, तो ये जानना जरूरी है हमारे उन श्रोताओं के लिए, अगर ऐसा कुछ भी है तो आप पहले ही चूंकि सूचित कर दें नगर पालिका की इस बॉडी को, और अपना जो भी मिक्स्ड जैसा कि आपने बताया
1: हाँ,
0: प्रॉपर्टी
1: उसमें अपना दर्ज करा लें,
0: उसमें दर्ज करा लें। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। अब थोड़ा सा चलते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया की तरफ, यानी डिजिटल साक्षरता की तरफ। तो हमारे जो छोटे से शहर है यानी गोंडा की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे लोग मोबाइल से ऑनलाइन अपना हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं क्या? अभी अभी ऐसा कोई पोर्टल या कोई ऐप है फिलहाल?
1: अभी अगर आपका बकाया ज्यादा है और आपने 2025 के बाद कोई टैक्स नहीं जमा किया है, तो आप 25-26 और 26-27 का टैक्स ऑनलाइन अपने मोबाइल से OTS पोर्टल, अभी जैसा मैंने आपको बताया पिछली बातचीत में कि वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम चल रही है, उसके अंतर्गत आप OTS पोर्टल से अपना टैक्स जाके फिल कर सकते हैं और उसको हमारे वहां से अप्रूव हो जाएगा, उसको फिर आपकी रसीद जनरेट हो जाएगी, आप ऑनलाइन पैसा जमा कर सकते हैं। इसके बाद जब OTS की समय सीमा समाप्त हो जाएगी, इसके बाद तब तक हमारा प्रयास है कि मैं ई नगर सेवा पोर्टल पे टोटल हमारा डेटा लाइव हो जाए, उसके बाद आप अपने टैक्स को घर बैठे ई नगर सेवा पोर्टल ऐप के माध्यम से या इस वेबसाइट के माध्यम से जा करके अपना संबंधित वार्ड का चेक करके, नगर पालिका परिषद गोंडा सेलेक्ट करेंगे, उसका संबंधित वार्ड सेलेक्ट करके, अपना मकान सेलेक्ट करके, आप वहां से भी पैसा अपना ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। तो प्रक्रियाधीन है अभी, अभी तो खैर कार्यालय से ही होता है लेकिन प्रक्रियाधीन है।
0: नहीं, बहुत अच्छी बात आपने बता दी है। और इसके अलावा मैं चूंकि एक दो चीज़ें और जानना चाहूँगा, आपने कहा था कि होल्डिंग से संबंधित भी बात है कुछ।
1: जी,
0: तो अक्सर ये लोग जब बड़ी बड़ी होल्डिंग्स देखते हैं गोंडा में
1: जी
0: सोचते हैं कि यार हम भी एडवर्टाइज करा लें,
1: हाँ, हाँ,
0: और फलाने की इतने दिन चली थी होल्डिंग, हाँ, हाँ, इनकी इतना जल्दी क्यों हट गई, या हम देखते हैं चेंज होती रहती है।
1: हाँ, होती रहती है।
0: तो क्या इसका भी कोई किराया पड़ता है? पड़ता है तो कैसे पड़ता है और कौन देखता है इसे?
1: हाँ, एक्चुअली क्या है कि नगर पालिका परिषद गोंडा में 86 होर्डिंग की साइट्स है और यूनिपोल की साइट्स है, इन दोनों के लिए हर साल आपके मार्च महीने के पहले टेंडर निकलता है।
0: अच्छा
1: जी, मार्च महीने के लास्ट मतलब मार्च महीने के अंतिम तक टेंडर निकलता है, तो हर एक वित्तीय वर्ष में उसका टेंडर निकलता है
0: जी।
1: तो टेंडर के दौरान उसको पारदर्शी प्रक्रिया से पूरा उसका टेंडर निकलता है, जितने भी टेंडर्स हमारे पास आते हैं उसमें से जो हाईएस्ट बोली जो बिडर रहते हैं उनको फिर टेंडर, ऑनलाइन प्रक्रिया रहती है, हाईएस्ट बिडर को अपने आप चूज कर लिया जाता है, वहां से फिर उनको टेंडर स्वीकृत हो जाता है इतने साइट्स के लिए। फिर वो संबंधित जो ठेकेदार होते हैं यानी कि संबंधित जो जिनको भी टेंडर मिलता है, फिर उनके ऊपर वो निर्धारित करता है कि जितने भी लोगों को होर्डिंग लगवानी रहती है उनसे संपर्क करता है और फिर उनको मंथली उनका जो भी चार्ज है वो पे करता है और वहाँ उनसे लगवाता है। हमारा जो उसका शुल्क होता है वो हर साल आपके पेपर में गजट होता है, प्रकाशित होता है, और हमारी प्रत्येक साइट के लिए एक निर्धारित मूल्य है और जिसमें हर साल 10% की बढ़ोतरी के साथ हम उसको रखते हैं, और जो भी लोग इसमें टेंडर प्रक्रिया में भाग लेते हैं वो उसमें पाते हैं, उसके बाद फिर उन्हीं के माध्यम से ये चीजें होती हैं, ताकि हमारा जो पैसा होता है राजस्व हम एक व्यक्ति से कलेक्ट कर लेते हैं,
0: बिल्कुल,
1: एक संस्था एक फॉर्म से कलेक्ट कर लेते हैं और वो फॉर्म फिर बाकी लोगों से
0: वन टू वन
1: करती है। इसके अलावा भी जिन लोगों को प्रचार करना होता है उसके अलावा, तो नगर पालिका में अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं, उनको अगर उस स्थान पे मानक के अनुरूप होगा तो उनको स्वीकृत कर दिया जाएगा, तो वो भी अपना कर सकते हैं, जिससे नगर पालिका के राजस्व की भी वृद्धि होती है और वो अपना प्रचार भी कर सकते हैं। लेकिन बिना पूछे और बिना यदि आप संबंधित माने जिस जो भी टेंडर प्राप्त किया है संबंधित फर्म से अगर आप प्रचार अपना नहीं करवाते हैं, अवैध रूप से अगर आप लगाए हुए हैं, तो कई बार हमारे पास शिकायतें आती हैं या स्वतः संज्ञान से हम कई बार जो देखते हैं उसके आधार पर उनको संबंधित को नोटिस भेजी जाती है और जुर्माने के साथ भेजी जाती है कि आप बिना परमिशन के या बिना स्वीकृत स्थान के आप अपना होर्डिंग ऐसा लगाएं जो शहर की सुंदरता और स्वच्छता को खराब कर रही है, उसकी वजह से आप पे इतना समन शुल्क भी अधिरोपित किया जाता है, वो जमा करना होता है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात कही। कई बार मुझे ऐसा लगता है कन्फ्यूजन भी हो सकती है कि जैसे आपने 86 ऐसे स्पॉट्स बताए हैं जहां नगर पालिका में होर्डिंग का प्राविधान है जहां आप लगवा सकते हैं, कब उसको माना जाता है ये होर्डिंग और कब उसको माना जाता है कि जो दुकान खोले है रोड साइड और वो अपने फर्म का नाम या अपनी दुकान का नाम लिख करके एक होर्डिंग लगा है,
1: हाँ,
0: मतलब किस तरह से इसको डिफरेंशिएट?
1: जो होर्डिंग की हमारी परमिटेड साइट्स है वो 20x10 की होर्डिंग की है जो प्रॉपर गाटर पे लगती है, उसके पॉइंट्स निर्धारित हैं जो हर साल पेपर में प्रकाशित भी किए जाते हैं और सार्वजनिक सूचना है, अभी भी आप नगर पालिका में मांगेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगी कौन कौन सी साइट्स है 86
0: जी।
1: इसके अलावा बड़े बड़े पोल पे जो यूनिपोल पे प्रचार होता है वह हमारे द्वारा स्वीकृत होता है, तो वह टेंडर निकलता है उसका हर साल। इसके अलावा जो लोग भी अपने दुकानों का प्रचार के लिए अपने स्वयं लगाते हैं, उसकी परमिशन लेके लगाते हैं। यदि परमिशन के द्वारा नहीं है तो अवैध है, फिर उस पे जुर्माने का प्रावधान है। यदि आपको लगाना रहे किसी को तो उसकी परमिशन नगरपालिका से ले ले। तो 20x10 की जो भी गार्टर पे लगी होती है या जो यूनिपोल पे लगी होती है, वह हमारी टेंडर और हमारी स्वीकृत साइटें हैं जो मानक के अनुरूप है, और उसकी संख्या सीमित है कि किस चौराहे पे कितनी लग सकती है और किस स्थान पे लगेगी। अगर वो उस स्थान से इतर है तो अवैध है, जिस पे कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी शिकायत प्राप्त होती है या स्वतः संज्ञान में आता है तो कार्रवाई की जाती है।
2: कई बार देखा जाता है चुनावी जनसभाएं होती है
1: जी,
2: और चुनाव का माहौल होता है, उसमें कई ऐसी होर्डिंग्स उन खंभों पे भी लग जाती है जिसपे कभी कोई होर्डिंग लगती नहीं है, या इस तरह के बैनर पोस्टर लटका दिए जाते हैं, तो क्या ये वैध होता है या
1: यह अवैध होता है? चूंकि कई बार बांस पे लग जाती है या कई बार वैसे बना के लोग टांग देते हैं होर्डिंग, उससे चूंकि हमारी नगर पालिका की जिम्मेदारी तो ओवरऑल है कि अभी 2-3 दिन पहले आंधी बारिश का मौसम था, तो उसमें अगर वो होर्डिंग किसी के ऊपर गिरती है तो उस वो भी माने ऐसी कोई खतरा या सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हमें ध्यान देना होता है, तो अवैध होती है। जो भी हमारे संज्ञान में आता है तो हम उनको नोटिस भी भेजते हैं, समन शुल्क के साथ भेजते हैं, और उसको हटवाने का भी समय समय पे हम अभियान चला के उसको सफाई करवाने का भी काम करते हैं, ताकि हमारा गुंडा स्वच्छ और सुंदर बना रहे।
2: बिल्कुल, तो ये बड़ी अच्छी और सही बात बताई आपने कि भाई कहीं ना कहीं जो अवैध होर्डिंग्स हैं वो किसी पे गिर रही हैं, किसी पे पड़ रही हैं और कोई हादसा हो सकता है
1: जी।
2: तो और जो वैध हैं, जो लीगल है, तो चूंकि वो मानक के अनुरूप है
1: हाँ।
2: तो इसलिए इस बात का ध्यान नगर पालिका देती है और इस बात का ध्यान हमको भी आपको देना जरूरी होता है। तो सर ये बात तो आपने बताई, अब कुछ अंतिम प्रश्नों की तरफ हम बढ़ने वाले हैं क्योंकि हमारा विदा लेने का वक्त भी आने वाला है जल्दी। तो सबसे पहले तो हम उस जनता के नाम संदेश आपका जानना चाहेगा कि जो लोग समय पर ईमानदारी से अपना टैक्स भरते हैं, क्या उनके लिए कोई कुछ खास डिस्काउंट ऑफर होता है?
1: जी।
2: जैसे कि मान लिया फाइनेंशियल ईयर्स की अगर कोई शुरुआत हाँ। में या फाइनेंशियल ईयर में टैक्स जमा करता है
1: जी, जी
2: कुछ ऐसा डिस्काउंट होता है?
1: हाँ जी जी जी, वो डिस्काउंट का प्रावधान किया गया है उनको प्रोत्साहित करने के लिए। जो लोग भी सेम फाइनेंशियल ईयर में टैक्स जमा करते हैं उन लोगों पे तो पहली बात तो ब्याज अधिरोपित नहीं किया जाएगा। दूसरा जो छूट का प्रावधान है, अगर ऐसे आवासीय उपभोक्ता हैं जो सेम फाइनेंशियल ईयर जैसे 26-27 चल रहा है, 26-27 में अपना टैक्स पे कर रहे हैं, तो यदि उनका मकान नया है यानी कि 10 साल से पुराना है तो उनको 25%, इससे 10 साल 20 साल के बीच का 32.5%, और जो 20 साल से पुराने मकान है उनको 40% तक हम ARV में छूट देते हैं, एनुअल रेंटल वैल्यू में छूट देते हैं, तो उनका टैक्स निश्चित रूप से कम लगता है बाकी लोगों की अपेक्षा। यदि आप समय से नहीं देते हैं तो छूट भी नहीं मिलती है और ब्याज अलग से अधिरोपित हो जाता है। तो समय से अपना टैक्स जमा कर दें वो जरूरी है। जो लोग भी हमारी बातचीत सुन रहे हैं उनसे हमारा आग्रह भी है, निवेदन है कि एक जागरूक नागरिक बने, एक जिम्मेदार नागरिक बने। उसके लिए जरूरी है कि यदि आप सेवाओं का उपभोग कर रहे हैं तो उसके लिए टैक्स भी आपका जो बन रहा है उसको पे करें, समय से पे करें।
2: बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और अभी तक मैंने जितने भी प्रश्न किए वो जनता की तरफ से जो उठने वाली शंकाएं थी, प्रश्न थे, सवाल थे, वो मैंने आप तक किए
1: जी।
2: अब मैं लास्ट में एक आपके पक्ष से मैं बातें जानने की कोशिश करने वाला हूं कि बतौर नगर पालिका बॉडी
1: जी
2: आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप क्या उम्मीद करते हैं गोंडा वासियों से, नगर वासियों से, और किस तरह से हम अपने नगर पालिका को सपोर्ट कर सकते हैं
1: जी?
2: क्यों? क्योंकि नगर पालिका हमारे शहर के लिए ही काम कर रही है, तो हमने से आप क्या उम्मीद करते हैं?
1: है क्या कि एक तो समय से कर जमा करें वो हमारी जिम्मेदारी है, दूसरा एक विषय मैं देखता हूँ कि जहाँ मेरा आवास है स्वयं भी, तो वहाँ जो लोग हैं कई बार इसी जनता को मैं देखता हूँ कि आसपास कि लोग अपने घर की खिड़कियों से ही अपना कूड़ा बाहर की तरफ फेंक दे रहे हैं, रोड पे फेंक रहे हैं, कहीं भी फेंक रहे हैं, जो खाली स्थान है वहाँ फेंक रहे हैं, किसी जगह पे कोई प्लाट है पानी भरा हुआ उसमें फेंक, जबकि हर एक वार्ड हर एक मोहल्ले में कूड़े की गाड़ियां जाती हैं समय से। इसके अलावा आपके नज़दीकी स्थान जहां भी आपका घर होगा उसके नज़दीकी स्थान 100-200 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा वो डस्टबिन रखी हुई है, नहीं रखी हुई है तो वो कंप्लेन करेंगे तो डस्टबिन आपके सामने रख दी। यह गोंडा है जिसको स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी हमारी है और साथ साथ आपकी भी है, तो आप भी अपने घर से निकले, जैसे मैं भी होता हूँ तो मैं अपने घर का कूड़ा अपने घर पे एकत्र करके डस्टबिन में एकत्र करके और उसको जब भी शाम सुबह आपको मौका मिले आप ले जाके डस्टबिन में डालें, आप ऐसे ही कहीं मत फेंकें। वो आप ऐसे ही फेंक देते हैं तो वो हमारे कल्चर का हिस्सा हो जाता है, बगल वाला भी फेंकता है। तो हमारे पास ऐसे बहुत से कूड़े हैं जिसको हमें नियोजित करना होता है, जो कि एक सही स्थान पे होते नहीं है। दूसरा, जो डस्टबिन भी होता है उसके आसपास कभी आप ध्यान देंगे या जो लोग भी हमारी बात को सुन रहे हैं, डस्टबिन में कूड़ा डालें, डस्टबिन के आसपास का वो पूरा कूड़ा अड्डा ना बनाए। तो कई बार ये भी रहता है कि आप गए और फेंक दिए, आप जाएं डस्टबिन के पास कूड़ा डालें। आप इधर उधर कूड़ा अगर फैलाएंगे तो जो हमारा जो कर्मचारी है जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है स्वच्छता की, आपके घर की स्वच्छता, आपके घर के कूड़े कचरे को उठा के ला रहा है, उसको निपटारा कर रहा है, वह एक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है, उसको भी परेशानी होती है करने में। तो शिकायत करने से पहले एक ध्यान यह भी रखें। दूसरा, एक जो समस्या रहती है कि हमारे सफाई में जो दिक्कत आती है, अतिक्रमण एक बड़ी समस्या रहती है। जैसे मैं कई जगह जांच पे जाता हूँ मोहल्ले में
2: जी,
1: तो नाली की समस्या है कि भैया नाली नहीं सफाई है, तो नाली सफाई करने की व्यवस्था के लिए कई बार हमें दिखता है हम जहाँ तक हमारा मकान है वहाँ तक हम पूरा घर बनवाए हुए हैं, उसके आगे हम स्लैब डाल दिए रोड पे जो नाली के ऊपर से होके जाता है, वो जो परमानेंट है, 100 मीटर का ऐसा स्लैब पड़ा हुआ है, पूरी नाली ढकी हुई है परमानेंट अतिक्रमण से,
2: तो
1: हम किसका तोड़वा दें, हम किसका स्लैब तोड़वा दें। हालांकि तोड़वाना भी हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन कई बार वो जनता उस चीज को समझती नहीं है कि नाली सफाई कैसे होगी अगर आप उसी पे अतिक्रमण कर रखे हैं।
2: बिल्कुल।
1: तो हमें जितना हमारी जमीन है वहां तक निर्माण करवाएं ताकि जो नाली की सफाई है वो भी हो सके, और हम एक सतर्क और जागरूक नागरिक बनेंगे तो हमारे लिए स्वच्छता अगर रहेगी तो वह आपकी स्वच्छता भी ठीक रहेगी, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा और आपका मन भी अच्छा रहेगा। तो हमारे स्वच्छता में हमारा सहयोग करें, बाकी नगर पालिका आपकी सेवा में हाजिर है।
2: क्या बात है, बड़ी ही प्यारी बात कही कि नगर पालिका हमारी सेवा में हाजिर है, और सबसे बड़ी बात आपने कही है क्योंकि इस बात को हम खुद भी समझते हैं। अक्सर घरों में खिड़की खुलती है, एक फट से आवाज आती तो देखो कोई पन्नी में गीला सूखा कचड़ा मिलके फेंक दिया जाता रोड के बीचों बीच में।
1: हाँ हाँ।
2: इससे गाड़ियों के स्लिप होने की, बच्चों के गिरने की, मतलब बहुत
1: और सारे गंदगी आप ही के लिए नुकसान कर रही है।
2: करेक्ट।
1: किसी के ऊपर आप फेंक दे रहे हैं कूड़ा, ऐसी माने आती है व्यवहारिक दौर में समस्याएं, किसी के ऊपर फेंक दे रहे हैं।
2: और बहुत सही कहा आपने कि एक तो गाड़ी की व्यवस्था है, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन होता है, और जाल जहाँ पे नहीं भी पहुंच पाती है तो वहाँ पे आपने बताया कि डस्टबिन की व्यवस्था तो है ही
1: है,
2: आपके 100 से 200 मीटर के एरिया में
1: है।
2: आपको डस्टबिन मिल जाता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि डस्टबिन है तो शायद उसका इस्तेमाल भी हमको वैसा ही करना चाहिए। अक्सर हमने देखा है सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग अलग लिखा होता है, उसके बावजूद भी लगता है कि कहीं भी डालो वो अपना अलग कर लें,
1: नहीं ऐसा हमें बचना चाहिए।
2: करेक्ट। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो भी आपने बताया ना कि उसको निस्तारित करना होता है, एक शब्द भी आपने बोला था, तो ये वजह वही है कि सूखा कूड़ा किस तरह से आगे निस्तारित किया जाता है, गीला कूड़ा कहाँ से काम आता है, उसको कैसे उसका निस्तारण होता है, इस बात को हमें और आपको भी समझना होगा ही। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि जब नगर पालिका हमारे शहर, हमारी गली, हमारे मोहल्ले, हमारे घर को साफ रखने में मेहनत कर रहे हैं या ये कहते हैं कि कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अपने ज़िले को, अपने मोहल्ले में, इवन अपने घर मोहल्ले को साफ रखें। और ये आपने कहा कि भाई आप अपनी जिम्मेदारी खुद समझ लीजिए, बाकी हम आपके लिए कोशिश कर ही रहे हैं, हाजिर है। तो ये बात सही है कि अगर एक साइड से आपका हाथ बढ़ा है, आप कर रहे हैं, तो हाथ मिलाने के लिए दूसरा हाथ बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन हाथ मिलेगा, जिस दिन हम स्वच्छ हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे उस तरह से, तो शायद इंदौर जैसा नाम गोंडा का भी आएगा,
1: जरूर आएगा,
2: और ज़रूर आएगा। इस कड़ी में लगातार बने भी हुए हैं सबके सब, और कोशिशें भी लगातार जारी है, हर साल इस तरह के व्यापक इंतजाम करने की कोशिश है। और बात बिल्कुल सही है कि अगर बारिश तेज़ होती है, आंधी तूफान आते हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं हम लोगों को नज़र आता है कि भाई पानी भर गया, उसकी फ़ोटो तो डाल करके हम फेसबुक पर टैग कर देते हैं, लेकिन हम उन मकानों को नहीं देखते हैं जो नाली के ऊपर तक बना लिए गए हैं, जिसमें किसी भी सफाई कर्मी का उतर करके उसको साफ़ करना मुमकिन ही नहीं है। तो ये बात तो आधी अधूरी है कि पानी भर गया, बात ये सोचना चाहिए कि पानी भरा क्यों, उसकी वजह हाँ। क्या थी, और जहाँ जहाँ कमियाँ हैं, जहाँ पे सच में इंजीनियरिंग की कमी है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उसको लेकर के आपका शिकायत का भी प्रावधान है कि आप जाएं।
1: लाजिम है, अगर कमी है, हमारी गलती है, तो उसके लिए हमें बोला जाए, लेकिन कुछ कमियाँ उस एंड से रहे तो उसको स्वयं भी सुधार किया जाए।
2: बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये बात बहुत इजीली समझ में आ गई होगी हमारे श्रोताओं को भी और हमको भी आ रही है। जैसे जैसे मैं इस बातों को कह रहा हूँ, मेरे जहन में खुद मेरे घर की चीज़ों को लेकर के, मेरे आसपास के लोगों के व्यवहार को लेकर के मैं अपनी तस्वीरें कुछ देख पा रहा हूँ। तो मेरी भी आज से और इसी शो के जस्ट बाद से कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा सफाई रख पाऊं अपने आसपास और अतिक्रमण जैसी चीजों से हमेशा हम बच पाएं। एंड बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इतना कीमती वक्त निकाल करके, क्योंकि आपका जो काम है वो दिन भर चलते रहना, लोगों से मिलना और निरीक्षण करते रहना, उसके बावजूद आपने इतना समय निकाला सिर्फ इस बात पे कि भाई गोंडा वासियों से आप बात कर पाएंगे इस शो के सहारे, उनके सवालों को आप ले पाएंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, और साथ ही साथ आपकी जो अपेक्षा है यानी नगर पालिका की जो अपेक्षा है इस शहर को बेहतर बनाने के लिए, उसको भी आप कह पाएंगे।
1: बहुत धन्यवाद, आपने एक प्लेटफॉर्म दिया, मौका दिया, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद और सभी गोंडा वासियों को हृदय से प्रणाम है और धन्यवाद है इस बातचीत को सुनने के लिए।
2: जी बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि श्रोताओं बता दें, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है श्री रत्नेश यादव जी, जो कि कर या राजस्व निर्धारण अधिकारी हैं, जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं टैक्स असेसमेंट ऑफिसर। सो सर थैंक यू सो मच वंस अगेन। और दोस्तों आपको ये शो कैसा लगा हमको चैट बॉक्स पे आकर के आप बता भी सकते हैं, लेकिन इसका फायदा तब होगा जब ये हमारी आदतों में शुमार हो जाएगा। फिलहाल बने रहिए गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM पर।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे बीना के साथ।
1: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
6: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
7: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
7: आज ही कॉल करें 9286 9876, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
6: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
7: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
4: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
7: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
4: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
7: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी करें 7234-020-202।
4: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
7: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
5: भारतीय डाक विभाग लाया है पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र योजना। इस योजना के तहत समस्त पेंशन भोगी अब घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए डाक विभाग के मोबाइल ऐप पोस्ट इन्फो के माध्यम से या वेबसाइट IPPBonline.com पर रिक्वेस्ट डालनी होगी और डाकिया आपके घर जाकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना कर देगा। साथ ही 10 वर्ष से कम बच्चियों का सुकन्या समृद्धि खाता डाकघर में अवश्य खुलवाए एवं बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करे। भारत सरकार ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान प्रमाण पत्र योजना का शुभारंभ किया था, जिसके तहत महिलाएं अधिकतम ब्याज के साथ बचत कर सकती हैं। ये सूचना अधीक्षक डाकघर गोंडा मंडल द्वारा जनहित में जारी।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
7: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
8: मतलब
7: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
8: इन समस्याओं के लिए निशुल्क डेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
7: अरे सुना?
8: क्या?
7: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
8: वाओ!
7: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जैन
9: नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
10: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
11: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
12: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
13: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
14: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
15: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
16: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
15: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
16: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
15: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरन नाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।

सारे शिकवे भुला के कहो और ये कहो कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम्हारे लिए ही हूँ और सिर्फ तुमको ही समय दूंगा। ऐसा कोई कह सकता है क्या? नहीं। तो भाई सभी का स्वागत है। कौन कौन कहाँ कहाँ से सुन रहा है, फटाफट से अपने बारे में बता दें। गुड इवनिंग, लाइव है आज भी ना आपके वाले शो गोंडा मैसेज मसाला में आप सभी का स्वागत है। और मैं भी आज बिल्कुल रेडी होके आई हूँ क्योंकि आज तो मंडे है यार। मंडे मीन्स यानी कि दिलों की बात, दास्तानों की बात और नए अंदाज। तो ये बात तो तय रहती है कि मंडे को सिर्फ बात नहीं होती, हर अंदाज को पढ़ने का दिन होता है और हर नए अंदाज में एक अपनापन छिपा होता है। मतलब कोई नई चीज़ अगर आपको अपनेपन जैसी लगे तो वो नई चीज़ तो खास ही हो जाती है। क्या बोलते हैं, खास ही नहीं मतलब खास हो जाती है। हाँ, कुछ शब्द हिंदी में भी ऐसे हैं जब उनको ध्यान से उच्चारण ना किया जाए तो अर्थ का तो अनर्थ हो ही जाता है। वैसे आप लोग बताइए कैसे हैं और कौन क्या क्या आज कर रहा है। आज की स्पेशल इवनिंग आप सभी को डेडिकेटेड है एंड गोंडा शहर में आज फिर पानी की फुहार पड़ गई है और बादलों ने अभी भी, मतलब कहते हैं ना, सीना तार के खड़े हैं और चीख के कह रहे हैं कि अभी तो बॉस मेरा टाइम नहीं हुआ जाने का, क्या तैयारी कर ली है क्या त्यौहार मनाने की, नहीं अभी तो बस मैं यहीं रहूँगा। तो अब इस बार मौसम थोड़ा सा मतलब सस्पेंस पे सस्पेंस डाल के आ रहा है। पर कोई बात नहीं, सस्पेंस को भी एक्सेप्ट करते हैं हम लोग क्योंकि हम इंडियंस हैं। कहते हैं ना, खतरों के खिलाड़ी हमें कहा जाता है। और अक्टूबर का महीना यानी कि बेस्ट महीनों में से एक है जिसमें खूबसूरत फूल आते हैं और ठंड की शुरुआत शुरू हो जाती है। आप लोग बताइए अक्टूबर के साथ आपकी भी कोई बॉन्डिंग है? मेरी तो बहुत तगड़ी वाली बॉन्डिंग है। वो रात रानी के फूल और उनकी शाम को वो महकती खुशबू और उस खुशबू में भीग जाना, आई लव अक्टूबर। इतना ही नहीं, अक्टूबर में इन खूबसूरत फूलों को इकट्ठा करके महसूस करना इनकी खुशबू, दैट्स द ग्रेट थिंग। तो चलिए आज आप लोगों से बात करते करते, मतलब पता नहीं कितनी बातें करने का मन कर रहा है। वैसे आज वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे है भाई, जिसने जिसके आर्किटेक्ट ने आपकी ज़िंदगी को झिंगा लाला बना दिया उन सबको थैंक्स कहने का दिन है। और भाई आज वर्ल्ड टीचर्स डे है भाई, दुनिया के शिक्षकों के लिए सेलिब्रेशन का दिन है। सो वर्ल्ड शिक्षक डे की यानी कि वर्ल्ड टीचर्स डे की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, विश्व शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। वैसे ये दिन क्यों मनाया जाता है इसके बारे में भी बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा बारिश वाला गाना सुन लिया जाए। मौसम बहुत सुहाना सा है और इस गुलाबी मौसम में एक गाना शाम गुलाबी वाला हो जाना चाहिए। वैसे गुलाबी तो नहीं है पर मेरा मन था कि चलिए गुलाबी गाना सुनते हैं और शाम को थोड़ा सा रंगीन बनाते हैं। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी शुद्ध देसी रोमांस, और जिसमें आपको दिख जाते हैं सुशांत वानी। और अगर मैं खूबसूरत आवाज़ की बात करूं कि इस गाने को आवाज़ किसने दिया है, जी हाँ, इसमें आपको आवाज़ सुनने को मिलेगी जिगर और प्रिया की, और दोनों की आवाज़ ने क्या जुगलबंदी की है और दोनों के जो एक्टिंग है उस पर सूट करते हुए नज़र आ रही है ये आवाज़। और एंजॉय करिए फिल्म देसी रोमांस से ये गाना।

बारिश की बात हो और बारिश पे अगर कुछ कहा ना जाए तो फिर बारिश के जज्बात अधूरे हैं। कहते हैं बिन मौसम जो बारिश आई, कुछ भूली बिसरी यादें लाई, सूखे पत्तों पर बूंदे ठहरी, जैसे आंखों में बातें गहरी। ना बादल ने कोई खबर दी, ना हवाओं ने आहट की, फिर भी अचानक भीग गया मन, जैसे किसी ने याद किया हो चुपके से। खिड़की पर गिरती हर बूंद एक कहानी कह जाती, कहीं हंसती कहीं रुलाती, कभी किसी की कमी बता जाती है। ये बारिश कितनी कितनी कितनी हंसी होती है, मौसम की मोहताज नहीं, जहाँ दिल चाहे वहीं बरसती है, जहाँ यादें हों वहीं ठहरती है। आज फिर बिन मौसम बरसा आसमान और भीग गया मेरा सारा जहान, शायद बारिश नहीं थी ये, किसी की याद थी जो बूंदों में उतर आई थी।

नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है आप सभी का आपके शो गोंडा मैसेज मसाला में। और आज बात हो रही थी सबसे खास दिन की, यानी कि आज बात कर रहे थे हम लोग शिक्षक दिवस की। हाँ भाई, विश्व शिक्षक दिवस जो कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, 5 सितंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, और आज विश्व शिक्षक दिवस। तो 5 अक्टूबर को विश्वभर में सभी शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है, और ये 1966 के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संगठन यूनेस्को ने ILO के शिक्षक स्थिति संबंधी अनुशंसा को अपनाने की वर्षगांठ का स्मरणोत्सव के रूप में बनाने का मतलब दिन तय किया। उच्च शिक्षा के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास शिक्षण कार्य कराने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उच्च शिक्षण का जो उस समय दौर था वो बहुत अच्छा नहीं था। लोग मतलब एक डेफिशिएंट कह सकते हैं शिक्षा से मतलब वो थे, और जो स्थिति थी उस समय शिक्षा की वो विश्वभर में बहुत खास नहीं थी। मतलब प्रारंभिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा या उच्च माध्यमिक शिक्षा की बात करूँ तब तक तो ठीक था, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए जो अवसर थे वो कम मिलते थे बच्चों को। तो ऐसे में शिक्षकों को बढ़ावा देना, तभी तो शिक्षक अपने मतलब खुशी से रुझान से अपने जो कहते हैं ना कि जो क्षेत्र है व्यास है उसको बढ़ाएंगे। ये दिन शिक्षकों द्वारा शिक्षक के लिए या शिक्षा में परिवर्तन लाने के जश्न को मनाने के लिए मनाया जा रहा है, साथ ही उनकी प्रतिभा और पेशे के उपयोग से आवश्यक समर्थन पर विचार करने का दिन है। और मैं खास बात करूं तो 2026 के अगर समारोह की बात करूं तो आज ये जो है 60वीं वर्षगांठ है विश्व शिक्षक दिवस की, और इसमें डिजिटल और जो जलवायु परिवर्तन है इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए इस दिवस को मनाया जा रहा है, क्योंकि शिक्षक ही वो पहला मेंटोर है जो बच्चों को हर उस समस्या से रूबरू करा सकता है जिसे उसे बचपन से जानना चाहिए और उसके लिए उसे जागरूक होना चाहिए। ठीक है, इस बार की जो थीम है वो है शिक्षकों के साथ खड़े रहना, पेशे की रक्षा, इसकी स्थिति को आगे बढ़ाना और हमारे भविष्य को आकार देने के 60 वर्ष। तो इस बार की थीम बड़ी खास रही और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है इस पेशे की जो स्थिति है वो मतलब वैसे तो सुधरी है, पर सम्मान जो पहले था वो कम होता जा रहा है, तो सम्मान को बढ़ाने की भी बहुत ज़रूरत है। जैसे आप लोग बताइए, आप लोगों ने इस दिन को कैसे मनाया, क्या आपने किसी अपने खास शिक्षक को याद किया या नहीं? जैसे आप लोग बताइए किसको याद किया, अपने फेवरेट टीचर का नाम ज़रूर बताइए। जैसे मेरे स्कूल टाइम के तो बहुत सारे फेवरेट टीचर्स थे, लेकिन एक मैम थी जो केमिस्ट्री पढ़ाती थी वो बड़ी खास थी मेरे लिए, रुचि नाम था उनका, रुचि गुप्ता, और एक सर थे KS तिवारी सर। ये दो टीचर्स मेरे मतलब लाइफ के बहुत बेहतरीन टीचरों में से एक रहे हैं, जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है और मतलब 12th तक इनका साथ रहा है, तो इसलिए ज़्यादा खास ही लग रहे। बाकी ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जिनका नाम मैं लेना चाहूँ तो मतलब समय कम पड़ जाएगा, SK तिवारी सर और हमारे SK यादव सर, किसका नाम लूँ कोई भूल ना जाऊँ मैं, जयसवाल सर जो कि सोशली यूज़फुल प्रोडक्टिव वर्क पढ़ाते थे, और हमारी हिंदी की मैम सबसे खास टीचर, उनको तो मैं कभी नहीं भूल सकती, उनका मतलब मिलना, उनकी आँखों में वो आंसू, ओह माय गॉड, ऐसी हिंदी की टीचर तो मैंने कभी नहीं अपनी लाइफ में देखी जो हिंदी को भी साइंस की तरह पढ़ाती हो, ओह माय गॉड। तो सभी शिक्षकों को नमन है, और हम सभी देखिए लाइफ में शिक्षक प्रोफेशनली हो या ना हो, लेकिन ज़िंदगी में एक शिक्षक के रूप में अपने घर में होते हैं, लोगों को कुछ ना कुछ ज्ञान देते हैं, तो एक अच्छा ज्ञान दें हम यही चाहते हैं। तो वैसे देखते हैं आज कॉलिंग डे, गुड इवनिंग अनूप जी। अनूप जी कह रहे हैं बारिश ने फिर से दस्तक देकर डरा दिया है, बाकी प्रभु की मर्जी। और हाँ मतलब दोपहर से बादलों ने एकदम मतलब घेरा बना के रखा है, तो डर लग रहा है। वैसे कल भी बारिश दिखा रहा है, तो बिल्कुल आप लोग ये मत सोचिएगा कि बारिश नहीं होगी, बारिश फिर से होगी। मैम मेरा आज का मुद्दा है 1 कचौड़ी 2 समोसा,
ऐसे मत कहिए भाई, मैं इस मुद्दे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। मैं तो ये कहूँगी ऐसे नारे लगाने वाले जो भी लोग हैं वो सिर्फ सिर्फ एक तरह का स्टंट कर रहे हैं, पब्लिसिटी स्टंट और कुछ नहीं। उनके मस्तिष्क में ये भी नहीं पता है कि मतलब उनके दिमाग में ये छवि बिल्कुल भी नहीं आ रही है उनके, कि वो उनके पिता, उनके भाई या उनके आसपास ऐसे बहुत सारे गुरुजन होंगे जो मेल होकर उनकी ज़िंदगी को बदलने का काम कर रहे होंगे। तो नो, आई डोंट सपोर्ट दिस टॉपिक और मैं इस टॉपिक पे बात भी नहीं करना चाहती, बिकॉज क्या ही है। तो चलिए हम बादलों पे चलते हैं, थोड़ा सा बादलों से बातचीत करते हैं कि बस अभी थोड़ा सा मन नहीं है, बारिश का मौसम ठीक ठाक हो गया हम लोग के साइड, तो हम लोग बारिश के साथ अब नहीं सेलिब्रेशन करना चाहते हैं आने वाले फेस्टिवल्स की। नवरात्रि भी आने को है और देखते देखते मतलब मौसम बदल रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल बादलों को थोड़ा सा उनकी प्रशंसा कर दी जाए, थोड़ा सा उनका प्रेज कर दिया जाए। जब किसी की तारीफ बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल में आ जाता है कि नहीं, है ना? हाँ, तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना आप लोग के साथ। आप लोग बताइए कैसा है गाना।

0: गांव में दो प्रेमी रहते हैं और भाई इसको सुन के तो सबके मन में आ गया होगा ना कि इतना पुराना और इतना सुरीला गाना सुन के तो दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया होगा। फिलहाल आप लोगों के गाने सुनाने की आज मतलब बारी है, लेकिन अभी तक कॉल किसी का नहीं आया। कॉल में इतनी देरी क्यों, ये तो आप ही लोग बताएंगे। वैसे देरी तो करते नहीं, लेकिन देर हो जाती है, एम राइट? तो चलिए देखते हैं। सभी का स्वागत है भाई। कोई हमारे साथ आज नया नया सा दिख रहा है, यानी कि सविता जी दिख रही हैं। कैसी हैं सविता जी, स्वागत है आपका। काफ़ी दिनों बाद दिख रही हैं तो अच्छा लग रहा है। और मौसम बेईमान और आवाज़ें रंगीन, तो शाम तो अच्छी होगी। चलिए देखते पहला कॉल किसका है। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, कॉल डिसकनेक्ट हो गया। फिलहाल चलिए देखते हैं कौन कॉल करता है। और आप लोग वैसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते बजाते रहिए और देखते हैं कौन क्या क्या आज सुनाता है। तो चलिए आज की शाम का दूसरा कॉल, चलिए देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो,
1: गुड इवनिंग जी। नमन,
0: गुड इवनिंग, शुभ संध्या, कैसे हैं सुरेश जी? स्वागत है आपकी आवाज का सबसे पहले तो। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपकी आवाज सुन के और अच्छी हो गई हूँ।
1: चलो या भगवान करे आप खुश रहें, अच्छी बात।
0: तो फिलहाल आप गोंडा शहर में या लखनऊ में?
1: नहीं, इस समय गोंडा ही में।
0: अच्छा, गोंडा में। तो आज क्या सुनाने का मतलब सोचा है आपने?
1: आज मौसम में बारिश हुआ, ठंडा हो रहा मौसम। एक लता जी की एक आवाज, वो सुना देखो।
0: जी जी, स्वागत है।

उस पत पे मुझे आंचल को बिछाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे पास तो आने दे, मुझे पास तो आने दे, जिस पथ पे चला थक जाएगा जब राहों में,

0: तेरी सुन सुन राहों में मैं प्यार का रंग भर दूंगी, अरे तेरे कदम नहीं दुनिया से कम, माथे पे सजाने दे, चाहती ना समझी कोई बात नहीं, मुझे पास तो आने दे, किस पथ पे चला, जीवन की डगर पे तुझको साथी की जरूरत होगी, साथी की जरूरत होगी, दिया कैसे जलेगा राहों में, बाती की जरूरत होगी, बाती की जरूरत होगी, मैं बनू दिया तेरे पथ का, दिया दिया पथ में जलाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे पास तो आने दे, इस पथ पे चला। थैंक्स मैम।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी खूबसूरत आवाज़ में और गाने को इतना सरलता से निभाया आपने, जैसे लग रहा कितना हल्का सा गाना है, सुन के एकदम मूड फ्रेश हो जाए।
0: क्या
1: बात,
0: वो और लिसनर को मौका देंगे या थोड़ी देर बाद उसे सुना दें?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: वो जो है आपका जो अधूरा रह गया था न?
1: जी,
0: हाँ
1: शुक्रिया
0: तो बाद में फोन मिला के कर देना।
1: जी, बहुत बहुत
0: थैंक यू।
1: धन्यवाद। तो सुरेश जी की आवाज़ में हमने ये प्यारा सा गाना सुना, जिस पथ पे चला, और इतना बढ़िया सा गाना सुन के भाई मूड तो सबका ही चेंज हो जाएगा। तो चलिए मैं और आप लोग के मूड को एक्टिवेट करती हूँ धुरंधर का गाना सुना के। तो चलिए धुरंधर का ये गाना सुनिए, मोस्ट वांटेड वाला, और आप लोग भी कॉल करने की तैयारी करिए, क्योंकि आज की रात हम लोग करेंगे बहुत सारी बात इसीलिए। तो चलिए द टाइटल सॉन्ग, जान से गुजरते हैं, फॉर यू।

0: श्रोताओं, एक कॉल आ रहा है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो हेलो, शुभ संध्या। अनिल जी हमारे चैट रूम में हैं, चैट रूम में हमारे साथ अरविंद जी भी हैं, पर हमारे कॉलर की आवाज़ ऑन एयर नहीं आ रही है, क्या दिक्कत है। हेलो कुमार, गुड इवनिंग। अरविंद, गुड इवनिंग, कैसे हैं सब लोग? पर आवाज़ नहीं आ रही, तो मैं चाहूँगी आप लोग प्लीज़ नेटवर्क में आके कॉल करें। अभी एक कॉलर आया लेकिन उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँची, तो देखते हैं कौन दस्तक कैसे देता है। फ़िलहाल तो गाने एक से एक सुन के शाम रंगीन हो रही है। हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो, गुड इवनिंग।
1: हाँ नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, शुभ संध्या, आपका शुभ नाम।
1: मैं गोरखपुर से बोल रहा हूँ अनिल
0: जी। अनिल जी कैसे हैं, स्वागत है आपकी आवाज का। काफी दिनों बाद आपको सुनने को मतलब मौका मिला है मुझे।
1: एक्चुअली मैं भी जिस दिन आपका प्रोग्राम था उस दिन मैं था कानपुर में।
0: जी जी,
1: तो सॉरी मैं आपको प्रोग्राम नहीं सुन पाया, इसके लिए।
0: कोई बात नहीं, इट्स ओके।
1: तो मैं आज आपको हेलो, मेरी आवाज आ रही है?
0: जी जी,
1: आपसे चक्म का गाना है
0: जी।
1: जो
0: जी स्वागत है,
1: तो ये गाना मैं गाने की कोशिश कर रहा हूँ।
0: जी जी जी स्वागत।
1: तो मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है मैम
0: जी।
1: तुम जो मिल गए हो ये लगता है

ये लगता है कि जहां मिल गया तुम भी ते खोए खोए मैं भी बुझा बुझा तुम भी ते खोए खोए मैं भी बुझा बुझा।

0: धन्यवाद मैम।
1: क्या बात है, और गाने को आपने गाया नहीं, एंजॉय किया है, क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: एक्चुअली म्यूजिक का कोई चीज है वो दिख तो अलग होता है।
1: हाँ, लेकिन सच में ये गाना गाना नहीं है, इसको जैसा आपने गाया लग रहा है कि हाँ, किसे सुन के कोई भी मतलब अपना मूड फ्रेश कर सकता है, सुन के एकदम एनर्जी से भर सकता है। क्या बात है,
0: थैंक यू मैम, थैंक यू,
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: ओके, धन्यवाद।
1: तो अभी हमने सुनी अनिल जी की आवाज़ में गाना तुम जो मिल गए हो। सच्ची में ये गाना अगर किसी को डेडिकेट करना हो तो इसकी लिरिक्स और इसका अंदाज़ दोनों ही बेहतरीन है। तो चलिए सुनते हैं एक और गाना हमारी तरफ से, और आपके कॉल्स का इंतज़ार लगातार। और एक कॉल और आया था लेकिन आवाज़ ऑन या ना आने की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गया। फिलहाल के लिए चलिए एक और गाने की ओर रुख करते हैं, और आप लोगों के साथ इस शाम को बेहतरीन बनाते हैं।

ढूंढा सुख मिला दर्द, अकेलापन एक लंबी तलाश, फिर तुम मिले, जिंदगी मिली, फिर एहसास हुआ प्यार क्या है, सुकून क्या है, चैन क्या है।

तो आप लोगों ने सुना आवारापन टू का ये गाना, और देखते हैं किसकी बारी है, कौन है दीवाना। आज से हम क्यों बाय लेते हैं, कहाँ जा रहे हैं, मुझे बताया नहीं आपने। कोई विशेष वजह है सबलू जी, या फिर कहीं दूर घूमने जाने की तैयारी है? कोई तो रीज़न ज़रूर होगा जनाब। वैसे देखते हैं किसकी आवाज़ सुनने का मौका मिलने वाला है।

0: तो चलिए कॉल आ रहा है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो हेलो, शुभ संध्या। हेलो हेलो पुनः, ये नेटवर्क का इशू, ये मतलब मौसम ख़राब क्या हुआ कि शहर का नेटवर्क ही लग रहा है वीक हो गया। और यही सेम चीज़ हुई थी जिस दिन बारिश बहुत हो रही थी लास्ट सैटरडे को। चलिए देखते हैं क्या होता है, और कॉल का इंतज़ार, अगला कॉल हमारे साथ, देखते हैं आवाज़ किसकी मिलने वाली है हमें। हेलो, गुड इवनिंग, कैसी हैं? आपका स्वागत है प्रीति जी। आपकी आवाज़ पहचानते हुए मुझे लग रहा है, डाउट तो नहीं है, फिलहाल मैं श्योर हूँ।
1: जी मैम जी,
0: तो ये बताइए आपके शहर का मौसम सुहाना है या फिर एवरेज?
1: हाँ मैम, ठंडक ने दस्तक दे दिया है थोड़ा थोड़ा।
0: और आज बारिश हुई आपके शहर में या नहीं?
1: जी नहीं हुई है, आज सुबह था लग रहा था मौसम, लेकिन हुआ नहीं।
0: लेकिन हमारे शहर में तो बारिश हो गई।
1: आप लकी हैं।
0: अरे लकी मत कहिए, ये वाली बारिश थोड़ी सी खतरनाक टाइप की हो गई है।
1: हाँ, फसलों के लिए खतरनाक है मैम।
0: हाँ, फसलों के लिए भी, और देखिए अब धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन इसलिए भी चाहिए क्योंकि अब बीमारियों को दूर करने का मौसम आना चाहिए।
1: ऐसे मौसम सब लापरवाह हो जाते हैं और बीमारियां घेर लेती हैं।
0: और उसके लिए तो क्या सुनाइएगा आज?
1: मैम सुनाएंगे अपना लिखा हुआ।
0: क्या बात है?
1: कविता, किताब, किताबी सफर।
0: ओहो स्वागत है।
1: किताबी सफर
0: क्या
1: बड़ा
0: बात है?
1: सुहावना था हम लोगों का किताबी सफर वाला मतवाला दौर। बड़ा सुहावना था हम लोगों का किताबी सफर वाला मतवाला दौर। बिसरा कर किताबी दौर को आजकल चौपट कर दिया मोबाइल ने। बच्चों का सुहावना वाला वो बचपना दौर, मोबाइल ने चौपट कर दिया बचपना बच्चों का।
0: क्या बात?
1: बच्चे सारा काम लेते मोबाइल से बड़े ही चाव से। बच्चे सारा काम लेते मोबाइल से बड़े ही चाव से। और किताब बन गया उनके लिए एक बोझ सा। और किताब बन गया उनके लिए एक बोझ सा। मैं तो यही कहूंगी कि आज के बच्चे मोबाइल के साथ साथ किताब से भी रखें अपना जुड़ाव और लगाव, क्योंकि किताब देता है उन्हें अनेक जानकारियों का भंडार। क्योंकि किताब पढ़ने से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। पुस्तक भारतीय संस्कृति की एक अनूठी धरोहर है। पुस्तक हमारी संस्कृति की पहचान है और एक अनूठी धरोहर भी है। इसलिए भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए पुस्तक पढ़ना बहुत ही जरूरी है, आजकल के बच्चों को भी। इसी से पुस्तक का दौर जीवंत हो सकता है पुनः।
0: क्या बात है, क्या बात है, सच कहा आपने। बुक से जो कनेक्शन होता था वो कहीं ना कहीं हमारे मन मस्तिष्क को प्यूरीफाई तो करता ही था, और ज्ञान के भंडार को भी मतलब कहता था कि मतलब बढ़ा देता था। और इतिहास गवाह है, हमारे इतिहास को हम तक पहुंचाने वाला ये पुस्तक का भंडार ही है जो हमें हमारे इतिहास से जोड़ता है।
1: लेकिन मैम आजकल मोबाइल इजी हो गया, सब पुस्तक खोलना नहीं चाहते मोबाइल में ना।
0: मोबाइल इज टेम्परेरी, मैं ये कहूंगी मोबाइल पे सब कुछ अवेलेबल है बट स्टिल इट इज टेम्परेरी। अभी कुछ दिनों पहले बारिश के दौरान हर शहर में लाइट गुल हो गई थी, जिस वजह से सबको एहसास हो गया था कि क्या है जिंदगी इलेक्ट्रिसिटी या टेक्नोलॉजी के बिना।
1: लाइट नहीं थी तो मोबाइल नहीं चला था, सब फ्री अपना क्या करें।
0: तब शायद उनको किताबों की तरफ रुझान दिखा होगा, या लाओ यही पढ़ लेते। न्यूज़पेपर घर में जो इधर उधर पड़ा रहता होगा सुबह आने के बाद, उसको सबने उठा जरूर लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है।
1: किताबी सब तौर पूरा आना चाहिए।
0: जी जी जी,
1: मोबाइल के साथ शायद ये भी जरूरी है किताबी सफर।
0: डेफिनेटली डेफिनेटली, थैंक यू सो मच प्रीति जी, बहुत अच्छा लगा जान के, और बहुत अच्छी कविता थी, एकदम मोटिवेटिंग टाइप की, जो हर किसी को सुननी चाहिए सबके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। थैंक यू। तो प्रीति जी से हमने सुनी ये प्यारी सी कविता, और देखिए और पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। तो इसीलिए किताबें पढ़ो ना कि मोबाइल से पढ़ो।

0: पढ़ाई हम लोग करेंगे, लेकिन अभी कॉल देखते हैं किसका है, बात करते हैं हम लोग। हेलो, शुभ संध्या।
1: शुभ संध्या बिना, मैं तेज नारायण शुक्ल बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है तेज जी, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो काफी दिनों बाद बात हो रही है आपसे, तो
1: जी, थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि मतलब कॉल मैंने किया था, वो पॉज में चला गया, पूरी बेल जाके कट गया। तो ऐसा लग मतलब मेरे मन में आता, इसके पहले एक बार और ऐसे हुआ था, तो मुझे लगा कि शायद इस पटल के लिए क्या मैं उपयुक्त नहीं हूँ।
0: नहीं, तेज जी, जहाँ यहाँ नेटवर्क का इशू है, तो इसीलिए टेक्निकल इशू को हम लोग चेक कर रहे थे कि ऐसा तो नहीं है जो कॉल कनेक्ट नहीं हो रहे हैं उसमें हम लोग के मतलब टेक्निकल साइड से कोई इशू है, तो उसी की टेस्टिंग चल रही थी उस दौरान। जी
1: तो वक्त है अभी।
0: जी जी जी बिल्कुल, अभी तो टाइम है। और मैं क्या मतलब, जितने भी आरजेस हैं हम प्रयास यही करते हैं कि हर कॉलर को मौका मिले, चाहे मतलब चाहे 1 मिनट का ही टाइम मिले, लेकिन हर किसी को आज ये मंडे का प्लेटफॉर्म ही है, ओपन प्लेटफॉर्म, जो कि ऑन एयर हम लोग आप सभी को देते हैं, तो ये हक तो मैं बिल्कुल छीन नहीं सकती। स्वागत है आपका
1: जी। तो
0: जी, क्या सुनाइएगा आज?
1: बस अभी पहले अपना लिखा हुआ सुनाता हूँ,
0: जी,
1: और ये पूरा जीवन चक्र है। और जैसे युवावस्था से शुरू होता है, और आजकल मोर देन 50% ऐसे ही है। तो
0: जी
1: आप सुनिएगा, और मतलब जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं या हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है उसका आकलन कीजिएगा।
0: जी बिल्कुल। लेकिन एक
1: तो
0: सवाल अगर मैं करना चाहूँ आपसे, तो अगर अनुमति,
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: आज
1: बिल्कुल।
0: विश्व शिक्षक दिवस है, तो इस पे आपके क्या विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे शिक्षकों की आजकल, क्या मतलब क्या
1: अच्छा,
0: अवधारणा?
1: तो अब शिक्षक दिवस है, तो पहले असल में वो जो मनु जी का कार्यक्रम है उसमें शायद उस दिन शिक्षक दिवस ही था।
0: आज विश्व
1: और
0: शिक्षक दिवस है।
1: अच्छा,
0: जी
1: तो पहले मैं बोलूंगा बाद में,
0: जी जी
1: और मैं सुनाने वाला था कुछ और, लेकिन जो मैंने उस दिन शिक्षकों के लिए लिखा था, जो उनको समर्पित किया था,
0: जी जी
1: क्योंकि देखिए मैं ये जरूर कहूंगा कि शिक्षा और जीवन ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगर ऐसे कहिए तो जीवन या समाज रूपी ताले को शिक्षा रूपी चाबी से खोला जा सकता है, और शिक्षा का जो मूल आधार है वो शिक्षक है, और वो शिक्षक हमें जन्म से ही मिलता है, वो चाहे माँ के रूप में, पिता के रूप में, या फिर बड़े भाई, या फिर समाज में, फिर विद्यालय में, तो शिक्षक मिलता ही है। और वह मतलब पूरे समाज की धुरी है, और एक शिक्षक के निर्देशन में मतलब पूरा समाज व्यवस्थित होता है, तैयार होता है, और हर वर्ग में लोग जाते हैं। तो मैं तो नमन करता हूँ, मेरी बड़ी श्रद्धा है गुरु लोगों के प्रति, और मैंने जिनसे पढ़ा है या जो भी लोग अध्यापन से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, मेरी बिटिया भी है और मेरे दामाद भी, दोनों लोग इसी मतलब क्षेत्र में है। मेरे एहसान इल्ला यहाँ आपके अवध विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर है, मेरी बिटिया इंटर कॉलेज में लेक्चरर है। तो जी, तो मतलब बहुत मैं इस चीज से बहुत वो रहता हूँ। और कुछ पंक्तियां मैं पहले शिक्षकों को ही देना चाहूंगा,
0: क्या बात
1: और वो एक सेकंड मैं सुनाना दूसरा चाह रहा था, लेकिन पहले आपने कह दिया। तो और मैं जानता था कि जैसे आपके प्रोग्राम में ये जरूर रहता है कि जो दिन होता है उस दिन विशेष, तो सुबह ये मेरे मन में आया था कि मैं देख लूं क्या है और उस पे कुछ लिख लूं, लेकिन फिर वक्त नहीं मिला, तो संयोग से आज ये हमें मतलब आपको सच बात बता रहा हूँ कि ये पता भी नहीं था कि आज विश्व शिक्षक दिवस है,
0: जी
1: और बहुत अच्छा है। एक सेकंड में थोड़ा सा, असल में मैं सुनाने वाला था दूसरा, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि ये समसामयिक है और तत्कालीन आज के परिवेश में ये बड़ा जरूरी चीज है, और समाज की जो स्थिति है वह उसके हिसाब से ये बड़ा जरूरी है। मैं थोड़ा उसको एक पहले सुना देता हूं, अगर वक्त हो तो, फिर अगर अगर टाइम
0: जी
1: मिला
0: जी
1: तो
0: जी जी जी
1: जो मैंने लिखा है वो आपको सुना दूंगा।
0: डेफिनेटली डेफिनेटली, स्वागत है।
1: जी अच्छा, ठीक है। ये मिल गया। चलिए मैं पहले जितने भी शिक्षक हैं, उनको अपनी कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं।
0: जी
1: ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों के लिए है। शुरू करूं?
0: जी जी स्वागत है।
1: बेजा पत्थर को तराश कर, बेजा पत्थर को तराश कर एक बुत की शक्ल देता है, बेजा पत्थर को तराश कर एक बुत की शक्ल देता है, इससे भी आगे ठोकरों से संभलने की अकल देता है, इससे भी आगे ठोकरों से संभलने की अकल देता है। सरमाया है जो हमारी तहजीब का, सरमाया है जो हमारी तहजीब का एक इमारत बना देता है, एक इमारत बना देता है। यहां सर झुका के चलो, यहां सर झुका के चलो, ये मंदिर है ये इबारत बना देता है, ये इबारत बना देता है। पुष्ट दर पुष्ट दर पुष्ट ये पौधे को एक बाग बना देता है, पुष्ट दर पुष्ट ये पौधे को एक बाग बना देता है। इल्म से अपने कुछ कर गुजरने की आग लगा देता है। इससे कुछ ले लो, इससे कुछ ले लो इसके साए में रहने वालों, ये विद्यार्थियों के लिए है कि इससे कुछ ले लो इसके साए में रहने वालों, थाम लेगा तुम्हें बन के चप्पू ऐ मझधार में बहने वालों। खाली पन्ने हो तुम, खाली पन्ने हो तुम ये किताब बना देगा, खाली पन्ने हो तुम ये किताब बना देगा, रहो इसकी सरपरस्ती में चमका देगा महका देगा ये तुम्हें महताब बना देगा।
0: क्या बात है
1: जी जी धन्यवाद। ये मैंने समर्पित किया था और उस दिन तत्काल लिखा था मैंने इसको।
0: क्या बात है, बेहतरीन, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। और मतलब आज को मतलब जो थीम है, आज का जो दिन है, उसको साकार करने वाली पंक्तियाँ। और सच बताऊँ तो आज की जनरेशन जो ग्रैटिट्यूड नहीं करती शिक्षकों की, क्योंकि ऑप्शंस उनके नज़र में शिक्षक एक ऑप्शन है कि अभी तो ये ऑप्शन है नहीं हमारे पास, मतलब इसीलिए बच्चों का जो शिक्षकों के लिए जो मतलब जो सद्भाव था, जो रिस्पेक्ट थी, वो एकदम ना के बराबर हो चुकी है।
1: मैं यहाँ एक कहना चाहता हूँ कि इसकी असल में जो बेसिक जो जो स्टार्टिंग या शुरुआत होती है वो घर से ही हो जाती है।
0: जी।
1: घर से ही अगर बच्चे को, बच्चा स्कूल में कुछ समय व्यतीत करता है और बाकी समय वो घर में गुजारता है, और पैदा होने के बाद से जब तक स्कूल नहीं जाता है या स्कूल से आने के बाद वो घर रहता है, तो बहुत सारी ड्यूटी गार्जियंस की होती है। इसमें समझ लीजिए, मैं तो साफ साफ कहूंगा ये लैकनेस ऑफ गार्जियनशिप है। और इसमें मतलब जितने भी अभिभावक हैं उनको ध्यान देना चाहिए, और कम से कम लंबे समय तक ना सही तो कम से कम बच्चा जब तक हाई स्कूल या इंटर तक नहीं पहुंच जाता है, उसके मैं तो कहता हूं उसके एक एक मिनट का ध्यान रखना चाहिए, हिसाब रखना चाहिए,
0: बिल्कुल सुपरवाइज करना चाहिए। डेफिनेटली
1: जी जी, इसमें कुछ समय ऐसा होता है जिसमें वो आंख से ओझल हो जाता है, बस वहीं पे गलती होती है मीना जी।
0: जी बिल्कुल सही
1: जी,
0: आपने
1: तो अगर समय हो
0: तो बिल्कुल स्वागत है। हाँ अब बिल्कुल, मैं तो उसका अब ईगरली वेट कर रही हूँ, क्योंकि इन पंक्तियों ने तो जो आज के दिन की जो सफलता थी उसको आयाम दिया है। क्या कहें, क्या बात
1: जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो इसमें पूरा जीवन चक्र है और मोर देन 60% जो हो रहा है, जो आज का परिवेश है, पूरा जीवन मैंने उतारने की कोशिश की है अपने कविता में। तो ये बस समझिए युवा अवस्था से शुरू होता है।
0: स्वागत।
1: और आज का युवा मतलब कुछ न कुछ कमोबेश ऐसी ही परिस्थितियों से गुजर कर, और अंततोगत्वा क्या होता है वो मैं आपको इस कविता में रखता हूँ, कोशिश करता हूँ। शुरू करूँ?
0: जी जी स्वागत है।
1: अतीत की परछाइयां, अतीत की परछाइयां जैसे कि शायर की रुबाइयां, अतीत की परछाइयां जैसे कि शायर की रुबाइयां, बनते बिगड़ते चेहरे कभी अच्छाइयां ही अच्छाइयां तो कभी बुराइयां ही बुराइयां, कभी खुशियों का मेला, कभी खुशियों का मेला तो कभी उदासी के पहरे, कभी खुशियों का मेला तो कभी उदासी के पहरे, तो कभी खुद में अकेला, कभी लोगों का हुजूम, ऐसे ही होता है आजकल मोर देन, कभी लोगों का हुजूम तो कभी अपने में ही गुम, कभी कभी हौले से कोई पीठ थपथपाता है, कभी कभी हौले से कोई पीठ थपथपाता है तो कभी अपना दरवाजा ही अपने मुंह पर बंद हो जाता है, कभी अपना दरवाजा ही अपने मुंह पर बंद हो जाता है, बेगाने से अपने, बेगाने से अपने टूटते रहने के बाद भी सतरंगी सपने, बेगाने से अपने टूटते रहने के बाद भी सतरंगी सपने, बेपरवाहियां नादानियां शैतानियां, बेपरवाहियां नादानियां शैतानियां, जेब खाली लेकिन मुट्ठी में दुनिया, जेब खाली लेकिन मुट्ठी में दुनिया, जीवन की तपती दोपहरी सुहानी शाम जैसी, जीवन की तपती दोपहरी सुहानी शाम जैसी, निराशा कुंठा हताशा तेरी ऐसी की तैसी।
0: क्या बात, क्या बात
1: जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। बेखुदी में बढ़ते कदम, बेखुदी में बढ़ते कदम, कोई और नहीं हम ही हम, सिर्फ हम ही हम। ये एक मतलब एक चक्र खत्म हो गया।
0: क्या बात, क्या बात
1: जी। अब दूसरा शुरू करता हूँ कि अचानक अचानक एक अजब सी मदहोशी छा गई, ये देखो अपने जीवन की शाम आ गई, अब सोने के दिन चांदी की रातें, मदहोशियां सरगोशियां और सिर्फ बातें बातें बातें ही बातें, समय की रफ्तार नन्हे कदमों की आहट, खुशियां जिम्मेदारियां दुश्वारियां, आशंका बेचैनी करवट दर करवट, अब रातें रुलाती हैं, अब ये तीसरा चक्र है, अब रातें रुलाती हैं, दिन डराता है, थकान बेचैनी कमजोरी बीमारी कभी उम्मीदें तो कभी लाचारी, और एक समय ऐसा भी आता है कि जब बस सिर्फ दो ही व्यक्ति रह जाते हैं तो हम और तुम सिर्फ अपने में गुम, हम और उम्र का एक ऐसा पड़ाव आता है बिना जी, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम और तुम सिर्फ अपने में गुम, सन्नाटा अकेलापन उम्मीदें हताशा उदासियां उबासियां परेशानियां हैरानियां, कमजोर सांसें आंखों में सिर्फ करुणा की भाषा, फिर शांति सुकून आनंद परम आनंद, क्रंदन चीतकार सरगोशियां अलविदा जिंदगी, तेरा शुक्रिया।
0: क्या बात है, हर एक पड़ाव के अनुभव को शब्दों में पिरोना, माय गॉड। आपने जी, मतलब मैं एक एक एज ग्रुप को समझ रही थी कि हाँ अभी इस एज की बात की जा रही है, अभी इस एज की, और सबसे खास वाला जो आपने सबसे पहला हिस्सा लिया और सबसे अंतिम वाला कि हताशा उम्मीदें फिर, मतलब क्या बात है, मतलब ये हकीकत है, कड़वी हकीकत कह सकते हैं।
1: एक्चुअली इसको बाद में मैंने बहुत सुधार करके फिर से, लेकिन ये मैंने जब शुरू में लिखा था तो ये वही है, और मैंने कहा कि आपको तत्काल में सुना दिया जाए, आपका बड़ा वक्त ले लिया मैंने,
0: पर हर किसी ने इस कविता को जरूर महसूस किया होगा, ये कविता नहीं थी, ये हकीकत थी जिंदगी की। मैं डेफिनेटली बोलूंगी ये हकीकत है जिंदगी की, और अगर इसे समझ के हम लोग एक एक कदम समझ, अपना जो एक एक दिन है एक एक क्षण है उसे महत्व दें तो शायद जिंदगी हमारी और बेहतरीन हो सकती है, और हकीकत तो यही है।
1: जी जी जी जी, तो ये मतलब मैंने महसूस किया है उसी को बस कुछ शब्दों का
0: आकार दे दिया। क्या बात है, पर मजा आ गया, बहुत बहुत बहुत बेहतरीन, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एकदम अलग होती हैं, गाना तो हम सुनते ही रहते हैं पर हाँ ये कविताएं आपके, मतलब ये मैं कहूँगी कि अभिव्यक्ति का जो थीम है हमारी शाम की थीम, तो वो अभिव्यक्ति किसी भी रूप में हो सकती है, और ये कविता लेखनी गद्य पद इनके रूप में ही बेहतरीन होती है। क्या बात है
1: जी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, आभार
1: जी, धन्यवाद।
0: तो तेज जी ने क्या सुनाया है, ये सुनाया नहीं है, ये बताया है कि पहले तो सबसे पहले बात मैं करूँगी शिक्षक दिवस के बारे में कि हाँ शिक्षकों की जो आज स्थिति है वो कैसी है। लेकिन अभी कॉल आ रहा है तो कॉल मैं ऑन एयर ले लेती हूँ, किसी को भी मैं वेट नहीं कराना चाहती जैसा कि आपको पता है। हेलो, शुभ संध्या, कैसे हैं अनूप जी? आवाज़ तो मैंने पहचान ली, आप बताइए आप कैसे हैं?
2: ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
0: हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और मौसम बदल रहा है और समय भी हमारे पास ज्यादा नहीं रहा है, तो इसीलिए हम चाहेंगे कि आप क्या सुनाना चाहते हैं, आप जल्दी से बताएं।
2: मैम, एक मूवी आई थी अनोखा बंधन, शबाना आजमी जी की, शायद अच्छा। आपने देखी हो?
0: हाँ, नाम तो सुना है।
2: तो इतनी दूर क्यों है माँ,
0: क्या बात है, स्वागत है,
2: शायद आपने सुना हो।
0: जी
2: करता
0: हूँ। जी स्वागत।
2: तू इतनी दूर क्यों है माँ, बता नाराज क्यों है माँ, मैं तेरा हूँ बुला ले तू, गले फिर से लगा ले तू। तू इतनी दूर क्यों है माँ, बता नाराज क्यों है माँ, मैं तेरा हूँ बुला ले तू, गले फिर से लगा ले तू। ओ माँ प्यारी माँ, ओ माँ प्यारी माँ,
0: क्या बात है।
2: तेरी आंचल की छाया को मेरी नींदे तरसती है, तेरी यादों के आंगन में मेरी यादें बरसती हैं। परेशान हो रहा हूँ मैं, अकेला रो रहा हूँ मैं तेरा हूँ बुला ले तू, गले फिर से लगा ले तू। तू इतनी दूर क्यों है माँ, बता नाराज क्यों है माँ, मैं तेरा हूँ बुला ले तू, गले फिर से लगा ले तू। ओ माँ प्यारी माँ, ओ माँ प्यारी माँ। सुना है मैंने माँ का दिल नहीं होता है पत्थर का, बुलाता है तुझे आजा, अकेलापन मेरे घर का। ये दीवारें मिटा दे माँ, झलक अपनी दिखा दे माँ, मैं तेरा हूँ बुला ले तू, गले फिर से लगा ले तू। तो इतनी दूर क्यों है माँ, बता नाराज क्यों है माँ, मैं तेरा हूँ बुला ले तू, गले फिर से लगा ले तू। तेरे चरणों में मंदिर है, तू हर मंदिर की मूरत है, हर एक भगवान की सूरत मेरी माँ तेरी सूरत है। तेरी सेवा मेरा जीवन, मेरा तन मन तुझे अर्पण, मैं तेरा हूँ बुला ले तू, गले फिर से लगा ले तू। ओ माँ प्यारी माँ, ओ माँ प्यारी माँ।
0: क्या बात है, क्या बात है अनूप जी, आपने इस गाने को आज क्या सोचा, क्यों सुनाया मुझे नहीं पता, लेकिन आपने सुनाया, इसके लिए शुक्रिया कहना चाहूँगी। क्या बात है, क्या बात है, मज़ा आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: बहुत दिन से मैं सोच रहा था ये गाना सुनाने के लिए,
0: पर आपने आज
2: याद आ गया।
0: हाँ, लेकिन मतलब सच्ची बहुत फीलिंग वाला गाना है, और ये गाना नहीं है, इमोशन है जिसको हम सभी ने फील किया, मुझे ऐसा लग रहा है।
2: उतनी ही फीलिंग के साथ गाने की कोशिश भी थी, लेकिन मैं बार-बार मतलब मेरी आंख भर रही थी गाते हुए।
0: नहीं, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। फिलहाल आंखें मत भरिए, हंसिए, मुस्कुराइए, क्योंकि आपके पास आपकी माँ हैं, उनको खूब सारा आपको प्यार भी करती हैं, बहुत सुना है। और थैंक यू सो मच इतने प्यारे से गाने को सुनाने के लिए, और सबको सबकी माँ की याद दिलाने के लिए। क्या बात है, नानी तो सभी लोग याद दिलाते हैं, लेकिन माँ की याद दिलाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो भाई हम सभी को अपनी अपनी माँ को याद करने का मौका मिला। वैसे तो सबके साथ सबकी माँ हैं, जिसकी माएँ थोड़ी दूर हैं, जैसे कोई कोई बाहर काम कर रहा है, कोई ऑफिशियली, या कोई बहुत मतलब उम्र का है तो उसकी माँ ऑब्वियसली उसके साथ नहीं होगी। तो उन सभी के लिए सबकी वैसे माँ माँ ही होती है यार, किसी भी उम्र में। एक 80 साल की उम्र के इंसान से भी आप पूछेंगे आप अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं, तो वो आंखें भर के कहेगा बहुत ज़्यादा, एक बार माँ मिल जाए। तो माँ का प्यार हर इंसान के लिए खास होता है, डेफिनेटली। तो इसी के साथ आरजू बीना को भी दीजिए इजाज़त, क्योंकि मैं आपके समय को नहीं लेना चाहती, क्योंकि आपकी फरमाइश ही गीतों का समय हो चुका है। लेकिन फिर भी पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ये बात याद रखना। और सुनिए ये गाना आरजू बीना की तरफ से। आप कुछ बेहतर और दिलचस्प सुन रहे थे, डेफिनेटली आरजू बीना के साथ सो सुन रहे हैं अपना गोंडा मैसे मिसाल आरजू बीना वाला। थैंक यू सो मच एवरीवन।

शी विद आर जस्ट सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल और आप सुन रहे हैं रेडियो क्या हॉस्टल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन स्टे ट्यून्ड एवरीवन हैप्पी हैप्पी हैप्पी एंड हैप्पीएस्ट मंडे आहा ब्लडी मंडे बड़ा लव मंडे आहा

तरीका आपकी अपनी फरमाइश की महफिल में आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है दोस्तों, आज है सोमवार और अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए ना, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा गाना टटोल लीजिए ना, तो इस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए ना और लगा दीजिए ना हजारों लाखों करोड़ों चांद। क्यों? क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके, ये महफिल आपकी और ये आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही ना। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। उदालक शर्मा मनकापुर से, प्रीति शुक्ला जी बहराइच से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, इट्स कुमार एमपी रीवा से, मोहम्मद मुशीब बाराबंकी से, मोहित मालवे नगर गोंडा से, राजेश कुमार सिंह जी मालवे नगर गोंडा से, विजय रावत निधि सीतापुर से, सुरेंद्र यादव गौरा चौकी से, राजेश कुमार सिंचाई विभाग गोंडा से, और अनिल शास्त्री जी गोरखपुर से, उषा कश्यप गोंडा से, कार्तिक कश्यप गोंडा से, आर के श्रीवास्तव जी गोंडा से, राजू सीतापुर से, शिवेंद्र पंडित वंशिका फ्रॉम गोंडा अयोध्या मतलब ओवरऑल इंडिया से, मीनू कश्यप गोंडा से, अरविंद आपका स्वागत है स्टे ट्यून्ड, सुरेश कुमार जी चौक से, निबजी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, सबीहा गोंडा से, और इसी के साथ में एडवोकेट सुनील मझारा, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। अब इंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश, और पहली फरमाइश है उदालक शर्मा की। उदालक शर्मा को सुनना है गाना, तुम तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो। अच्छा जी, सो इंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा और ऐसे में पसंदीदा गीतों को इंजॉय करने के लिए, और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी एंड कड़वी बातों को इंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

फरमाइश थी उदालक शर्मा की, मन कपूर से आवाज थी कुमार सानू अलका याग्निक की। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ, लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन उसके पहले मैं उदालक शर्मा से कुछ कहना चाहूंगी। मेरा कहना है कि बुलाए बिन बुलाए आ गए हो तू पूछते हो क्या, बुलाए बिन बुलाए आ गए हो पूछते हो क्या, जब आ ही गए हो तो आ जाओ सोचते हो क्या। हुआ था इश्क जब तुमको तब ये सोचना था यार, जब हो ही गया है प्यार तो अब सोचते हो क्या। हाँ बताओ बताओ बताओ ना। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश, और अगली फरमाइश है जग्गू दादा की जुगल किशोर वर्मा जी को। एमपी से सुनना है गाना शतरंज पिक्चर का, कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में। सो एंजॉय करते हैं जुगल किशोर वर्मा जी की फरमाइश पर ये गाना, और इसी के साथ में वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो अकबर नवाबगंज गोंडा से आपका स्वागत है। स्टे ट्यून्ड।

प्यार का पैगाम लिख दो। हमने एंजॉय किया है कुमार सानू साधना सरगम की आवाज में शतरंज पिक्चर का ये गाना। हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर बढ़ते हमारे आज के लिए फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है इट्स कुमार की एमपी रीवा से, और इट्स कुमार का एमपी रीवा से कहना है कि आपको याद कैसे रहता है इतना, वो भी 3 महीने बाद आए तो भी रीवा से है बोली। जी हाँ, वो क्या है ना, जो दिल से आवाज निकलती है या फिर जो चीजें दिल में फीट की जाती है ना, वो इरेज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप, मगर मैं बुढ़ी हो जाऊंगी, मेरे दांत तो ऑलरेडी टूट रखे, लेकिन जब सारे के सारे टूट जाएंगे, जब आंखों के नीचे झुर्रियां आ जाएंगी, कांपती आवाज में मैं बोलूंगी, और तब भी अगर आप मेरे सामने आके कहेंगे कि मैं इट्स कुमार हूँ, तो मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा आपसे, इट्स कुमार क्या आप एमपी रीवा से हैं? क्योंकि ये सारी चीजें मुझे बहुत याद रहती हैं। भले ही मुझे गैस जलाने के बाद में ये याद ना रहे कि हाँ, जब तक मैं पतीला नहीं चढ़ाऊंगी तब तक चाय नहीं बनेगी, लेकिन अब ये सारी चीजें तो मुझे जरूर याद रहती हैं। फिलहाल अब अपने आप से अपनी, मतलब क्या ही तारीफ करूँ, इंजॉय कर लेते हैं इट्स कुमार की फरमाइश को, जो की है एमपी रीवा से, और इट्स कुमार ने इस गाने को डेडिकेट किया है वंशिका को। सो इंजॉय करते हैं वंशिका के लिए ये वाला गाना, ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

दिलों के बंधन ये नाते दिलों के नाते। हमने एंजॉय किया है ये गाना कुमार सानू की आवाज में, इट्स कुमार की फरमाइश पर जो की है एमपी रीवा से। उन्होंने इस गाने को डेडिकेट किया था वंशिका को। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है मोहम्मद मुशीब की बाराबंकी से। मोहम्मद मुशीब जी को बाराबंकी से सुनना है गाना, ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए। सो एंजॉय करते हैं कभी हाँ कभी ना का ये गाना कुमार सानू की आवाज में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

काश के हम होश में अब आने ना पाएं। जी हाँ दोस्तों, हमने एंजॉय किया है कभी हाँ कभी ना पिक्चर का गाना, और इस गाने में शाहरुख खान एक्टर सुचित्रा को दोस्तों लेके जाते हैं फर्स्ट डेट पर, और फर्स्ट डेट पर ये हाउ रोमांटिक गाना इस मूवी में बजता है। सो ये फरमाइश थी मोहम्मद मुशीब जी की बाराबंकी से। इंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश। सो क्या आप सभी तैयार हैं अगली फरमाइश को एंजॉय करने के लिए? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। एंजॉय करते हैं अगला गाना। अगली फरमाइश हमारे पास में है मोहित की मालवीय नगर गोंडा से, और मोहित को मालवीय नगर गोंडा से सुनना है लता जी की आवाज में एक बहुत ही सुरीला सा नगमा। सो एंजॉय करते हैं दिल तुझको दिया पिक्चर का बहुत ही खूबसूरत सा गाना वादा ना तोड़, मोहित की फरमाइश पर जो कि है मालवीय नगर गोंडा से। स्टे ट्यून्ड। आई लव दिस सॉन्ग सच में।

लता जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, और इसकी फरमाइश हमारे पास में आई थी मोहित की तरफ से, जो कि है मालवे नगर गोंडा से। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो आशु मिश्रा जी लखनऊ से, और रवि तक्षक अल्पज्ञ आपका भी स्वागत है, वेलकम इन योर शो। और इंजॉय करते हैं अब हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है मालवे नगर से राजेश सिंह जी की, इनको सुनना है गाना अंकल रॉबर्ट क्या बोले। सो एंजॉय करते हैं किशोर कुमार जी की आवाज में ये ओल्ड इज गोल्ड सुपर हिट एंटिक सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर।

शादी करना मांगता। हाँ, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही तिरंगी सा गाना किशोर कुमार जी की आवाज में मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है विजय रावत की। विजय रावत को सुनना है गाना बेपनाह प्यार है आजा। सो एंजॉय करते हैं श्रेया जी की आवाज में कृष्णा कॉटेज का ये गाना सिर्फ और सिर्फ विजय रावत की फरमाइश पर।

दोस्तों, ये फरमाइश थी विजय रावत की। अगली फरमाइश हमारे पास में है निधि की सीतापुर से। निधि को सीतापुर से सुनना है गाना अल्लम गल्लम। सो एंजॉय करेंगे ये बहुत ही अतरंगी सा सुपर डुपर हिट सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ निधि की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो नागेश्वर धाकड़। आपका स्वागत है। स्टे ट्यून्ड।

एंजॉय करते हैं हमारी आज की एडिट फरमाइश है, तो फरमाइश है इसी का प्रश्न। और दोस्तों जानते हैं कि हमारे पास में है सिंचाई विभाग से राजेश कुमार की, सिंचाई विभाग से राजेश कुमार को सुनना है गाना प्यार के हम मतवाले आशिक बड़े निराले। सो एंजॉय करते हैं शोहबत पिक्चर का ये गाना सिर्फ और सिर्फ सिंचाई विभाग से राजेश कुमार की फरमाइश पर। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकमिंग यू। Show everyone, stay tuned.

हम तेरे चाहने वाले हैं। उदित नारायण साधना सरगम की आवाज में हमने एंजॉय किया है ये गाना। बढ़ते हैं अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है सुरेंद्र यादव की गौरा चौकी से। एंजॉय करते हैं ये गाना। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

सब ने एंजॉय किया है ये डिवोशनल भोजपुरी गाना सिर्फ और सिर्फ सुरेंद्र यादव की फरमाइश पे, जो कि है गौरा चौकी से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ, एंजॉय करेंगे अगली फरमाइश, लेकिन इसके पहले बताना चाहूंगी कि इस फरमाइश गीत की उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी की महफिल में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपनी आरजी सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। जी हां दोस्तों, ये फरमाइश है उषा कश्यप की गोंडा से, और जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की है फटाफट से पेट पूजा करना। मिलते हैं सीधे 9 बजे फरमाइशी की महफिल में।

0: भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और आवागमन क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत की व्यापक नीति से अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिली। आजादी के बाद पहली बार मालवाहक पोत असम से ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते बांग्लादेश रवाना। 80 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग फिर शुरू। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच समझौता। क्षेत्रीय हवाई संपर्क मजबूत करने के लिए राज्य में 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। और जर्मनी तथा अमरीका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए नोबेल चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार तथा उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पामला ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला से भेंट की। डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पाहमला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और विकास कर सकती हैं। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों देशों के बीच कई समझौते और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए।
2: The MOU on Migration and Mobility Partnership.
3: दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी, युवा पेशेवरों का आदान प्रदान और गतिशीलता से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच आशय पत्र और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच कार्यान्वयन समझौता हुआ।
0: भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौते के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
4: प्रधानमंत्री मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के बीच बातचीत बहुत व्यापक रही। उन्होंने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, नवाचार एवं AI, रक्षा उत्पादन और परमाणु ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने शांति, कूटनीति और वैश्विक संस्थाओं में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। दोनों नेताओं ने दुनिया में चल रहे संघर्ष की स्थिति पर भी चर्चा की। यूक्रेन की स्थिति को लेकर भारत का रुख बहुत स्पष्ट है कि नई दिल्ली कूटनीतिक समाधान के पक्ष में है। भारत ने इस मामले का कूटनीतिक समाधान तलाशने में स्विट्जरलैंड की भूमिका की भी सराहना की। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के संदेश की बहुत सराहना की कि यह युद्ध का युग नहीं है बल्कि शांति का युग है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि विकासशील देशों को उम्मीद है कि भारत विश्व मंच पर उनकी चिंताओं को मजबूती से उठाएगा। डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल आर्थिक सम्मेलन में कहा कि भारत विकासशील देशों की खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से जुड़ी चिंताओं के प्रति सजग है। विदेश मंत्री ने कहा कि विश्व के साथ जुड़ने की भारत की व्यापक नीति अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाता है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत अब सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं बल्कि नई तकनीक बनाने वाला देश बनना चाहता है। नई दिल्ली में कौटिल आर्थिक सम्मेलन में आज उन्होंने कहा कि AI ने काम करने, लेन देन और फैसले लेने के तरीकों को बदल दिया है। श्री सिंधिया ने कहा कि टेलीकॉम नेटवर्क आज डिजिटल हाईवे बन चुका है और डेटा AI अर्थव्यवस्था का ईंधन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए मेथनॉल ले जाने वाले पहले मालवाहक पोत को झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे लगभग 80 वर्ष बाद ब्रह्मपुत्र नदी को वैश्विक व्यापार मार्ग के रूप में फिर से विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस पहल से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सीधा पर्यावरण अनुकूल और किफायती व्यापारिक गलियारा शुरू हो जाएगा।
6: भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई जब मिथानॉल की एक खेप डिब्रूगढ़ स्थित बोगीबिल टर्मिनल से बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह के लिए रवाना हुई। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विश्वास व्यक्त किया कि यह टर्मिनल क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति देगा। उन्होंने घोषणा की कि केंद्र सरकार बोगीबिल टर्मिनल पर 200 करोड़ रुपए की लागत से शिपिंग क्षेत्र के लिए एक नए कौशल विकास केंद्र की स्थापना करेगी। यह केंद्र अगले 10 वर्षों में असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जिससे उन्हें समुद्री और शिपिंग उद्योग में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से इस ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राम मोहन

0: एयर ऑपरेशंस को शुरू करने का एमओयू में शामिल किया है।
1: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार से कोलकाता से यूरोपीय शहरों के लिए सीधी उड़ान शुरू करने और आंदल से प्रमुख गंतव्यों तक पहुंच बढ़ाने का आग्रह भी किया गया है। उन्होंने अयोध्या, तिरुपति और अमृतसर के लिए भी सीधी उड़ान शुरू करने की मांग की। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एकतरफा बदलाव किए। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को स्वीकृति नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने आकाशवाणी को बताया कि समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थियों को शामिल होने की संभावना है।
2: इस दीक्षांत समारोह में वर्ष 2024, 2025 और 2026 इन तीन वर्षों के सर्वश्रेष्ठ 3 विद्यार्थियों को उपराष्ट्रपति के हाथ से गोल्ड मेडल दिलाया जाएगा और प्रत्येक वर्ष में जो नामित मेडल है विभिन्न लोगों के द्वारा स्पॉन्सर्ड है 20-20-20 यानी 60 बच्चों को हम गोल्ड मेडल देंगे, 240 PhD स्कॉलर्स को PhD का सर्टिफिकेट देंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा की मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि वंदे भारत रेलगाड़ियों की शुरुआत के जरिए इस परिकल्पना को किस तरह साकार किया गया।
3: 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में आधुनिक परिवहन व्यवस्था की अहम भूमिका है। भारतीय रेलवे की वंदे भारत एक्सप्रेस इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ट्रेन देश के अलग अलग शहरों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक रेल सेवा प्रदान कर रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत फरवरी 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई थी। पिछले साल नवंबर में वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को रवाना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
4: वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही, ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है जिस पर हर भारतीय को गर्व है।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के गौरांग शुक्ला ने वंदे भारत ट्रेन की सराहना करते हुए कहा कि यह ट्रेन आत्मनिर्भर भारत के विजन को दर्शाती है।
5: वंदे भारत आत्मनिर्भर भारत का एक प्रतीक है। रेलवे के आधुनिकीकरण, स्वदेशी तकनीक और बुनियादी ढांचे में सरकार के निवेश ने वंदे भारत को भारत की तेज, स्मार्ट और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बनाया है।
3: भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को देश के अलग अलग शहरों के बीच बेहतर रेल सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित है और इसे अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। इस समय देश भर में 160 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं और देश के प्रमुख रेल मार्गों पर संपर्क को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.com

0: jiobi.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। इस वर्ष का नोबेल चिकित्सा पुरस्कार कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में आज इसकी घोषणा की गई। एक रिपोर्ट।
1: तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। ऑप्टोजेनेटिक्स ऐसी तकनीक है जिसमें प्रकाश की मदद से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है। इस तकनीक से जीवित मस्तिष्क में किसी खास तंत्रिका कोशिका को सक्रिय या निष्क्रिय करना संभव है। इससे वैज्ञानिकों को मस्तिष्क में याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल ने चैन लारोडोप्सिस के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्ल डाइसेरोथ अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बायो इंजीनियरिंग, मनोचिकित्सा और व्यवहार विज्ञान के प्रोफेसर हैं, जबकि पीटर हिगमैन जर्मनी के बायो फिजिसिस्ट और जॉर्ज नागेल न्यूरो साइंटिस्ट हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में डिजिटल युग में ई कचरे की चुनौतियां, समाधान और भविष्य की कार्य योजना पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और आवागमन के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत की व्यापक नीति से अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिली। आजादी के बाद पहली बार मालवाहक पोत असम से ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते बांग्लादेश रवाना। 80 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग फिर शुरू। और जर्मनी तथा अमेरिका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क की गतिविधियां नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए नोबेल चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी।

अखियां ने अखियां नू रब जाने क्यों दिए खास। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी फरमाइशी की महफिल में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। दोस्तों एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन एक बार फिर से इस्तकबाल है आप सभी का वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो शशि सिंह जी और उस्मान खान, स्टे ट्यून्ड। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों कार्तिक कश्यप की गोंडा से, और कार्तिक कश्यप को सुनना है गाना रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला। फरमाइश है कार्तिक कश्यप की गोंडा से।

जहां से निराला मैं तेरा लाला तू है मेरी भैया। आपने इंजॉय किया ये गाना कार्तिक कश्यप की फरमाइश पर जो की है गोंडा से। बढ़ते हैं अगली फरमाइश गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है राजू की सीतापुर से। राजू को सीतापुर से सुनना है गाना प्यार कभी कम ना करना। सो एंजॉय करते हैं ये गाना राजू की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

0: गाना करना सनम, हमने एंजॉय किया है गाना राजू की फरमाइश पर जो की है सीतापुर से। अगली फरमाइश है शिवेंद्र पंडित की और उनको सुनना है गाना तुम मैं खाने जाना छोड़ दोगे। सो एंजॉय करते हैं ये गाना शिवेंद्र पंडित की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। अच्छा
1: पिलाना हराम है।
0: अच्छा
1: पीने के बाद होश में आना हराम।
0: आए हाय क्या बात क्या।

देख के मेरा खिलता हुस्न सबाब, तुम मैं खाने जाना छोड़ दोगे। हमने एंजॉय किया है ये गाना शिवेंद्र पंडित की फरमाइश पर। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है अरविंद की। अरविंद को सुनना है गाना अकेले तन्हा, सो एंजॉय करते हैं ये थोड़ा सा सैड लेकिन अच्छा।

अकेले तन्हा जिया ना जाए तेरे बिन। ओ माय गॉड, हमने एंजॉय किया है ये वाला गाना अरविंद की फरमाइश पर। अगली फरमाइश हमारे पास में है वंशिका की, एंजॉय करते हैं सतिंदर सरताज की आवाज में ये पंजाबी सॉन्ग गुजारिश सिर्फ और सिर्फ वंशिका की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

सतिंदर सरताज का ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही रोमांटिक सा गाना हमने एंजॉय किया है वंशिका की फरमाइश पर। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी की तरफ दोस्तों। अगली फरमाइश हमारे पास में है नागेश्वर धाकड़ की और नागेश्वर धाकड़ को सुनना है गाना नामे वफा। सो एंजॉय करते हैं ये गाना सिर्फ और सिर्फ नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

दर्द जो सीने में उठने लगा, नहीं समझे यहाँ कोई तो रहने दे इस दर्द में जिंदा, मैं तन्हा ही सही। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही बेहतरीन सनंग नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर। बढ़ते हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइशी गीत की तरफ। अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों एडवोकेट सुनील मझारा की, और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो मनीष शर्मा फ्रॉम खोनासा गोंडा। स्टे ट्यून्ड और इंजॉय करते हैं एडवोकेट सुनील मझारा की फरमाइश। इसी के साथ मैं लेना चाहूंगी अलविदा। सो दोस्तों बस यही इतना कहना चाहूंगी कि अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल, समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, आप सबकी तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। टेक केयर, सो मच लव टू यू गाइज, सो मच केयर टू यू गाइज, बाय बाय। मिलते हैं कल फिर से एक नए जज्बात, एक नए गीत और अपनी आरजे सिंपल के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में, सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं, सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
2: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर 1 प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
3: अरे सुना
4: क्या,
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ,
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
6: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
6: आज ही कॉल करें 9260 9761 9260 9819197 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
6: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या। आप सुन रहे हैं रेडियो गन स्लेट 9.6 FM। यह है गोंडा ही नहीं बल्कि हम सभी के दिलों की धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है बहारे

और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास। हम इस कार्यक्रम में बात करते हैं नींव की ईंटों की। जो ईंटें हमको दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन जिनके दम पर बड़े से बड़ी बिल्डिंग, बड़ी से बड़ी इमारतें खड़ी होती हैं। हम बात करते हैं दानिश्वरों की, कलमकारों की, जिनकी लेखनी से लिखला हुआ शब्द अशार बनता है, कथा बनता है, नगमा बनता है, गजल बनता है, गीत बनता है और हमेशा के लिए अमर हो जाता है। आज जिस शायर को आपके बीच लेकर आए हैं, उनको हम गजलों की दुनिया के युधिष्ठिर कहते हैं। मतलब बहुत ही आसान लफ्जियात में अपनी बात कह देने का हुनर उनके पास होता है। और इतना ही नहीं, वो जिंदगी के कई सारे मौजूआत को छूते हुए हम तक पहुंचते हैं, हमारे दिलों पर दस्तक देते हैं और धीरे से हमारे दिल में अपनी गजलों के माध्यम से समा जाते हैं। उन्होंने लिखा कि ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई, आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा, आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई, मुद्दतों बाद पशेमा, पशेमा मतलब कहते हैं शर्मसार हो जाना, मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मतलब हम जब पीने बैठे तो फिर दरिया का जितना पानी था वो कम पड़ गया, मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई, मुद्दतों बाद, आहा, अब ये पंक्ति छूती है दिल को कि मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का आंचल, मुद्दतों बाद मयस्सर, मयस्सर मने उपलब्ध, मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का आंचल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। और अब जो जिंदगी का सच है वो लिखते हैं कि इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, फन मतलब हुनर, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी आई। इंसान अपनी जिंदगी बिता देता है साहब, और उसके पश्चात उसके हिस्से में कुछ आता है। हमारे साथ उस्मान खान जी हैं। भाई शुभ संध्या, आपको भी आदाब करते हैं उस्मान खान जी, और आदाब आपका, और आपका भी खैर मकदम आपके ही पहले से कार्यक्रम बहारे गजल में। इट्स कुमार जी हमको दिखाई पड़ रहे हैं, वंशिका जी बहुत दिनों के बाद, विजय रावत जी हमारे साथ हैं, हेलो सर, और सविता शास्त्री जी चरण स्पर्श करते हैं आपको। भाभी माँ कैसी हैं आप, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी होंगी। और आइए अब आज के गजल की शुरुआत करते हैं कायनाती गले के मालिक मोहम्मद रफ़ी की बहुत ही प्यारी सी गजल के साथ। हो सकता है ये गजल आपने सुनी हो सकता है ये गजल आप पहली बार सुन रहे हो। मीर तकी मीर एक बहुत बड़ा नाम है उर्दू अदब की दुनिया का, उनकी लिखी हुई ये प्यारी सी गजल है जिसको बेगम अख्तर ने भी गाया और जिसे आवाज दी कायनाती गले के मालिक मोहम्मद रफी साहब ने भी। आइए मीर तकी मीर की प्यारी सी गजल के साथ आज के कार्यक्रम का आगाज करते हैं, शुभारंभ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये गजल हो सकता है आप में से बहुत से लोग पहली बार सुने। आइए

जी, रफी जी की प्यारी सी आवाज में उनके कायनाती गले से जो आपने गजल सुनी, वो गजल लिखी थी मीर तकी मीर ने। और ये गजल जिसे मखमली आवाज के मालिक जगजीत सिंह साहब ने गाया, आप सभी उनके नाम से परिचित होंगे। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने उनका नाम न सुना हो। उनका नाम है गालिब। जी, ये गालिब साहब के द्वारा लिखी हुई गज़ल थी जिसे अपने मखमली अंदाज में, मखमली गले से जगजीत सिंह साहब ने गाया। ये न थी हमारी किस्मत, और एकदम रियल लग रहा था कि मतलब पुराने ख्यालों में जा रहे हैं। बहुत दिन के बाद हो सकता है आपने ये गज़ल सुनी हो। जी, हमारे साथ रवि तक्षक कल्पज्ञ जी हैं, पहली बार आपको देख रहा हूँ, नमस्कार। और कहना है कि सच बोलना अब गुनाह सा लगने लगा है, मेला

झूठ का हर राह पे सड़ने लगा है। अल्पज्ञ अब न मोल है ईमान का कोई, धन के लिए इंसान कितना गिरने लगा है। क्या बात कही भाई आपने। वास्तव में वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देख करके तो ये लगता है कि हाँ, और अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैंने पढ़ा विलियम वर्ड्सवर्थ को, तो उन्होंने कहा कि वी आर वेस्टिंग आवर टाइम इन गेटिंग एंड स्पेंडिंग, मतलब हम अपने जीवन को गंवा रहे हैं, पहले हाउ टू अर्न और फिर हाउ टू स्पेंड, कैसे कमाया जाए और फिर कहाँ खर्च किया जाए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो धन बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। हम ये मानने को बिल्कुल तैयार हैं कि धन बहुत कुछ है और मानना भी चाहिए, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं हो सकता। चलते हैं इकबाल असद की गजलों की तरफ। उन्होंने कहा कि सिलसिला खत्म हुआ जलने जलाने वाला। प्रगति जी हमारे साथ हैं, हाय हेलो कोई है जी। हम 9:30 से 10:30 मैं ही रहता हूँ बाहर गजल में आपके साथ, आपका दोस्त मनु। सिलसिला खत्म हुआ जलने जलाने वाला, अब कोई ख्वाब नहीं नींद उड़ाने वाला। तो एक दौर होता है, एक उम्र होती है साहब, जिस उम्र में चीज़ें अच्छी लगती हैं, बाद में तो वही आ जाता है कि दुनिया जिसे कहते हैं माटी का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। गम और खुशी दोनों कुछ दूर के साथी हैं, फिर रास्ता ही रास्ता है, हंसना है न रोना है। तो ज़िंदगी एक ऐसे मुकाम पर आ जाती है जहाँ पर खुशी और गम ये दोनों चीज़ों से हम परे हो जाते हैं। उससे आगे की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि सिलसिला खत्म हुआ जलने जलाने वाला, अब कोई ख्वाब नहीं नींद उड़ाने वाला। ये वो सहरा है सुझाए अगर न तू रास्ता। सहरा बोलते हैं रेगिस्तान को साहब। ये वो सहरा है सुझाए ना अगर तू रास्ता, खाक हो जाए यहां खाक उड़ाने वाला। क्या करे आंख जो पथराने की ख्वाहिश न करे, क्या करे आंख जो पथराने की ख्वाहिश न करे, ख्वाब हो जाए अगर ख्वाब दिखाने वाला। याद आता है कि मैं खुद से यहीं बिछड़ा था। अब इंसान को जगह बहुत याद रहती है कि यही जगह थी। याद आता है कि मैं खुद से यहीं बिछड़ा था, यही रास्ता है तेरे शहर को जाने वाला। ऐ हवा उससे कहना कि सलामत है अभी, ऐ हवा उससे कहना कि सलामत है अभी, तेरे फूलों को किताबों में छुपाने वाला। जिंदगी जिंदगी अपनी अंधेरों में बसर करता है, व्यतीत करता है। जिंदगी अपनी अंधेरों में बसर करता है, तेरे आंचल को सितारों से सजाने वाला। सभी अपने नजर आते हैं बज़ाहिर, लेकिन मतलब अगर एक दृष्टि से देखते हैं तो लगता है सब अपने हैं। सभी अपने नजर आते हैं बज़ाहिर, लेकिन रूठने वाला है कोई न मनाने वाला। ले गई दूर बहुत दूर हवाएं जिसको, ले गई दूर बहुत दूर हवाएं जिसको, वही बादल था मेरी प्यास बुझाने वाला। यही है साहब, सभी अपने नजर आते हैं बज़ाहिर, लेकिन एक सामान्य दृष्टि से देखें तो सब अपने हैं, लेकिन रूठने वाला है कोई न मनाने वाला। अब न कोई रूठने वाला है साहब हमसे, और अगर हम रूठ जाएं तो अब कोई मनाने वाला भी नहीं है, और शायद यही ज़िंदगी का आखिरी सच हो जाता है। जी हाँ, आपको मीर तकी मीर की गज़ल सुनाई, इसके बाद
गालिब साहब की गजल। अब चलते हैं भाई, आवाज बदलते हैं और आपको ले चलते हैं पंकज उधास साहब की आवाज, और ये उधास साहब की आवाज आपको रंगीन में कर देगी, इतना वादा तो आपसे करके हम जाते हैं। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गुना शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

0: बोल, पता है ना इस वाले के?
1: किसे नहीं पता।
0: तो गाओ।

जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत सी गजल, और ये वही गजल है जिन्होंने गाया था फेरो ना नजर से नजरिया। बहुत ही प्यारी एल्बम है और इसकी एक एक गजलें बड़ी शानदार है, कभी मौका मिलेगा तो सुनिएगा। हम बढ़ते हैं इकबाल असर साहब की तरफ। उन्होंने कहा कि कितने भूले हुए नगमात सुनाने आए, कितने भूले हुए नगमात सुनाने आए, फिर तेरे ख्वाब मुझे मुझसे चुराने आए। कितने भूले हुए नगमात सुनाने आए, फिर तेरे ख्वाब मुझे मुझसे चुराने आए, फिर धनक रंग तमन्नाओं ने घेरा मुझको। मतलब धनक रंग मतलब इंद्रधनुष का रंग मतलब खुशी। फिर धनक रंग तमन्नाओं ने घेरा मुझको, फिर तेरे खत मुझे दीवाना बनाने आए। फिर तेरी याद में आंखें हुई शबनम शबनम, आंखें भीग गईं, आंसू आ गए। फिर तेरी याद में आंखें हुई शबनम शबनम, फिर वही नींद ना आने के जमाने आए। फिर तेरा जिक्र किया बादा ए सबा ने मुझको, बादा ए सबा मतलब पूर्वी हवा पुरवाई। फिर तेरा जिक्र किया वादा ए सबा ने मुझसे, फिर मेरे दिल को धड़कने के बहाने आए। फिर मेरे कासा ए खाली, कासा बोलते हैं जिसमें भिक्षा मांगी जाती है, उस भिक्षा पात्र को कासा कहा जाता है। फिर मेरे कासा ए खाली का मुकद्दर जागा, मतलब मेरा जो कासा था भिक्षा पात्र था उसका मुकद्दर जागा। फिर मेरे हाथ मोहब्बत के खजाने आए, शर्त सैलाब समोने की लगा रखी थी। पंक्त देखिएगा शायर क्या कह रहा है, शर्त सैलाब समोने की लगा रखी थी, ये वादा था कि सैलाब को अपने भीतर दफन कर लूँगा। शर्त सैलाब समोने की लगा रखी थी, और दो अश्क भी हमसे न छुपाने आए, और जब परिस्थितियाँ आईं तो आँख के दो आंसू भी हम छुपा न सके। ये इंसान का सच होता है और एक और उसका वहम होता है। और मुझे लगता है कि जब तक हम स्वयं से अनुभव नहीं करते या किताबी ज्ञान की बात करते हैं तो शायद जिंदगी का उतना तजुर्बा हमारे पास नहीं होता। खाली जेब और झूठा प्रेम, हमको लगता है कि खाली जेब, झूठा प्रेम और भूखा पेट, मुझे लगता है कि यह इंसान के तीन सबसे बेहतरीन अध्यापक है जो बहुत कुछ सिखाते हैं। वो सिखाते हैं कि हमारा कौन है, अपना कौन है, और इस दुनिया का सच क्या है। मुझे फिल्म नहीं याद आ रही है, लेकिन गोविंदा की फिल्म है और कादर खान उनके पिता बने हुए हैं। गोविंदा को एक घर में मतलब नौकर की तरह से वो रहते हैं क्योंकि वहाँ की नायिका से उनको मोहब्बत हो जाती है। तो और ये कादर खान उस शहर के नामी गिरामी रईस होते हैं, बहुत बड़े सेठ। गोविंदा का जन्मदिवस पड़ता है तो उसके पिता चौकीदार के वेश में उससे मिलने आते हैं बर्थडे विश करने, भाई बेटे का बर्थडे है।

तो कादर खान कहते गोविंदा से कि आज तेरा बर्थडे है, चलो कहीं होटल में खाना खाते हैं। कहते ठीक है चलिए। तो दोनों चल पड़ते हैं, तो जो 5-star होटल होता है वहां पहुंचते हैं, तो वहां का जो दरबान होता है वो कहता है कहाँ जा रहे हो, भिखारियों को अंदर जाने की एंट्री नहीं है। तो गोविंदा बोलता है कि पहचानता है ये बहुत बड़े करोड़पति हैं, सेठ के नगर के सबसे बड़े सेठ हैं। तो उसने कहा वो कपड़े से लग रहा है, क्योंकि कादर खान ने वॉचमैन की वर्दी पहन रखी है और गोविंदा ने नौकर की। कादर खान अपने बेटे से कहते हैं बेटा इनसे शिकवा मत करो, इनसे शिकायत मत करो, इनसे मत उलझो, ये हमारे सबसे बेहतरीन टीचर हैं, जो हमको ये बता रहे हैं कि इस दुनिया में कद्र इंसान की नहीं इंसान के कपड़ों की होती है। आज हमारे कपड़े ऐसे हैं, कल हम सूट में आएंगे और किसी महंगी लग्जरी वाली कार से आएंगे, तो यही व्यक्ति जो यहाँ हमें मना कर रहा है वही दरवाज़ा खोलेगा। कभी कभी होता है साहब। बशीर बद साहब ने कहा कि यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, मुझे गिलास बड़ा दे शराब कम कर दे। मेरे साथ जे के शाह जी हैं, गुड इवनिंग सर जी, बहुत दिन बाद देखा आपको, और आपके बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। रवि तक्षक अल्पज्ञ जी हैं, आप अल्पज्ञ हैं और मैं तो अज्ञ हूँ साहब, मुझे को तो कुछ नहीं आता। लिखते हैं कि बिरह की रात भी जाने कैसी रात होती है, हर करवट में तेरी याद से मुलाकात होती है, नींद आँखों से मेरी रूठ जाती है अक्सर, और खामोशियों में तुझसे हर बात होती है। क्या बात है भाई, बहुत प्यारी पंक्तियाँ। और जी वाह क्या गज़ल, बहुत बहुत धन्यवाद। और जे के शाह जी ने फिल्म का नाम बता दिया, जी हाँ बिल्कुल, मुझे भी गेस वही हो रहा था, हीरो नंबर 1। जी हाँ, तो उस फिल्म में ये डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा था, मौके पर मौजू पर याद आ गया। घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है, तो शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान, आसमान वाले ने चाहा तो। कल ठीक 9:30 को आपके ही कार्यक्रम में यानी बाहर गज़ल में आपसे होगी मुलाकात। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणस्लेट 9.6 FM, ये है गोंडा शहर की ही नहीं बल्कि हमारे और आपके दिलों की भी धड़कन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी बात एक रात की। सर्द मौसम था, हड्डियों को कपकपा देने वाली ठंड। शुक्र था ऑफिस का काम कल ही निपट गया था। दिल्ली से उसका मसूरी आना सार्थक हो गया था। बॉस निश्चित ही उससे खुश हो जाएंगे। ओम खुद को काफी हल्का महसूस कर रहा था। माता पिता का वो इकलौता बेटा था, उसके अलावा दो छोटी बहनें थीं। पिता नौकरी से रिटायर्ड थे, बेटा होने के नाते घर की जिम्मेदारी उसे ही निभानी थी। वो बचपन से ही महत्वाकांक्षी था। मल्टीनेशनल कंपनी में उसे जॉब पढ़ाई खत्म करते ही मिल गई थी। आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक तो वो था ही, बोलने में भी उसका जवाब नहीं था। लोग जल्दी ही उससे प्रभावित हो जाते थे। कई बार कई लड़कियों ने भी उससे दोस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता था। ओम ने सोचा था मसूरी में उसे दो दिन लग जाएंगे, लेकिन यहाँ तो एक ही दिन में उसका काम निपट गया। क्यों ना कल मसूरी घूमा जाए। ओम मजे से गर्म कंबल में सो गया। अगले दिन वो मसूरी के मॉल रोड पर खड़ा था, लेकिन पता चला आज वहां टैक्सी व बसों की हड़ताल है। उफ, इस हड़ताल को भी आज ही होना था। ओम अभी सोच में पड़ा ही था कि एक टैक्सी वाला उसके पास आकर कानों में फुसफुसाया, साहब कहाँ जाना है? अरे भाई मसूरी घूमना था, लेकिन इस हड़ताल को भी आज ही होना था। ओम बोला, कोई दिक्कत नहीं साहब, अपनी टैक्सी है ना, इस हड़ताल के चक्कर में अपनी वोट लग जाती है। सर जी हम आपको घुमाने ले चलते हैं, लेकिन आपको एक मैडम के साथ टैक्सी शेयर करनी होगी, वो भी पूरा मसूरी घूमना चाहती हैं। आपको कोई दिक्कत तो नहीं? ड्राइवर बोला, कोई चारा भी तो नहीं, चलो कहाँ है टैक्सी? ओम बोला। ड्राइवर ने दूर खड़ी टैक्सी के पास खड़ी लड़की की ओर इशारा किया। ओम ड्राइवर के साथ चल पड़ा। हेलो मैं ओम दिल्ली से। हेलो मैं रिंकी। मैडम आज मसूरी में हम दो अनजानों को टैक्सी शेयर करना है, आप कंफर्टेबल तो रहेंगी ना? हाँ थोड़ा अनकंफर्टेबल तो है, पर इट्स ओके। इतने छोटे से परिचय के साथ गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर ने बताया, सर मसूरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर टिहरी जाने वाली रोड पर शांत और खूबसूरत जगह थनौल्टी है,

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है बात एक रात की। अब तक आपने सुना ओम और रिंकी अपने अपने कामों से मसूरी गए हुए थे। उनके पास एक दिन घूमने के लिए था, लेकिन उस दिन टैक्सी और बसों की हड़ताल हो गई। एक टैक्सी वाले ने उनको घुमाने का काम ले तो लिया, पर मजबूरी में उन दोनों को टैक्सी शेयर करनी पड़ी। अब आगे आज सुबह से वहां बर्फबारी हो रही है, आप लोग वहां जाकर बर्फ का मजा लेना चाहेंगे? ओम ने एक प्रश्नवाचक निगाह रिंकी पर डाली तो उसकी भी निगाह उसी की तरफ थी। दोनों की मौन स्वीकृति से ही ड्राइवर को धनौल्टी चलने को कह दिया गया। गूगल से ही थोड़ी बहुत मसूरी और धनौल्टी के बारे में वो लोग जानते थे। आज प्रत्यक्ष रूप से देखने का पहली बार मौका मिला था। मन बहुत ही कौतूहल से भरा था। खूबसूरत कटावदार पहाड़ी रास्ते पर उनकी टैक्सी दौड़ रही थी। एक एक पहाड़ की चढ़ाई वाला रास्ता बहुत ही रोमांचक लग रहा था। बगल में बैठी रिंकी को लेकर ओम के मन में कई सवाल उठ रहे थे। मन हो रहा था कि पूछे कि किस सिलसिले में आई है, अकेली क्यों है, लेकिन किसी अनजान लड़की से एकदम से ये सब पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। रिंकी की गहरी बड़ी बड़ी आंखें उसे और भी खूबसूरत बना रही थीं। ना चाहते हुए भी ओम की नजरें बार बार उसकी तरफ उठ जातीं। वो और रिंकी बीच बीच में थोड़ा बातें करते हुए मसूरी के अनुपम सौंदर्य को निहार रहे थे। उनकी गाड़ी कब एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर पहुंच गई पता ही नहीं चल रहा था। कभी कभी जब गाड़ी को हल्का सा ब्रेक लगता तो वो दोनों की नजरें खिड़की से नीचे जातीं और गहरी खाई देखकर दोनों की सांसें थम जातीं। लगता जरा सी चूक हुई तो बस काम तमाम हो जाएगा। जिंदगी में आदमी भले कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, पर नीचे देखकर गिरने का जो डर होता है उसका पहली बार एहसास हो रहा था। अरे भाई ड्राइवर साहब, जरा धीरे संभल कर, रिंकी मौन तोड़ते हुए बोली। मैडम आप परेशान मत होइए, गाड़ी पर पूरा कंट्रोल है मेरा। अच्छा सर जी, यहाँ थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकता हूँ, यहाँ से चारों तरफ का काफी सुंदर दृश्य दिखता है। बचपन में पढ़ते थे कि मसूरी पहाड़ों की रानी कहलाती है। आज वास्तविकता में देखने का उन दोनों को मौका मिला था। गाड़ी से बाहर निकलते ही हाड़ कपा देने वाली ठंड का एहसास हुआ। चारों तरफ से धुएं जैसे उड़ते हुए कोहरे को देखने से लग रहा था मानो वो बादलों के बीच खड़े हों और बादल उनके साथ आंख मिचौली खेल रहे हों। दूरबीन से चारों तरफ नजर दौड़ा, पूछने लगे कहाँ थे हम और कहाँ पहुंच गए। अभी तक शांत सी रहने वाली रिंकी धीरे से बोली, इस ठंड में एक कप चाय मिल जाती तो अच्छा रहता। चलिए पास ही एक चाय का स्टॉल दिख रहा है, वहीं चाय पी जाए, ओम रिंकी से बोला।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है बात एक रात की। अब तक आपने सुना मसूरी में टैक्सी और बसों की हड़ताल होने की वजह से ओम और रिंकी को एक ही टैक्सी शेयर करनी पड़ी मसूरी घूमने के लिए। उन लोग ने धनौल्टी जाने का प्रोग्राम बनाया और खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए वो अपने गंतव्य पर पहुंच गए। अब आगे हाथ में गरम दस्ताने पहनने के बावजूद चाय के प्याले की थोड़ी सी गर्माहट भी काफी सुकून दे रही थी। मसूरी के अप्रतिम सौंदर्य को अपने अपने कैमरों में कैद करते हुए जैसे ही उनकी गाड़ी धनौल्टी के नजदीक पहुंचने लगी वैसे ही उनकी बर्फबारी देखने की आकुलता बढ़ने लगी। चारों तरफ देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ देखने लगे थे जो बर्फ से ढके हुए थे। पहाड़ों पर ऐसा लगता था जैसे किसी ने सफेद चादर ओढ़ा दी हो। पहाड़ एकदम सफेद लग रहे थे। पहाड़ों की ढलान पर काफी फिसलन होने लगी थी। बर्फ गिरने की वजह से कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर में ऐसा लगने लगा मानो सारे पहाड़ों को प्रकृति ने सफेद रंग से रंग दिया हो। देवदार के वृक्षों के ऊपर बर्फ जमी पड़ी थी जो मोतियों की तरह अप्रतिम आभा बिखेर रही थी। गाड़ी से नीचे उतरकर ओम और रिंकी भी गिरती हुई बर्फ का भरपूर आनंद ले रहे थे। आसपास अन्य पर्यटकों को भी बर्फ में खेलते कूदते देखकर बड़ा मजा आ रहा था। सर, आज यहाँ से वापस लौटना मुमकिन नहीं होगा, आप लोगों को यहीं किसी गेस्ट हाउस में रुकना पड़ेगा, टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें सलाह दी। चलो ये भी अच्छा है, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को और अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे। ऐसा सोचकर ओम और रिंकी गेस्ट हाउस बुक करने चल दिए। सर, गेस्ट हाउस में इस वक्त एक ही कमरा खाली है, अचानक बर्फबारी हो जाने से यात्रियों की संख्या बढ़ गई है, आप दोनों को एक ही रूम शेयर करना पड़ेगा, ड्राइवर ने कहा। क्या रूम शेयर? दोनों की निगाहें प्रश्न भरी होकर एक दूसरे पर टिक गईं। कोई और रास्ता ना होने से फिर वही मौन स्वीकृति के साथ अपना सामान गेस्ट हाउस के उस रूम में रखने के लिए कह दिया। गेस्ट हाउस का वो कमरा खासा बड़ा था, डबल बेड लगा हुआ था। इसे ओम के संस्कार कह लो या अंदर का डर, उसी ने रिंकी से कहा, ऐसा करते हैं बेड अलग अलग करके बीच में टेबल लगा देते हैं। रिंकी ने भी अपनी सहमति दे दी। वो दोनों अपने अपने बेड पर बैठे थे। दिन भर की थकान के बाद नींद तो आ ही रही थी, फिर भी रिंकी के अभी तक के साथ से ओम की हिम्मत थोड़ी बढ़ गई थी। अब रहा नहीं जा रहा था, बोल पड़ा, तुम यहां मसूरी क्या करने आई हो? रिंकी भी शायद अब तक उससे सहज हो गई थी, बोली, मैं दिल्ली में रहती हूं।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है बात एक रात की। अब तक आपने सुना ओम और रिंकी मसूरी गए थे और उस दिन बसों और टैक्सी की स्ट्राइक होने की वजह से उन्हें मसूरी घूमने के लिए एक ही टैक्सी शेयर करनी पड़ी। वो धनौल्टी पहुंचे, वहां बर्फबारी शुरू हो गई, इसलिए उस दिन लौटना नामुमकिन था। उन्हें एक गेस्ट हाउस बुक करना पड़ा, लेकिन अचानक हुई बर्फबारी की वजह से यात्रियों की संख्या बहुत बढ़ गई थी और सब गेस्ट हाउस बुक थे। उन्हें मजबूर

में एक ही रूम शेयर करना पड़ा। अब आगे। अच्छा, दिल्ली में कहाँ? ओम बोला, सरोजनी नगर। रिंकी बोली, अरे व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं INA में रहता हूँ। ओम बोला, मैंने हाल ही में पढ़ाई कंप्लीट की है, 2 छोटी बहनें हैं, पापा रहे नहीं, मम्मी के कंधों पर ही हम बहनों का भार है। सोचती थी जैसे ही पढ़ाई पूरी हो जाएगी मम्मी का भार कम करने की कोशिश करूंगी, लेकिन लगता है अभी वो वक्त नहीं आया। दिल्ली में जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, उन्होंने सेकेंड इंटरव्यू के लिए मुझे मसूरी भेजा है। वैसे तो मेरा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस मुझे ठीक नहीं लग रहे, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। रिंकी बोली, इसमें घबराने और सोचने की क्या बात है, जॉब पसंद नहीं आ रही है तो मत करो, तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो जॉब दूसरी जगह ही मिल जाएगी। वैसे मेरी कंपनी में अभी न्यू वैकेंसी निकली है, तुम कहो तो तुम्हारे लिए कोशिश करूं। ओम बोला, सच? मैं अपना CV तुम्हें मेल कर दूंगी। रिंकी बोली, शायद वक्त ने हमें मिलाया इसीलिए हो कि मैं तुम्हारे काम आ सकूं। ओम के मुंह से अचानक निकल गया। रिंकी ने एक नजर ओम की तरफ फेरी, फिर मुस्कुराकर निगाहें झुका ली। ओम का मन हुआ कि ठंड से कपकपाते हुए रिंकी के हाथों को अपने हाथों में ले ले, लेकिन रिंकी कुछ गलत ना समझ ले ये सोचकर रुक गया, फिर कुछ सोचता हुआ कमरे से बाहर चला गया। सर्द भरी रात, बाहर गेस्ट हाउस की छत पर गिरते बर्फ से टपकते पानी की आवाज अभी भी आ रही थी। रिंकी ठंड से सिहर रही थी कि तभी कॉफी का मग बढ़ाते हुए ओम ने कहा, ये लीजिए थोड़ी गर्म और कड़क कॉफी। दोनों को सच में उस वक्त एक गर्मा गर्म कॉफी की बहुत जरूरत थी। अपने अपने कॉफी के मग लेकर दोनों अपने अपने अलग हुए बिस्तरों पर बैठ गए और एक दूसरे से ढेरों बातें करने लगे। इतनी नींद आने के बावजूद भी दोनों का ही सोने का मन नहीं कर रहा था, एक दूसरे से बातें करना उन्हें बहुत भा रहा था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है बात एक रात की। अब तक आपने सुना रिंकी और ओम मसूरी से धनौल्टी घूमने गए। दोनों एक दूसरे से अपरिचित थे, लेकिन टैक्सी और बसेस की स्ट्राइक की वजह से उन्हें एक ही टैक्सी शेयर करनी पड़ी। धनौल्टी में बर्फबारी होने की वजह से रात वहां गुजारना मजबूरी हो गया और अचानक हुई बर्फबारी के कारण यात्रियों की भारी भीड़ की वजह से उन्हें गेस्ट हाउस में भी एक ही कमरा शेयर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब आगे काफी देर बातचीत करते रहने के बाद दोनों को ही बहुत थकान महसूस हो रही थी। रिंकी बोली, मैं थोड़ा हाथ मुंह धोकर चेंज कर लेती हूँ, बेटर फील होगा, बहुत थकान लग रही है। ओम बोला, हाँ रिंकी। रिंकी चेंज करने चली गई। ओम बैठकर टीवी देखता रहा। टीवी में बहुत पुरानी कोई हिंदी फिल्म आ रही थी। जब रिंकी चेंज करके वापस आई तो ओम बोला, मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। वो उठकर चला गया तो रिंकी बैठकर वो फिल्म देखने लगी और उससे भी वो फिल्म बहुत अच्छी लगी। पुराने हिंदी गाने, सीधी सादी कहानी। दोनों देर रात तक मूवी देखते देखते बातें करते रहे। शायद एक ही कमरे में सोने से उन्हें संकोच हो रहा था और इसी वजह से वो जाकर रात काटने की कोशिश कर रहे थे। पर मूवी देखते देखते रिंकी को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब खिड़की से सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें खुली। उसने बगल के बिस्तर पर देखा, वहां ओम नहीं था। पहले तो उसने सोचा कि कहीं आसपास गया होगा। वो उठी, हाथ मुंह धोया, कॉफी मंगाकर भी पी ली, पर फिर भी ओम का कहीं अता पता नहीं था। उसे कुछ चिंता सी होने लगी। उसने ड्राइवर को फोन करके पूछा तो वो बोला, नहीं मैडम, मुझे नहीं पता ओम सर कहाँ हैं। मैं तो यहाँ गाड़ी पर ही सोया था और अभी भी गाड़ी के ही पास हूँ। रिंकी कमरे से निकली और आसपास ओम को देखने लगी। तभी उसकी नजर रिसेप्शन पर रखे सोफे पर गई। सोफे के पास एक हीटर चल रहा था और ओम उसी के सामने सोफे पर बैठा सो रहा था। रिंकी उसके पास गई, उसे जगाया और पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। उस पर ओम का जो जवाब था वो रिंकी के दिल की गहराइयों में उतर गया। ओम बोला, एक अजनबी लड़के के साथ एक ही कमरे में रात भर सोना शायद तुम्हें जिंदगी भर परेशान करता रहता, इसीलिए तुम्हारी आंख लगने के बाद मैं यहीं पर आकर सो गया। रिंकी के पास बोलने के लिए शब्द खत्म हो गए थे और ओम के लिए इज्जत से उसकी आंखें भर आई थी। वो बोली, जाकर थोड़ी देर बिस्तर पर लेट कर सो लो, अभी फिर टैक्सी में बहुत ट्रैवल करना है। ओम ने कुछ घंटे की नींद ली और रिंकी आसपास के नज़ारे देखती रही और फिर वो दोनों वापस दिल्ली लौट आए। दिल्ली पहुंचने पर ओम ने वायदे के मुताबिक रिंकी का नाम अपनी कंपनी में रिकमेंड किया और उसको वहां नौकरी भी मिल गई। समय के साथ दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और फिर एक दिन ओम ने रिंकी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। रिंकी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रिंकी बोली, मैं तो कब से तुम्हारे पूछने का इंतजार कर रही थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी बात एक रात की। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट्स कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: काले काले बादलों का अंबर पर डेरा है, ठंडी ठंडी हवाओं ने हर तरफ से घेरा है, रिमझिम बरसती बूंदों ने सुर ऐसा छेड़ा है, इस सुहाने मौसम ने हम सब का मन मोहा है। कागज की कश्तियों का पानी में बह जाना, भीगी भीगी मिट्टी की खुशबू का महक जाना, चाय की चुस्कियों के साथ यादों का आ जाना, बड़ा ही हसीन है बारिश का ये तराना।
1: पत्तों पर थिरकती है मोती जैसी बूंदे, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति आंखें मूंदे, हर दिल में जग रही है एक नई उमंग, चलो आज बिखरेंगे हम भी सुरों के नए रंग। संगीत की महफिल है सावन की यह रात, सुर से सुर मिलाएंगे होगी सुरों की बरसात, हो जाइए थामिए एक दूसरे का हाथ। शुरू करते हैं आज का बीबीजी यानी कि भूले बिसरे गीत। मैं हूँ आरजे ख्वाहिश।
0: मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: तो रात के सफर को आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे से नाम के साथ। हाँ जी दोस्तों, नाम हमारा होने वाला है आज बारिश, और बारिश हो और प्यारे प्यारे गीत ना हो ये कहाँ मुमकिन है। तो आइए आज का सफर शुरू करते हैं प्यारी सी बूंदों के साथ, सुनाती हूँ एक प्यारा सा नगमा।

जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कोई भी गाना होता है, जब कोई भी फिल्म होती है, तो उस शूटिंग के दौरान कोई ना कोई एक ऐसी कहानी उस गाने के पीछे की होती है। आज एक बहुत ही प्यारा सा गाना और उसके पीछे की कहानी, जो कि बारिश में फिल्माया गया है, राज कपूर और नरगिस पर भारतीय सिनेमा का सब आइकॉनिक रेन सॉन्ग है। इस गाने की शूटिंग के दौरान इस एक मज़ेदार वाक्या हुआ था जो आज मैं आपको बताऊंगी। गाने में तीन छोटे बच्चे रेनकोट पहनकर सड़क पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। वे बच्चे कोई और नहीं बल्कि राज कपूर के ही बच्चे रणधीर कपूर, रीमा कपूर और ऋषि कपूर थे। ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में बताया भी है कि शूटिंग के दौरान रो रहे थे, तब नरगिस ने उन्हें चॉकलेट का लालच देकर चुप कराया और शॉट के लिए राजी किया गया। ये गाना आज भी सच्चे प्यार की एक बहुत बड़ी मिसाल है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, इस गाने को सुनेंगे, लेकिन एक और गाना है जिसे हम और बताएंगे।

अब आती है बारी उस गाने की जो आज भी हम सुनते हैं तो बस कुछ याद आ जाता है। कुछ यादें वो बारिश के दिनों वाली फिर से ताज़ा हो जाती हैं। गाना है एक लड़की भीगी भीगी सी। किशोर कुमार और मधुबाला का ये गाना आज भी इतना मशहूर है कि जो भी इसे सुनता है और गुनगुनाता है वो सावन की बूंदों के साथ कुछ खो सा जाता है। मधुबाला का चुलबुला अंदाज और उसी के साथ किशोर कुमार की मस्ती, क्या ही कहना है इस गाने का। बता दें कि संगीत निर्देशक SD बर्मन कुछ ऐसा संगीत चाहते थे जो रोज़मर्रा की आवाज़ों से मेल खाए। किशोर कुमार इस गाने की जो सिचुएशन थी उसे ऐसे बनाना चाहते थे कि लगे कि वो बिल्कुल असली है। इसे बिल्कुल असली और एक्चुअल में दिखाने के लिए गैराज के टूल्स का इस्तेमाल किया गया। गाने की शुरुआत में जो कार के नेटबोर्ड कसने और पानी की बाल्टी पलटने जैसी आवाज़ें आती हैं वो पूरी तरीके से सिचुएशनल थी। गाने में किशोर कुमार की असली मस्ती और मधुबाला की बेमिसाल खूबसूरती का ऐसा फ्यूजन हुआ कि ये गाना एवरग्रीन बन गया। आज भी ये गाना लोगों की जुबान पर उतना ही कहीं ना कहीं आता है और उतनी ही मदहोशी और मस्ती से बारिश के दिनों में गुनगुनाया जाता है। तो आइए लिसनर, चलते हैं, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं जो कि है एक लड़की भीगी भागी सी।

0: हाँ जी
1: कोई
0: दोस्तों,
1: बात
0: जब हम कभी किसी से मिलते हैं लाइक समवन स्पेशल, तो अगर बारिश हो जाए और हम बाइक पे हों, गाड़ी पे हों, तो वो जो माहौल हो बन जाता है ना, बेहद खुशनुमा बन जाता है। और उसी खुशनुमा मौसम में अगर ये गाना चल जाए, रिमझिम की तराने लेके आई बरसात, ये मूवी है काला बाजार। और इस कहानी के पीछे भी, इस गाने के पीछे भी एक बहुत प्यारी सी कहानी है, जो कि देव आनंद और वहीदा रहमान का एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग है। इसकी शूटिंग मुंबई में असली बारिश में की गई थी। और आपको तो पता ही है कि मुंबई की बारिश, वाओ, मतलब कहा जाता है कि एक मुंबई की बारिश हो और लड़की भीगी भागी हो। और रात की जो सड़कें होती हैं, वहाँ की सड़कें कभी भी सोती नहीं हैं। तो मुंबई में ये गाना फिल्माया गया, वो भी असली बारिश में। निर्देशक विजय आनंद पर्दे पर असली मॉनसून का जादू दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई नकली वाटर टैंक इस्तेमाल नहीं किया। देव आनंद और वहीदा रहमान एक ही छाते के नीचे मुंबई की सड़कों पर चल रहे थे। उस दौरान में ये भी कहा जाता है कि उस दौर में भारी कैमरों के साथ असली बारिश में शूट करना बेहद मुश्किल था, लेकिन देव साहब की बेफिक्री और वहीदा जी की सादगी ने इस गाने को एक टाइमलेस क्लासिक बना दिया। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को, रिमझिम के तराने लेके आई बारात।

अब आते हैं, बात करते हैं उस गीत की जो कि है फिल्म ए लव स्टोरी का, जो कि है रिमझिम रिमझिम। संगीत सम्राट आरडी बर्मन का ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा एल्बम था। पंचम दा इस गाने को लेकर बेहद भावुक थे, क्योंकि एक लंबे समय के बाद वो इसी गाने से बॉलीवुड में वापसी कर रहे थे। उन्होंने इस गाने को बारिश की बूंदों के साथ पिरोया, और ऐसा पिरोया कि आज भी ये हर किसी की जुबा पर कहीं ना कहीं सुनाई दे जाता है। अनिल कपूर और मनीषा कोहराला पर फिल्माए गए इस गाने की रिलीज से ठीक पहले पंचम दा ने इसके धुनों को फाइनल किया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई भी काम वक्त से बहुत पहले या वक्त के कुछ पहले होता है तो बात ही कुछ अलग होती है। आखिरी टाइम पर फाइनल हुई धुनों ने ही इस गाने को इतना खूबसूरत बना दिया कि ये आज भी कहीं ना कहीं बारिश की जब भी बात आती है तो इसे ज़रूर गुनगुनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो कि है रिमझिम रिमझिम।

गायक को बारिश की एक रात में एक अनजान लड़की यानी मधुबाला से प्यार हो जाता है। इस गाने को बारिश के बैकड्रॉप के साथ इस तरह कंपोज किया गया था कि ये केवल एक गाना नहीं बल्कि फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने का एक मुख्य जरिया बना। इस प्यारी सी कहानी के साथ आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को, जिसमें हमारी हम सब की प्यारी मधुबाला।

आइए अब बात करते हैं उस गीत की जो बरसात के दिनों में कहीं ना कहीं सभी की जुबान पर होता है, ओ सजना बरखा बहार आई। इसे गाया था लता मंगेशकर जी ने और ये फिल्माया गया था साधना जी पर। संगीतकार सलिल चौधरी एक दिन तेज़ बारिश के दौरान अपने घर की खिड़की के पास बैठे थे। खिड़की पर गिरती पानी की बूंदों की रिदम से उन्हें एक धुन सूझी। उन्होंने सबसे पहले इसे बंगाली गाने ना मोन लागे रे के रूप में रिकॉर्ड किया था। बाद में विमल राय की फिल्म के लिए इसी धुन को हिंदी में बदल

दिया गया, जो हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत और शांत मानसून के गानों में से एक बन गया। तो आइए सुनते हैं ये बेहद ही प्यारा सा गीत।

आवाज से ही इस गाने की पहचान है और आवाज ही हर किसी के एक व्यक्तित्व की पहचान भी होती है। जी हाँ दोस्तों, अगला गाना इस क्लासिक गाने को मन्ना डे ने और लता मंगेशकर ने गाया था। संगीत सलिल चौधरी का था और ये गाना था हरियाला सावन ढोल बजाता आया। विमल रॉय की इस फिल्म का यह गाना किसी प्रेमी प्रेमिका के रोमांस पे नहीं बल्कि भारतीय किसानों और धरती के जुड़ाव पर आधारित है। कहानी के अनुसार सूखे से परेशान गांव वाले जब आसमान में काले बादल देखते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि बारिश का मतलब उनके लिए नई जिंदगी और फसलों का उगना है। गीतकार शैलेन ने बादलों की गड़गड़ाहट की तुलना ढोल की आवाज से की है, इसीलिए इस गाने का नाम भी कुछ ऐसा दिया, हरियाला सावन ढोल बजाता आया। आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।